नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 MHz पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 25 सेकेंड्स हुए हैं। प्रारंभ होती हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: FM 103 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। 6 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं, लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDV के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा। इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है कीटनाशी छिड़काव में सावधानियां। संकलन एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का।
3: नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में आज बातें कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियों की। किसान भाइयों, कीटनाशकों के खेतों में प्रयोग करते समय कुछ खास बातों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। जी हाँ किसान भाइयों, फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशकों के छिड़काव के समय अगर सावधानी ना बरती गई तो किसानों की जान तक जा सकती है। ऐसे में किसान कुछ सावधानी बरतकर बचाव कर सकते हैं। जरा सी असावधानी खतरनाक साबित हो सकती है। कीटनाशक रासायनिक और विषैले होते हैं, इसलिए इनका प्रयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। कीटनाशक का प्रयोग करते समय यह देख लेना चाहिए कि उपकरण में लीकेज तो नहीं है। कभी भी कीटनाशक उपकरण पर मुंह लगाकर घोल खींचने का प्रयास ना करें। तरल कीटनाशकों को सावधानी पूर्वक उपकरण में डालना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि यह शरीर के किसी अंग में ना जाए। अगर ऐसा होता है तो तुरंत साफ पानी से कई बार धोना चाहिए। कीटनाशकों के छिड़काव के लिए उपयुक्त समय सुबह या सायंकाल होता है। इनका प्रयोग करते समय यह ध्यान रखें कि आसपास हवा तेज गति से ना चल रही हो। जब आप कीटनाशक को खेत में छिड़काव करने के लिए तैयार कर रहे हो तो उसमें साफ पानी का इस्तेमाल करें। हमेशा अपने हाथ, नाक, आंखें, कान और मुंह को ढक लें। सिर को भी ढक लें। हाथों को ढकने के लिए पॉलिथीन बैग से बने दस्ताने पहने। सिर को ढकने के लिए पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल ना करें। सिर को कैप या तौलिया से ढकें और चेहरे को रुमाल, साफ कपड़े या मास्क से ढकें। छिड़काव का घोल तैयार करने से पहले कंटेनर के ऊपर जो लेबल लगा हो उसे पढ़ लें। उसमें घोल तैयार करने का तरीका लिखा होता है। सांद्रित कीटनाशक को खोलते समय विशेष सावधानी रखें कि वो आपके हाथ पर ना गिरे। स्प्रेयर टैंक को कभी न सूंघें। स्प्रेयर टैंक को भरते समय ध्यान रखें कि कीटनाशक जमीन पर ना फैले। स्प्रेयर तैयार करते समय खाना पीना वर्जित होता है। उपकरण लीक करने वाला या कहीं से भी खराब उपकरण को छिड़काव करने के लिए प्रयोग में ना लें। नोजल सही होनी चाहिए। कभी भी नोजल को मुंह से फूंक कर साफ ना करें। इसके लिए स्प्रे से बंधे पुराने टूथब्रश का उपयोग करें और पानी से साफ करें। घास फूस नाशक और कीटनाशक को कभी भी एक स्प्रेयर से छिड़काव ना करें। खाली कीटनाशक कंटेनर को किसी भी दूसरे काम में इस्तेमाल ना करें। जी हाँ किसान भाइयों, कृषि वैज्ञानिक द्वारा बताई गई या कीटनाशक के कंटेनर पर लिखी मात्रा में ही छिड़काव करें। बहुत गर्म दिन में या जिस दिन तेज हवा चल रही हो कीटनाशक का छिड़काव ना करें। हमेशा हवा के 90 डिग्री कोण पर छिड़काव करें। जब बारिश होने वाली हो तब या बारिश होने के तुरंत बाद छिड़काव ना करें। हवा के बहाव की विपरीत दिशा में छिड़काव ना करें। नोजल की ऊंचाई करीब 1.5 फुट रखें और इधर उधर ना घुमाएं। किसान भाइयों, कीटनाशक का घोल बनाते समय जिस कंटेनर या बाल्टी का इस्तेमाल करें उसे दोबारा कभी किसी घरेलू काम में उपयोग में ना लाएं। कीटनाशक के छिड़काव के बाद जानवरों या किसी भी व्यक्ति को खेत में ना जाने दें। कभी भी खाली पेट छिड़काव ना करें। कीटनाशक तैयार करते समय शरीर को जिस तरह ढका था उसी तरह उसका छिड़काव करते समय भी ढक लें। छिड़काव के बाद सारे कपड़े गर्म पानी में साबुन से धोएं और साबुन से स्नान भी कर लें। कीटनाशी का छिड़काव करने के बाद बचे हुए कीटनाशक को कभी भी किसी तालाब, कुएं या

0: किसी भी पानी के स्रोत में ना बहाएं, बल्कि कोशिश करें कि इसे ऐसी बंजर जमीन पर फेंकें जहां किसी का आना जाना ना हो। खाली कंटेनर को किसी पत्थर से तोड़कर उसे पानी से दूर कहीं जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें। स्प्रेयर और बाल्टी को इस्तेमाल करने के बाद साबुन से 4 से 5 बार धोएं। किसान भाइयों, घर में कीटनाशक कभी भी ना रखें, इसके असली कंटेनर में ही इसे रखें और कंटेनर को ठीक से बंद करें। दूसरे कंटेनर में कीटनाशक ना डालें। कीटनाशक को ऐसी जगह ना रखें जहां खाना या चारा रखा हो। पानी और सूरज की रोशनी की पहुंच से दूर रखें। कीटनाशक और घास फूस नाशक को एक साथ ना रखें। किसान भाइयों, ये हुई बातें कीटनाशकों के छिड़काव के समय बरती जाने वाली सावधानियों की। इसी के साथ कार्यक्रम से अब हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें में कीटनाशी छिड़काव में सावधानियों के बारे में आपको बता रही थी प्रतिमा वर्मा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस का।

निषाद राज के साथ भरत प्रयाग के मार्ग पर अग्रसर हैं। उन स्थानों को देखकर उनका मन परिताप से भर उठता है जहां कभी श्री राम ने रात्रि विश्राम किया था। कुशों की साथरी और सोने के उन कणों को देख जो सीता जी के वस्त्राभूषणों से गिर पड़े होंगे, भरत विचलित हो जाते हैं। जिन सुकुमारी के श्वसुर महाराज दशरथ थे, जिनके पिता योग तथा भोग दोनों के स्वामी राजा जनक हैं, उन पतिव्रता शिरोमणि सीता जी का ऐसा बिछावन देख किसका हृदय नहीं फट जाएगा। कोमल स्वभाव तथा स्वामी भक्ति की प्रतिमूर्ति लक्ष्मण सरीखे छोटे भाई वन में न जाने किन विपत्तियों का सामना कर रहे होंगे। स्वयं श्री राम जो शील सुख और समस्त गुणों के सागर हैं, कुशा बिछाकर पृथ्वी पर सोते हैं। भरत का परिताप इस सोच से और भी गहरा हो जाता है कि अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर भी उनकी छाती क्यों नहीं फट जाती। हे शंकर, क्या उनका हृदय वज्र से भी अधिक कठोर हो गया है?

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है नानक वाणी, आलेख एवं वाचन अनुपमा तिवारी का।

0: भारत की पावन भूमि पर कई संत महात्मा अवतरित हुए हैं, जिन्होंने धर्म से विमुख सामान्य मनुष्य में अध्यात्म की चेतना जागृत कर उसका नाता ईश्वरीय मार्ग से जोड़ा है। ऐसे ही एक अलौकिक अवतार गुरु नानक देव जी हैं। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी का आगमन ऐसे युग में हुआ जो इस देश के इतिहास के सबसे अंधेरे युगों में था। उनका जन्म 1469 में लाहौर से 30 मील दूर दक्षिण पश्चिम में तलवंडी रायभोय नामक स्थान पर हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। बाद में गुरुजी के सम्मान में इस स्थान का नाम नानकाना साहिब रखा गया। श्री गुरु नानक देव संत, कवि और समाज सुधारक थे। धर्म काफी समय से थोथी रस्मों और रीति रिवाजों का नाम बनकर रह गया था। उत्तरी भारत के लिए यह कुशासन और अफरा तफरी का समय था। सामाजिक जीवन में भारी भ्रष्टाचार था और धार्मिक क्षेत्र में द्वेष और कश्मकश का दौर था। न केवल हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में ही, बल्कि बड़े धर्मों के भिन्न भिन्न संप्रदायों के बीच भी। इन कारणों से भिन्न भिन्न संप्रदायों में और भी कट्टरता और बैर विरोध की भावना पैदा हो चुकी थी। उस वक्त समाज की हालत बहुत बदतर थी। ब्राह्मणवाद ने अपना एकाधिकार बना रखा था। उसका परिणाम यह था कि जाति का भेदभाव बहुत अधिक था। निम्न जाति के लोगों को पढ़ना लिखना बिल्कुल वर्जित था। इस ऊंच नीच का गुरु नानक देव जी पर बहुत असर हुआ। वे कहते हैं, ईश्वर की निगाह में सब समान हैं। ऊंच नीच का विरोध करते हुए गुरु नानक देव जी अपनी मुखवाणी जपुजी साहिब में कहते हैं कि नानक उत्तम नीच न कोई, जिसका भावार्थ है कि ईश्वर की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं है। फिर भी अगर कोई व्यक्ति किसी को छोटा समझता है तो यह बिल्कुल गलत है। जब व्यक्ति ईश्वर के नाम द्वारा अपना अहंकार दूर कर लेता है, तभी वह ईश्वर की निगाह में सबसे बड़ा है, उसके समान कोई नहीं। नानक देव की वाणी में नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अति नीच, नानक तिन के संगी साथ, वडियां सिउ किया रीस। समाज में समानता का नारा देने के लिए नानक देव ने कहा कि ईश्वर हमारा पिता है और हम सब उसके बच्चे हैं, और पिता की निगाह में छोटा बड़ा कोई नहीं होता। वही हमें पैदा करता है और हमारे पेट भरने के लिए खाना भेजता है। नानक जंत उपाय के संभाले सब नाह, जिन करते कर ना किया चिंता भी करनी ताहर। जब हम एक पिता एकस के हम वारिक बन जाते हैं तो पिता की निगाह में जात पात का सवाल ही पैदा नहीं होता। गुरु नानक जात पात का विरोध करते हैं। उन्होंने समाज को बताया कि मानव जाति तो एक ही है, फिर यह जाति के कारण ऊंच नीच क्यों? गुरु नानक देव ने कहा है कि मनुष्य की जाति न पूछो। जब व्यक्ति ईश्वर की दरगाह में जाएगा तो वहाँ जाति नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ आपके कर्म ही देखे जाएंगे। गुरु नानक देव ने पितर पूजा, तंत्र मंत्र और छुआछूत की भी आलोचना की। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु नानक साहिब हिंदू और मुसलमानों में एक सेतु के समान हैं। हिंदू उन्हें गुरु एवं मुसलमान उन्हें पीर के रूप में मानते हैं। हमेशा ऊंच नीच और जाति पाति का विरोध करने वाले नानक ने सबको समान समझकर गुरु का लंगर शुरू किया, जो एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करने की प्रथा है। गुरु नानक जी की गुरुवाणी। एक ओंकार सतनाम, कर्ता पूरक अकाल मूरत अजूनी सैभम, गुरु प्रसाद जप आड़ सच जुगाड़ सच, है भी सच नानक हो से भी सच, सोच सोच न होवे जो सोची लाख वार, छुपे छुपे न होवे जे लाई हर लखता, रोखिया पुख न उतरी जे बनिया पुरिया पार, सहास्या पा लाख वह है ता एक न चले नाल, केवे सच यारा होइए केवे कूड़े टूटते पाल, हुकुम रजाई चलना नानक लिखिए नाल।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन में नानक वाणी। आलेख एवं वाचन अनुपमा तिवारी का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। आज इस कार्यक्रम में हम आपको तृप्ति शाक्य के गायचंद भक्ति गीत सुनवा रहे हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना में तृप्ति शाक्या के गाए चंद भक्ति गीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है डेंगू लक्षण एवं इसके उपचार। इस विषय में आपको बताएंगे डॉक्टर गगनजोत कौर।
1: मित्रों, अपने यहाँ कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। यदि आप स्वस्थ हैं तो दुनिया की सारी दौलत आपके पास है, लेकिन यदि शरीर में

0: कुछ भी व्याधि उत्पन्न हो जाती है तो फिर मन परेशान होता है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है और हम बीमारी से धीरे धीरे ग्रसित होने लग जाते हैं। एक ऐसा ही बीमारी है जिसका नाम है डेंगू, जिसके सुनने से ही लोगों में घबराहट उत्पन्न हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि डेंगू होने का कारण क्या है, लक्षण क्या है, कि समय रहते हम इसका उपचार करें और अपना बचाव हम किस प्रकार करें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित हैं डॉक्टर गगनजोत कौर। मैडम, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू।
0: डेंगू होने का जो प्राथमिक कारण है वो क्या है?
1: तो डेंगू इन्फेक्शन बेसिकली एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि मॉस्किटो के काटने से, यानी कि मच्छर के काटने से होती है। डेंगू एडीस मॉस्किटो के काटने से ही जो है फैलती है।
0: जिस किसी को डेंगू हो जाता है तो इसके लक्षण क्या है कि समय रहते हम उसका उपचार करें?
1: डेंगू के जो लक्षण रहते हैं, पहले तो ये कि बुखार, हाई ग्रेड फीवर या तेज़ बुखार का होना, और उसके साथ जो मोस्ट कॉमन सिम्टम रहता है वो है बॉडी एक्स या बदन दर्द जो रहता है। इनफैक्ट डेंगू के पेशेंट्स में बॉडी एक्स इतनी सिवियर हो सकती हैं कि उसे ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स को पेट में दर्द, उल्टी जैसा लगना, भूख कम लगना, जॉन्डिस जैसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं, और कुछ पेशेंट्स को इसमें कफ या खांसी और कोल्ड जैसे सिम्टम्स भी परसिस्ट कर सकते हैं। अगर डेंगू ज़्यादा सिवियर हो तो उसमें कई बार ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो जाती है, जैसे कि मुंह से खून आना या यूरिन में खून आना, या गट के थ्रू अगर ब्लीडिंग हो रहा हो तो मोशन जो है या पैखाना जो है काले रंग का होना।
0: ये गंभीर लक्षण है।
1: ये गंभीर लक्षण है। तो डेंगू बेसिकली दो तरह का होता है, क्लासिकल डेंगू जिसमें पेशेंट्स को फीवर है, बदन दर्द है, वॉमिटिंग्स वगैरह हैं, और ज़्यादातर डेंगू जो होता है मरीज वो क्लासिकल डेंगू के होते हैं, और ये अपने आप से 7 दिन के अंदर अंदर यूजली रिकवरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। कुछ केसेस में सीवियर डेंगू होता है, जैसे हम लोग डेंगू हेमरेजिक फीवर के नाम से जानते हैं, और जो डेंगू हेमरेजिक फीवर है वो नाम में जैसा हेमरेज आ रहा है, तो उसके चलते हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और इसका जो कारण है वो ये कि डेंगू में प्लेटलेट्स कम होने शुरू हो जाते हैं। तो जब प्लेटलेट्स एक क्रिटिकल लेवल से फॉल करना शुरू करते हैं तो उसके चलते ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और दूसरा कुछ पेशेंट्स में इसके चलते शॉक हो सकता है, शॉक यानी कि ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा कम हो जाता है। तो ये डेंगू हेमरेजिक फीवर के लक्षण हुए।
0: सामान्य बुखार में भी लोग इग्नोर करते हैं, बहुत सारे लक्षण बहुत लोगों में दिखलाई नहीं पड़ते हैं लेकिन उन्हें बुखार आ रहा है, बदन में दर्द हो रहा है और सामान्य वो बुखार की दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? यदि आपको बुखार आ रहा है तो सावधान हो जाइए, सचेत हो जाइए और फिर अपना इलाज नज़दीकी जो चिकित्सक हैं उनसे आप करवाइए।
1: तो आप सही कह रहे हैं कि डेंगू में जैसे सबसे पहला लक्षण हमें बुखार आना शुरू होता है, और बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो इसको इग्नोर कर देते हैं या टाइम से हॉस्पिटल में नहीं प्रेजेंट करते हैं। तो अगर तो ऐसा आपको मैनिफेस्टेशंस हैं, फीवर है जो परसिस्ट कर रहा है, 3-4 डेज हो गए हैं और आप
0: लंबे समय तक
1: आपका बुखार जो है वो बना हुआ है, नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो आईड एडवाइस कि आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएं और एक बार अपना ब्लड टेस्ट जो है वो ज़रूर करवाएं, क्योंकि जैसा मैंने बोला सबसे पहले आपका CBC का जो एक बहुत कॉमन टेस्ट है हर लैब में हो जाता है, उसी में देखने में पता चल जाता है कि प्लेटलेट्स जो है वो कैसे चल रहे हैं। अगर प्लेटलेट्स फॉल कर रहे हैं और TLC काउंट जो होता है वो भी थोड़ा डेंगू में हम लोग देखते हैं ऑन द लोअर साइड चल रहा होता है, फिर उसके बाद डेंगू के ब्लड टेस्ट होते हैं और मतलब रिपोर्ट्स भी जल्दी आ जाती है। तो अगर डेंगू है, प्लेटलेट्स हो सकता है आपके नॉर्मल हो, आपको डॉक्टर बोले कि बेड रेस्ट या होम एडवाइस पे आपको मैनेज कर लिया जाता है, तो बट आपको कॉशियस रहना चाहिए और रेगुलरली जो है अपना CBC प्लेटलेट काउंट को मॉनिटर करते रहना चाहिए, ताकि अगर फॉल हो रहा है तो टाइम से जो है स्टेप्स जो है उसको प्रिवेंट करने के लिए जा सके।
0: जी, और प्लेटलेट्स कितना फॉल हो जाता है जब स्थिति गंभीर हो जाती है?
1: तो नॉर्मल प्लेटलेट्स जो होते हैं वो 1.5 लाख तक के नॉर्मल बॉडी में होते हैं, अप टू 1.5 लाख। अगर प्लेटलेट फॉल करना शुरू करते हैं अप टू 1 लाख तक, तो हम लोग बोलते हैं कि क्लासिकल डेंगू जो है वो चल रहा है। अगर ज़्यादा फॉल करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स में अंडर 25,000 भी हो जाता है, वो सीवियर डेंगू रहता है जिसमें हमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत जो है आवश्यकता पड़ती है, अगर प्लेटलेट काउंट 25,000 से ज़्यादा कम हो जाए, या अगर आपका जो डेंगू है उसमें ब्लीडिंग कहीं से हो रही हो, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको अगर यूरिन में ब्लड आ रहा है या मोशन के थ्रू ब्लड आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ जाए।
0: इसका उपचार किस प्रकार किया जाता है? व्यक्ति में घबराहट शुरू हो जाती है, जैसा आप बताया व्यक्ति शॉक में चला जाता है, हल्का बुखार भी होने लगता है, तो एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हम डेंगू के शिकार तो नहीं हो गए।
1: तो डेंगू जो इन्फेक्शन है एक वायरल इन्फेक्शन है, ऐसा जिसके लिए कोई मेडिसिन या कोई वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। डेंगू जैसा मैंने बोला, अधिकतर पेशेंट्स को माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं जिनको हम लोग होम मैनेजमेंट भी एडवाइस करते हैं। होम मैनेजमेंट में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर बुखार हो रहा है तो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, बुखार हो रहा है तो पैरासिटामोल लेना है, हाइड्रेशन जो है वो मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है,
0: जल की मात्रा अधिक रखें,
1: जल की मात्रा आपकी, क्योंकि आपको ऐसे सिम्टम्स हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, स्वेटिंग हो रही है, वॉमिटिंग्स हो रही है, एपेटाइट लॉस हो रहा है, तो ऐसे सब कंडीशंस के चलते डिहाइड्रेशन होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो हाइड्रेशन मेंटेन करके रखनी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आप तरल पदार्थ, सॉफ्ट डाइट जो है, ऐसी चीज़ें, सूप्स, तो सॉफ्ट चीज़ें जो है आप खाने में जो है उसका सेवन करें। और अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि बॉडी पे रैश हो रहा है या ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस हो रही हैं, तो तुरंत से हॉस्पिटल या इमरजेंसी जाना जरूरी है।
0: ये तो हो गए उपचार की बात, हम अपनी सावधानियां किस प्रकार रखें, घर के आसपास अपने हाइजीन को किस प्रकार मेंटेन करें, और खान पान में किस चीजों पर हम नियंत्रित रखें कि इस बीमारी से हम दूर रहें।
1: तो
0: क्योंकि मच्छर तो हर जगह है, पनप रहे हैं, और जो प्रमुख कारण है मच्छर काटने से बीमारी फैलती है, तो कैसे इन सब चीजों से बचा जाए?
1: तो जैसे बोलते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो सावधानी ऑब्वियसली हमेशा बेटर रहती है। और डेंगू जो है वो एक, क्योंकि मच्छर के काटने से हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने घर में और घर के आसपास का जो वातावरण है उसको साफ रखें कि पानी जो है वो जमा ना हो सके, खास करके ऐसे बारिशों के मौसम में जहाँ पे हमारे सीवेज वगैरह का ज़्यादा हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम रहता है, सड़कों पर पानी इकट्ठा हो जाता है, घर के आसपास पडल्स बन जाते हैं, तो ये सब चीज़ों को प्रिवेंट करना ज़रूरी है। इनफैक्ट घर में भी अगर हम लोग देखें तो गार्डन्स में, गमलों में, कूलर का पानी या बाथरूम में अगर कुछ ऐसे बाल्टियों में पानी वगैरह जमा रह रहा है या आपके टेरेस पे रह रहा है, तो वो एक सोर्स बन जाता है मच्छर के पनपने का। और इसी वजह से हम लोग देखते हैं कि डेंगू के केसेस कई बार एक फैमिली में से बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, क्योंकि आसपास के सराउंडिंग में जो है मच्छर पनप रहे हैं। इसके अलावा आई एडवाइस कि आप घर पे जब भी बच्चे बाहर जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो फुल बाजू की शर्ट्स वगैरह जो है वो पहन के जाएं, और घर में मॉस्किटो रिपेलेंट ऑयल्स और क्रीम्स का जो है आप इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए, तो हेल्दी डाइट, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना जो है वो ज़रूरी है। प्रेग्नेंट वुमेन, हाइपरटेंसिव या ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं, जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं या जिनको हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, खास करके उन लोगों को प्रिकॉशंस जो है वो ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस में डेंगू जो है वो ज़्यादा सीवियर होने के चांसेस होते हैं।
0: जी, तो अपनी सावधानियां रखने की आवश्यकता है। और जैसा आपने बताया कि घरों में जो अतिरिक्त पानी जमा हो जाता है, जैसे आपके घर के गमलों में, कूलर में, या छतों पर छोटे छोटे कुछ टायर फेंके हुए हैं, या कुछ मिट्टी के बर्तन हैं, या कुछ लोहे के बर्तन हैं, उस पर पानी जमा हो रहा है, और ऐसे में मच्छर वहाँ पनपने लग जाते हैं, और यही मच्छर जब आपको काटता है तो फिर आप डेंगू के शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, संक्षेप में क्या कहेंगे? इस बीमारी से दूर रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और दूसरों का भी ख्याल रखें।
1: जी, डेंगू एक प्रिवेंटेबल जो है प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, इसका प्रिवेंशन जो है वो बेटर है। और यदि आपको या आपके आसपास में किसी भी नोन पर्सन को, व्यक्ति को ऐसी कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो जितना जल्दी हो सके अपने नियरेस्ट डॉक्टर को या हॉस्पिटल को कॉन्टैक्ट करें और अपना इलाज करवाएं।
0: जी,
1: थैंक यू।
0: अपनी बीमारी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं कीजिए। यदि आपको लगता है कि हम बीमार हैं तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। आप खुश रहेंगे तो परिवार खुश रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गगन ज्योत कौर, डेंगू पे बड़ी अच्छी आपने बातचीत की। और मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, आज का दिन आपके लिए शुभ हो।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में डेंगू लक्षण एवं उपचार के बारे में आपको बता रही थी डॉक्टर गगन ज्योत कौर। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र

0: दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर। श्रोता, आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका निधिः झा।

0: और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालन ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia,

अंसारी। 7:45 पर समय होगा गीत एवं गज़लों के कार्यक्रम स्वर सरिता का। आज के फनकार होंगे रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर। 8:00 समाचार प्रभात, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। साथ ही प्रादेशिक समाचार का समय होगा 8:30 पर, जिसे हम रिले करेंगे हमारे राज्य केंद्र से।

8:45 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। 9 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा जोहार पलामू, खेल विज्ञान एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारियों पर आधारित होता हमारा ये कार्यक्रम। कार्यक्रम की प्रस्तुति स्वर होगी प्रीति कुमारी की और संयोजन प्रशांत गौरव की। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से और 10:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, 1:10 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से, 1:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, 2:15 पर होगा हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, 2:30 पर विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे, सदाबहार नगमे हमारे मुंबई केंद्र से, 2:55 पर प्रादेशिक समाचार होगा रांची केंद्र से, 3 बजे विविध भारती के कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 4 बजे प्रादेशिक समाचार होगा रांची केंद्र से, 4:02 पर सेहतनामा विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से, 5 बजे प्रादेशिक समाचार होगा हमारे रांची केंद्र से, 5:02 पर छाया गीत आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से,

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, पेश है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे धर्मू नायक और शहाबुद्दीन अंसारी के गाए चंद लोकगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश में, धर्मू नायक और शहाबुद्दीन अंसारी के गाए लोकगीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम स्वर सरिता, गीत एवं गजलों का कार्यक्रम है ये। आज के फनकार हैं रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर।
1: कहते हैं सारे फूल ही जिसके गरिमा में, वो क्या जाने कि टुकड़े हैं जिगर के मेरे दामा में। हवाए अब्र में क्या मीर हंसता बाग में वो था, गिरी पड़ती है बिजली आज कुछ सहने गुलिस्ता में।

अभी आप सुन रहे थे गीत एवं गज़लों का कार्यक्रम स्वर सरिता। आज के फनकार थे रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से।

0: समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। कार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधारभूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: भारत असम के गुवाहाटी में दो दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
4: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
5: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्यागपत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
6: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
7: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और आवाज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे। India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Keralam beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after five-time world champion Brazil suffer stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his three-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a two-day visit. This will be Mr. Modi's fourth visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
9: The entire island nation is buzzing with excitement and optimism as the Prime Minister Modi arrives here this evening for a two-day state visit. Mr. Prabowo Subianto and Prime Minister Mr. Narendra Modi are expected to discuss on strengthening the comprehensive strategic partnership with a focus on defense cooperation, trade and investment, food and energy security and cultural collaboration. The highlight of the Jakarta's program will be Prime Minister Modi's address to the Indian diaspora, which is drawing excitement across the country. Communities from Bali, Medan, Semarang, Surabaya and Jakarta are preparing a grand welcome complete with cultural performances. Thousands of Indian nationals and people of Indian origin are expected to gather in the venue, describing the visit as a matter of pride and an opportunity to strengthen their connection with the motherland. Shondipan Dashgupta, Jakarta, Indonesia.
8: In the second leg of his tour, Mr. Modi will reach Melbourne on 8th of this month on a three-day visit, where he will participate in the third India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th July. He will hold talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. India will chair the ninth session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva, Switzerland today. Our correspondent reports that the three-day session being organized by the UNCTAD, United Nations Trade and Development, will continue till Wednesday.
2: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. The Intergovernmental Group of Experts is the principal intergovernmental platform for cooperation and dialogue on consumer protection law and policy. Secretary Department of Consumer Affairs Nidhi Khare will chair the session. She will preside over the three-day deliberations and guide discussions among member states on key global consumer protection priorities. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
8: India will host a two-day BRICS Women Working Group meeting under its BRICS chairship, beginning today in Kochi, Kerala. Ministry of Women and Child Development said that senior government officials from BRICS member countries will come together to deliberate on key issues relating to women's empowerment across all sectors and women-led development while advancing cooperation across shared priorities. The Women Working Group meeting will provide an opportunity for member countries to deliberate and build consensus to advance women-led development. The BRICS Heads of Anti-Drug Agencies meeting will begin today in Guwahati, Assam. The two-day event is being organized by the Narcotics Control Bureau under the Ministry of Home Affairs. The meeting will bring together heads of anti-drug agencies and senior officials from BRICS member countries to strengthen cooperation against drug trafficking and substance abuse. A report.
4: The BRICS Head of Anti-Drug Agency meeting in Guwahati will focus on combating synthetic drugs and precursor diversion, strengthening intelligence sharing and operational coordination, and enhancing capacity building and institutional cooperation. Delegates will discuss emerging challenges such as new psychoactive substances, darknet-enabled trafficking, cryptocurrency-linked financial flows, and abuse use of precursor chemicals. India will also showcase its effort to combat drug abuse and trafficking, including the recently released vision document on on Narcotic Control 2026-29. During the meeting, member countries will deliberate on strategies to address evolving drug-related threats and strengthening international cooperation. Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
8: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the special investigation team probing the counting of donations received by the trust. Earlier, the meeting was scheduled to take place at Maniram Chowani around 3 p.m., but now the venue has been changed and the meeting will be held at the premises of the Ram Temple. Our correspondent has the details.
5: The agenda of the meeting includes consideration of the resignation letter submitted by General Secretary Champat Rai and Trustee Dr. Anil Mishra. Members will also be briefed on the interim report of the SIT regarding the counting of donations received through the trust's donation boxes. The meeting will further deliberate on arrangements related to the future management of the Ram Temple. Another key item on the agenda is the presentation and approval of the unaudited income and expenditure statement, balance sheet and other financial documents for the financial year 2025-26. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
8: The nation pays homage to Bharatiya Jansangh founder Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Ministry of Culture in association with the West Bengal government will organize a program in Kolkata to mark the occasion. The program will be organized as part of the two-year official commemoration of the 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, announced by the ministry last year. Union Home Minister Amit Shah will preside over the program along with Union Culture Minister Gajendra Singh Shekhawat and West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari. More from our correspondent.
10: Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata this afternoon to attend events of 125th birth anniversary celebrations of Shyama Prasad Mukherjee. He will head towards Eco Park in New Town. There, he will participate in the groundbreaking ceremony for the construction of a 125-foot statue of Shyama Prasad Mukherjee. Later in the afternoon, during the event at Mukherjee's ancestral residence in Bhavanipur, Amit Shah will pay tribute by garlanding his statue. Kalyan Laha, Akashvani News, Kolkata.
8: Prime Minister Narendra Modi has paid tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, describing him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. In an article, the Prime Minister said Dr. Mukherjee's public life was defined by his unwavering commitment to the indivisibility of India. He said Dr. Mukherjee stood firm during partition to ensure that West Bengal remained an integral part of the country and later dedicated himself to the cause of Jammu and Kashmir. Mr. Modi said the revocation of Articles 370 and 35A in 2019 was the most fitting tribute to his martyrdom. The Prime Minister also noted Dr. Mukherjee's role as an independent India's first Minister for Industry and Supply, saying he laid the foundation of modern industrial India through initiatives such as the Damodar Valley Corporation and the Sindri Fertilizer Plant, while supporting handlooms, cottage industries and artisans. Incessant rain with gusty winds continue to lash Mumbai and coastal Maharashtra. A red alert has been issued for Raigarh district, where major rivers have crossed the danger level. Torrential rains have wreaked havoc in Raigarh and Ratnagiri districts. Building collapses have claimed many lives in Mumbai and Navi Mumbai. We have a report.
11: The IMD has issued an orange alert for Mumbai, Thane, Palghar, Ratnagiri and Sindhudurg for today, forecasting heavy rainfall accompanied by gusty winds. A red alert has been issued for Raigarh district, warning of extremely heavy rainfall. All government, municipal and private schools and colleges in all the coastal districts and Pune will remain closed today as a precautionary measure. Collapse of 2 to 3 houses in a 3-story kachcha, that is makeshift or unauthorized chawl, in Mankhurd area of Mumbai resulted in the death of a total of 6 people, including 5 children and 1 woman. Strong winds led to 142 incidents of trees or branches falling across Mumbai and claimed 2 lives. Heavy rains continued to wreak havoc in Thane and Palghar districts yesterday, claiming 2 lives and triggering multiple structural collapses. With Sangeeta Godbole's report, Komudi Parikh, Akashwani News, Delhi.
8: And in sports, Brazil's veteran player Neymar Jr. has announced his retirement from international football after the five-time world champion suffered a stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup 2026 round of 16 last night. He finished his international career as the all-time leading scorer for Brazil. The 34-year-old forward brought the curtain down on his international career moments after Brazil's hopes of a sixth World Cup title were ended. His retirement brings to an end one of the most celebrated international careers in Brazilian football. In cricket, Australia defeated England by 7 wickets to lift the ICC Women's T20 World Cup at Lord's in London last night. Chasing a target of 151 runs set by England, Australia scored 153 for 3 in 17.1 overs. Beth Mooney was the highest scorer for Australia with 64 runs. Put to bat, England scored 150 for 4 in stipulated 20 overs. In a bilingual live phone-in program, Public Speak at 9:30 tonight, we will bring an insightful discussion on Digital India, Empowering Citizens Through Technology with Gulshan Rai, cybersecurity expert. During the program, listeners can ask questions on the subject. To participate, simply dial the telephone numbers 011-2371-7106 and 011-2331-4444 from 9:30 p.m. onwards. Alternatively, you can also send your queries via WhatsApp to the number 9289094044 or post your questions on X with the hashtag AskEIR. And now for a look at today's newspapers, it's over to Nina Arakal.
12: Thank you, Anuja. All the dailies have covered Prime Minister Narendra Modi's tribute to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary. Quoting the Prime Minister, the Tribune under the headline, Mukherjee, a lamp that still burns bright, says, the one ideal that defined Shyama Prasad Mukherjee public life above all else was the indivisibility of India. The pioneer citing the PM's article writes, Dr. Shyama Mukherjee stands out for his humanitarian efforts, especially during the famine-struck Bengal in 1943, and how he stood firm during the upheaval of partition to ensure that West Bengal remained an integral part of India. A top front-page headline in the Indian Express states, Armed forces seek larger retention of Agniveers after end of four-year tenure with Navy, likely to seek 75% retention, Army and AIAF up to 50%. The Hindu reports government issues notice to Meta on child sexual abuse ads. Hindustan Times writes about the International Cricket Council meet discussing proposals for a structural overhauling of the sport, including shortening ODIs, introducing continental championships, a World Cup championship for T20s, and a fixed window for formats. The Times of India mentions about a survey's report which says childcare housework keeps 69% urban women out of labour force in India. And finally, the Pioneer mentions the passing away of the legendary Pandavani exponent Tijan Bhai, whose commanding voice became the global face of Chhattisgarh's folk tradition under the headline, A Voice That Brought Beam Alive Falls Silent. Her legend lives forever. And with that, it's back to you, Anuja.
8: Thank you, Nina. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. India to chair UNCTAD's ninth session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host two-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust convenes meeting of its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after five-time world champion Brazil suffers stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
13: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री ने धनबाद में कोयले के अवैध खनन और अनाधिकृत परिवहन पर रोक लगाने और कार्रवाई के लिए जीरो कोल लीकेज प्लान तैयार करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने झारखंड से वीबीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर बजटीय प्रावधान करने का किया अनुरोध। राज्यों को 25,863 करोड़ की पहली किश्त जारी की। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर दे रहे श्रद्धांजलि। पूरे झारखंड में मॉनसून

हुआ सक्रिय, अगले 4 दिनों तक बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना। कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और रांची के खेल गांव में आयोजित तीसरी रांची जिला शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न। अभिषेक वर्मा ने 2 अलग अलग स्पर्धाओं में

0: अधिकृत परिवहन पर रोक लगाने और कार्रवाई के लिए जीरो कोल लीकेज प्लान तैयार करने को निर्देश दिया। इसके साथ ही श्री शाह ने अधिकारियों को सीआईएसएफ की तैनाती के लिए प्राथमिकता वाली सूची में कोयला क्षेत्र को शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने अवैध खनन के इलाकों और उसमें शामिल लोगों की पहचान के लिए हाई रिजोल्यूशन कैमरों का इस्तेमाल करने का भी निर्देश दिया। केंद्र सरकार ने झारखंड से वीबीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर आवश्यक बजटीय प्रावधान सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान रविवार को सभी राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीबीजी रामजी के क्रियान्वयन की ऑनलाइन समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने राज्यों को इस योजना के संचालन के लिए 25,863 करोड़ की पहली किश्त भी जारी की।
1: को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गाँव का निर्माण हो जाएगा।
0: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 8 और 9 जुलाई को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय हितधारक परामर्श सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह कार्यक्रम झारखंड में औद्योगिक विकास को गति देने और निवेश के अनुकूल माहौल तैयार करने का दिशा में अहम साबित होगा। 9 जुलाई को मुख्यमंत्री श्री सोरेन विशेष फीडबैक सत्र की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ राज्य में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक चुनौतियों और नीतियों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्नी मीरा मुंडा के साथ कल स्वगणना प्रपत्र भरा। इस अवसर पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि मतदाता सूची में सही जानकारी दर्ज कराना और उसका समय समय पर सत्यापन कराना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।
2: 20 वर्षों में एक बार गहन पुनरीक्षण का कार्य चलता है। सभी मतदाताओं को 2003 और 2026 के बीच में ये सूचना ग्रहण करना, ये सूचना देना कि मतदाता सूची में उसका नाम रहे और जो जिनकी मृत्यु हो गई उसका नाम उससे हटे और नए जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके उसका नाम जुड़े।
0: राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा आज रांची में जामताड़ा, हजारीबाग और रांची जिले से जुड़े 14 मामलों की सुनवाई करेंगी। सुनवाई में नगड़ी में प्रस्तावित रिम्स 2 के लिए भूमि अधिग्रहण, आदिवासी भूमि विवाद, सरना स्थल, खतियान भूमि अतिक्रमण और मुआवजा सहित कई मामलों पर विचार किया जाएगा। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इधर जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड मुख्यालय के डाक बंगला मैदान में कल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का 125वां स्मरण दिवस सह कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मौके पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व सांसद सुनील सोरेन ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन से सीख लेने की अपील की।
3: विधायक सेना प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना पर और हमें 75 वर्षों तक बंगाल में सरकार बनाने में पार्टी को है और वास्तव में बंगाल के लोगों की जो आजादी है वो 4 मई को ही, जब वहाँ चुनाव का जब परी 4 मई को ही बनो।
0: दक्षिण पूर्व रेलवे के आद्रा मंडल के चांडल स्टेशन पर आज से 12 जुलाई तक विकास कार्यों को लेकर कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया गया है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी लेकर ही सफर करने की अपील की है। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मॉनसून सक्रिय हो गया है। पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक

0: आनंद ने कहा कि पूरे राज्य में अगले कुछ दिनों तक बारिश, आंधी तूफान और वज्रपात की संभावना बनी हुई है। वहीं कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। आज रांची, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लोहरदगा और गुमला में भारी बारिश की संभावना है।
1: लो प्रेशर अभी बना हुआ है और तो इसे आने वाले दिनों में झारखंड में भी बारिश सबको बढ़ते हुए दिखेगी। अभी बारिश लगभग रोज देखने को मिलेगी और दो तीन दिन बाद से लगभग सभी इलाकों में आपको ठीक बारिश देखने को मिलेगी।
0: रांची के खेलगांव स्थित टिकैत उमराव शूटिंग रेंज में आयोजित तीसरी रांची जिला शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न हो गई। अभिषेक वर्मा ने 25 मीटर स्टैंडिंग राइफल स्पर्धा में स्वर्ण और 50 मीटर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर दोहरी सफलता हासिल की, जबकि मन्नत कुमारी, कीरत सिंह और रौनक राज ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। समापन समारोह में आईजी प्रभात कुमार और आईजी अनूप बिरथरे ने विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदान किया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने धनबाद में अवैध कोयला खनन और परिवहन पर रोक लगाने को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की समीक्षा बैठक की खबर को पहली सुर्खी बनाई है। इसके अलावा प्रभात खबर ने अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के मामले में आज ट्रस्ट की होने वाली बैठक की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। इसी खबर पर दैनिक जागरण ने लिखा है, चंपत राय के विकल्प की तलाश शुरू, आज होगी ट्रस्ट की बैठक। हिंदुस्तान ने लिखा है, राज्य में साइकिल बाइक फैक्ट्री लगाने की झारखंड सरकार की तैयारी। दैनिक भास्कर ने रांची में संघ कार्यालय पर पेट्रोल बम से हमला, आतंकी साजिश का हिस्सा होने के खुलासे को प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने धनबाद में कोयले के अवैध खनन और अनाधिकृत परिवहन पर रोक लगाने और कार्रवाई के लिए जीरो कोल लीकेज प्लान तैयार करने का दिया निर्देश। केंद्र सरकार ने झारखंड से वीबीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर बजटीय प्रावधान करने का किया अनुरोध। राज्यों को 25,863 करोड़ की पहली किस्त जारी की। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जयंती पर दे रहा श्रद्धांजलि। पूरे झारखंड में मॉनसून हुआ सक्रिय, अगले चार दिनों तक बारिश, आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना। कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। और रांची के खेलगांव में आयोजित तीसरी रांची जिला शूटिंग प्रतियोगिता संपन्न। अभिषेक वर्मा ने दो अलग अलग स्पर्धाओं में जीता स्वर्ण और रजत पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। तो चलिए बिना देर के आपको सुनवाते हैं ये पहला गाना जिसे हमने लिया। फिल्म है कर्ज, आवाज़ किशोर कुमार की है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

श्रोताओं जोहार, स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम जोहार पलामू में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। पुस्तकें वे साधन हैं जिनके माध्यम से हम विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण कर सकते हैं। पुस्तकें केवल ज्ञान ही नहीं देती बल्कि हमें दुनिया के विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और अनुभवों से भी परिचित कराती हैं। पढ़ने की आदत हमारे व्यक्तित्व को समृद्ध बनाती है और हमारी सोच को व्यापक करती है। ये कहा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने।

आप सुन रहे हैं जो कार्यक्रम जोहार पलामू। अब आइए आपको मौसम का हाल बता दें। आज का अधिकतम तापमान रहेगा 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस। कल के टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो कल का अधिकतम तापमान होगा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। आज ह्यूमिडिटी रहेगी 90% तक। आज सूर्यास्त का समय होगा 6:45 पर। कल सूर्योदय का समय होगा 5:11 पर। अब आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।
3: 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाओ।
4: फर्जी ऑफर्स से सावधान,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से, वाह।
6: अनजान ऐप से बचें,
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। आज ज्ञान विज्ञान में हम बात करेंगे ऐसे महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर की, जिन्होंने मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए ऐसा कार्य किया जिसका लाभ आज पूरी दुनिया को मिल रहा है। लुई पाश्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को फ्रांस के डोल नगर में हुआ था। उनके पिता एक साधारण चमड़ा कारीगर थे। बचपन से ही लुई पढ़ाई में बहुत तेज नहीं माने जाते थे, लेकिन वे अत्यंत जिज्ञासु और मेहनती थे। उन्होंने चित्रकारी भी किया, उन्हें उसका काफ़ी शौक था। आगे चलकर उनकी रुचि विज्ञान में हो गई। उस समय लोगों का मानना था कि भोजन अपने आप खराब हो जाता है और बीमारियां भी अपने आप फैलती हैं, लेकिन लुई पाश्चर ने इस धारणा को चुनौती दी। उन्होंने अनेक प्रयोग किए और सिद्ध किया कि हवा में मौजूद सूक्ष्म जीवाणु भोजन को खराब करते हैं, कई बीमारियों का कारण बनते हैं। इस खोज ने चिकित्सा के विज्ञान में नई क्रांति ला दी। इसके बाद उन्होंने दूध और अन्य पेय पदार्थों को सुरक्षित रखने की एक विशेष विधि को विकसित किया। इस प्रक्रिया में दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म करके तुरंत ठंडा किया जाता है, जिससे हानिकारक जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहा जाता है। इसी कारण आज हम सुरक्षित दूध और कई अन्य खाद्य पदार्थों का उपयोग कर पाते हैं। लुई पाश्चर की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धियों में से एक थी रेबीज, जो कि कुत्ते के काटने के बाद होने वाला रोग होता है, उसका टीका तैयार किया था। कई वर्षों तक उन्होंने अथक परिश्रम किया और वर्ष 1885 में पहली बार एक बालक जोसेफ माइस्टर पर इसका टीके का सफल परीक्षण किया, उसका उपचार किया और ये सफल रहा। और आपको बता दें कि आज के ही दिन ये परीक्षण हुआ था और ये सफल रहा था, इसलिए आज लुई पाश्चर के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। ये घटना चिकित्सा इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में गिनी जाती है और इससे लाखों लोगों की जान बचाई जा सकी। उन्होंने यह भी बताया कि ऑपरेशन करने से पहले उपकरणों और हाथों को साफ रखना कितना आवश्यक है। उनके शोध के कारण अस्पतालों में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा, जिससे संक्रमण और मृत्यु दर में काफ़ी कमी आई। लुई पाश्चर का विश्वास था कि विज्ञान का कोई देश नहीं होता, क्योंकि ज्ञान पूरी मानवता की धरोहर है। उन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा और वैज्ञानिक अनुसंधानों को समर्पित कर दिया। 28 सितंबर 1895 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी खोज आज भी मानव जीवन की रक्षा कर रही है। जब भी हम सुरक्षित दूध पीते हैं, टीकाकरण करवाते हैं या स्वच्छता का महत्व समझते हैं, तब कहीं ना कहीं लुई पाश्चर का योगदान याद करते हैं।

श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते बारी है आज के टिप्स की। श्रोताओं, गर्मी सॉरी बरसात का मौसम तो शुरू हो ही गया है, तो मलेरिया से बचाव की ज़रूरत है। मलेरिया पनपता है क्योंकि मच्छर पनपते हैं तो मलेरिया होता है, तो आपको घर के आसपास कहीं पानी जमा नहीं होने देना है। पुराने टायर, गमले, कूलर, बाल्टी, ड्रम, नारियल के खोल, कहीं भी अगर पानी जमा हो तो आप उस पानी को वहाँ से हटा दें। कूलर में पानी सप्ताह में बदलें, और अगर उपयोग में ना हो तो पूरी तरह से खाली करके उसे सुखा दें ताकि मच्छर ना पनपे। बहुत कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि तेज़ बुखार, ठंड लगना, कपकपी होना, सिर दर्द होना, शरीर दर्द होना। अगर ऐसा कुछ हो तो आप डॉक्टर से ज़रूर मिलें। बरसात का आनंद तभी है जब हम स्वस्थ रहें। थोड़ी सी सावधानी, नियमित सफाई और मच्छरों से बचाव के उपाय अपनाकर हम स्वयं और अपने परिवार और पूरे समाज को मलेरिया जैसी गंभीर बीमारी से सुरक्षित रख सकते हैं। अब आइए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, चलते चलते बस यही कहना है कि आप हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते और स्वस्थ रहें। कार्यक्रम जोहार पलामू से अपनी रेडियो दोस्त प्रीति को इजाज़त दें। नमस्कार।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
1: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
1: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिव कुमारी और राम दुलारी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने

0: पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
1: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
0: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है, लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
1: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है, पेड़ों और वनस्पतियों में जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
0: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, डायमंड सीड किसे कहते हैं।
0: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था, सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
0: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559। और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: ये धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है, हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
1: जी।
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
1: जी।
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग

0: टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे।
1: जी,
0: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
0: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है,
1: जी,
0: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
1: जी,
0: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा करियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
1: जी।
0: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
1: जी,
0: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
1: जी,
0: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
0: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
1: जी।
0: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
1: जी
0: विद्यार्थी को
1: संकोच
0: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
1: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
0: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
1: जी,
0: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
1: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
0: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
1: जी।
0: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती
1: हैं।
0: जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से
1: जी।
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है।
1: जी हाँ।
0: ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है।
1: जी।
0: आज के समय में जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई की ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं
1: जी।
0: तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं, जैसे मान लीजिए सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहे। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहें, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ
1: जी,
0: कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से, कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं
1: जी,
0: कि आप ऐसा करिए कि आपको चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें। क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशंस हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है,
1: हाँ, मनोबल बढ़ता,
0: मनोबल बढ़ता है।

0: जी, है जी, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना। ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
0: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
1: ऐसा होता
0: उसके
1: है।
0: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो, जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
1: जी,
0: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए, इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है, मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे, तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: जी। तो अब डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
0: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है।
1: हाँ।
0: एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
1: हो सकता है,
0: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है
1: जी।
0: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है
1: जी।
0: पकड़ने से मतलब है उसको आइडेंटिफाई करना।
1: हाँ,
0: है
1: बिल्कुल,
0: उसकी पहचान करनी, और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है
1: जी, उसी को।
0: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है।
1: हाँ, होती है।
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया,
1: प्रयास
0: वो सफल
1: किया?
0: नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए, गलती से भी कुछ सीखा ना।
1: हाँ, होता
0: तो,
1: है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी?
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि हैं उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए, विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप हैं वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना।
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी,
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल,
1: ये
0: नियमली हम बनाएं, टाइम टेबल हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे, और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए, जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी।
0: 8448440632 8448440632 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 14416। ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं, और NCERT के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए, और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपना कर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया में वे राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ प्रबंधन मंदिर जाएंगे और भारतवंशियों से भी बातचीत करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
1: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख

0: मुद्दों पर विचार होगा। असम विधानसभा का बजट सत्र आज गुवाहाटी के दिसपुर में शुरू हो रहा है। नवगठित विधानसभा के पहले बजट सत्र में 16 कार्य दिवस होंगे। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट अनुमान 2026-27 10 जुलाई को पेश किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। आंध्र प्रदेश में अमरावती स्थित सचिवालय कार्यालय आज से कर्मचारियों के लिए 3 दिन के विशेष गहन पुनरीक्षण शिविर का आयोजन करेगा। इसका उद्घाटन मुख्य सचिव जी साई प्रसाद और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी विवेक यादव करेंगे। इस शिविर में मतदाताओं के ऑनलाइन जनगणना प्रपत्र जमा करने, नए मतदाताओं के नामांकन, मृत मतदाताओं के नाम हटाने और अन्य मतदाता विवरणों में सुधार किए जाएंगे। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माही, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज तेज वर्षा का अनुमान है। वहीं ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In his departure statement, the Prime Minister said that he will visit Indonesia from 6th to 8th of this month at the invitation of President Prabowo Subianto. He said the visit will further deepen the comprehensive strategic partnership which was elevated during his 2018 visit to Indonesia and follows President Prabowo's state visit to India as a chief guest at the Republic Day celebrations in 2025. Prime Minister Modi said that he will also interact with the Indian diaspora and visit the Prambanan temple complex in Yogyakarta with President Prabowo. From Indonesia, the Prime Minister will travel to Melbourne at the invitation of Australian Prime Minister Anthony Albanese. The nation pays homage to Bharatiya Jan Sangh founder Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Ministry of Culture in association with the West Bengal government will organize a program in Kolkata to mark the occasion. The program will be organized as part of the 2-year official commemoration of the 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee announced by the ministry last year. Union Minister of Cooperation Amit Shah will attend the 5th Foundation Day ceremony of the Ministry of Cooperation in New Delhi today. The ministry said the ceremony will be held in line with the vision of Sahakar Se Samriddhi. On the occasion, Mr. Shah will lay the foundation stone and inaugurate several key initiatives. These include inauguration of 232 grain storage godowns, Bhumi Pujan of Sahakar Van, Bhumi Pujan of tissue culture facilities in Uttar Pradesh and Maharashtra. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva, Switzerland. The session is being organized.

अब आते हैं उस किस्से की तरफ जब उन्होंने भटाला दिली ओसरी ये जो प्ले था इसमें किंचित गंधर्व मराठी में ऐसे रोल्स को कहा जाता है वो जब किया था हालांकि मेरे दादाजी का बिल्कुल विरोध था पापा जो प्लेज वगैरह करते थे बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक बिजनेसमैन थे और अहमदनगर वैसे ही बहुत पुरुष सत्ताक जिसे हम कहते हैं पेट्रियार्कल शहर है

0: आज भी है। तो बेटा कुछ नहीं कमा रहा है, बहू पैसे कमा रही है, बेटा नाटक वगैरह करता है, इससे थोड़ी ना घर चलेगा। ये जो सब संकल्पनाएं हमारे समाज में थी उस वक्त, वो बहुत स्ट्रांगली हमारे घर में भी थी, और इसलिए वो कभी जाते नहीं थे, इनका कुछ नाटक का प्रयोग हो या कुछ हो, शो हो, तो बिल्कुल नहीं जाते थे। लेकिन सब लोग शहर में कहते थे, अरे वाह वाह वाह, तुम्हारा बेटा क्या अच्छा काम करता है, ये करता है, वो करता है। तो उन्होंने सोचा, चलो आज मैं चलता हूँ, देखता हूँ, दोस्तों को लेके जाता हूँ इनका प्ले देखने। और वो गए वो प्ले देखने, और उसमें पापा ने ये किंचित गंधर्व, जो फेमिनिन कैरेक्टर था, वैसा रोल किया हुआ था। ये तो मतलब अपमान हो गया पापा का कि मेरा बेटा इस तरह से काम कर रहा है। तो वो घर पे आए और फिर वो रुके रहे, हमारी जो हवेली है उसके गेट में फर्स्ट फ्लोर की गैलरी आती है ऐसे, तो वो रुके रहे वहां पर। और जैसे ही पापा रात में आए घर पे, उन्होंने ऊपर से एक चप्पल दे फेंकी।
1: ओहो हो हो,
0: और कहा कि मराठी में नाचा बोलते हैं उसको, कि थोड़ा सा यू नो ऐसे हिंदी में क्या कहा जाता है मुझे पता नहीं है, पर थोड़ा सा फेमिनिन इस तरह से, तो नाचा जी काम कराई जा तुला, इस तरह के काम करोगे तुम, हाँ तो खबरदार ऐसा फिर से काम किया तो, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसलिए आई थिंक जब सड़क फिल्म मिली तब पापा ने बताया नहीं होगा, पर तब तक काफी पानी बह चुका था, लॉर्ड ऑफ वाटर अंडर द ब्रिज। दादाजी को भी समझ में आ गया था कि चलो एक्टिंग है, चलो पैसे तो कमा रहा है, तो चल रहा है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो जब सड़क आई तब पापा को लगा था कि शायद फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी
1: कि एक बार फिर से वो जनाना
0: रोल आया है तो फिर से एक चप्पल खानी पड़ेगी। लेकिन तब तक दादाजी भी काफी समझ चुके थे कि अभी ये तो जो भी कर रहा है वो बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, और घर में जो विरोध था उनकी एक्टिंग को लेकर वो काफी सेटल हो गया था। और मुझे याद है दादाजी ऐसे छोटे छोटे जो आर्टिकल्स आते थे न्यूज़पेपर में, छोटे से छोटा आर्टिकल भी वो ऐसे काट के भेजते थे बाय पोस्ट हमें बंबई में, तो उनका ध्यान पूरा था
1: कहाँ क्या चल रहा है,
0: कहाँ क्या चल रहा है, मेरा बेटा क्या कर रहा है, बहू क्या कर रही है, पोतिया क्या कर रही है, ये सब उनका ध्यान था, बिकॉज ही वॉज द हेड ऑफ द फैमिली। लेकिन उन्होंने वो ये दे रखी थी कि चलो ठीक है अभी करो, तुम्हें यही करना है तो करो।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो काफी सराहा गया, महारानी वाला जो रोल है उसकी
0: आज तक
1: उसकी रीलें चलती हैं, और जो उनकी एक्टिंग है वो आज तक वो संवाद याद किए जाते हैं जो वहां उन्होंने किए थे। लेकिन इससे पहले हुकूमत की बात करनी जरूरी है।
0: ओ यस ऑफ कोर्स, हुकूमत है तेरी मेहरबानियां है, पुराना मंदिर है, ये काफी सारी फिल्में हैं जो
1: 80s वाला दौर,
0: हाँ हाँ हाँ 80s वाला पूरा, 83 से आगे वाला पूरा दौर। सो हुकूमत की बात करें तो हुकूमत वॉज अ लैंडमार्क फिल्म, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उस समय धर्म जी का वो कमबैक था हुकूमत के साथ।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और पापा विलन और धर्म जी हीरो, ऐसी बाद में काफी सारी फिल्में आई, तो एक वो दौर चला एंड पापा प्रूव टू बी अ लकी चार्म।
1: हाँ, ये बात जो है बहुत ज्यादा इसका जिक्र होता है कि धर्मेंद्र की फिल्म में अगर सदाशिव जी हैं तो वो चलती
0: तो है। वो चलती है, तो ये बहुत ही सही बात है। और उस समय तो ऐसा था कि इतनी फिल्में वो एक साथ कर रहे थे, पापा और धर्म जी या पापा और मिथुनदा, कि या तो पापा राजस्थान में शूटिंग कर रहे हैं या तो ऊटी में शूटिंग कर रहे हैं, तो तो हुकूमत वॉज अ फिल्म लाइक दैट। कि उस समय मुझे याद है कि तब मैं थोड़ा थोड़ा समझने लगी थी कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है। हाँ, और उसमें एक सीन है जहां पर वो धर्मेंद्र की माँ होती है, शायद अभी मैं भूल चुकी हूँ वो रेफरेंस, लेकिन उनके हाथ काट के पापा उसे टोंटी टोंटी ऐसा बोलते हैं कि हाथ कटी हुई इस तरह से। और मैं लगभग 8-9 साल की रही होंगी तब, और उस समय टीवी पे फिल्में नहीं आती थी, केबल भी नहीं था, तो हम लोग थिएटर में जाकर देखते थे, तो थिएटर में जाकर देखते थे। और उस बड़े पर्दे पर जब मैंने देखा कि पापा उस बुढ़िया को टोंटी टोंटी बोल रहे हैं, तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस वक्त कि मैं घर पे जाकर बाद में 2 दिन तक मैंने पापा से बात नहीं की थी। तो पापा ने कहा क्या हुआ, क्या ये वो, तो फिर अल्टीमेटली जब मैंने बात करी तब मैंने कहा यू नो बहुत अच्छा हुआ कि वो हीरो ने आपको ना मुंह में ऐसी बंदूक रख के गोली मारी। तो बोले

0: तो आप उस बुढ़िया को टोंडी टोंडी बोल रहे थे। तो वो उम्र भी ऐसी थी कि हम सब कुछ सच मानते थे,
1: हाँ
0: और उन्होंने भी कभी ये एफर्ट्स नहीं लिए कि मतलब उनको लगता था ये जो आपका इनोसेंस है ये इस तरह से बरकरार रहे तो बेहतर है। इस तरह से हुकूमत की याद तो मेरी ये है। और हुकूमत 50 हफ्ते चली थी, गोल्डन जुबली थी, तो पूरा साल भर थिएटरों में
1: और बहुत खूंखार रोल था वो
0: बहुत
1: उनका।
0: ही ज्यादा। काला नाग, काला नाग
1: हाँ
0: राइट,
1: वो,
0: बीबीडीएन या काला नाग ऐसा ही कुछ रोल
1: हाँ
0: था।
1: और वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है।
0: नाग हूं मैं, नाग काला नाग, सामने आ जाए तो अपने बाप को भी डस लो। आई विल नेवर फॉरगेट। ये बहुत ही मतलब वो कुछ लैंडमार्क डायलॉग्स हम जिसे कहते हैं ना,
1: हाँ बिल्कुल।
0: वो जैसे सड़क का भी एक डायलॉग था। और ये डायलॉग्स मुझे याद है क्योंकि हम लोग जब दोस्त लोग बैठते थे तो हम लोग हंसी मजाक में ये डायलॉग्स बोलते थे। हाँ,
1: अच्छा
0: और दे यूज टू एक्सपेक्ट कि रीमा तुम बोलो ना पापा का एक
1: अरे
0: डायलॉग। तो
1: गजब।
0: बहुत मजा आता था। तो हुकूमत के कुछ डायलॉग्स थे, तो यही है वो चीटी जिसने अपने नाखूनों के दम पे हमारी हुकूमत को कुरदने की जरूरत की थी।
1: बाप
0: तो इस तरह से डायलॉग्स काफी सारे, और उस समय डायलॉग्स की ऑडियो टेप्स आती थी और लोग बाकायदा वो सुन के बाय हार्ट करते थे फिल्में। बिकॉज जब तक आप थिएटर नहीं जाते थे आप फिल्म देख नहीं पाते थे, तो अगर नहीं देख पाते हो तो सुनते थे लोग फिल्में। तो ऐसी तो काफी सारी फिल्मों के डायलॉग्स और आवाज कलाकारों की उस वजह से बहुत ज्यादा फेमस और जहन में है लोगों के।
1: बिल्कुल। उस दौर की दो फिल्मों का जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक तो पुराना मंदिर, क्योंकि वो उस स्टाइल की फिल्म थी भूतिया फिल्मों के दौर की, जिसमें वो एक एलिमेंट बनकर आते
0: हाँ
1: हैं जो
0: हाँ
1: कि एक विलेनिश रोल
0: रोल
1: होता है,
0: है।
1: खतरनाक
0: हाँ,
1: वाला, और उनकी आंखों में वो डरावना
0: ओ मैं वो
1: मामला।
0: फिल्म आज तक नहीं देख पाई। मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि उसमें उनका चेहरा ऐसा आधा जला हुआ है,
1: बिल्कुल।
0: मैं आज तक इमेजिन ही नहीं कर सकती। मतलब जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैंने वो फिल्म प्रैक्टिकली आंखों पे हाथ रखते हुए देखी हुई है,
1: सिर्फ सुना है।
0: सिर्फ सुनी है वो फिल्म, और मैं आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाई हूं वो फिल्म देखने की।
1: उस दौर की एक और फिल्म है विधु विनोद चोपड़ा की खामोश,
0: ओ
1: क्योंकि वो एक लैंडमार्क मूवी है,
0: करेक्ट
1: वहां से
0: करेक्ट,
1: वो पूरी यात्रा जो है वो आगे
0: हाँ
1: बढ़ती है।
0: हाँ
1: तो उसका हमने सोचा कि जिक्र करते हुए आगे बढ़े, लेकिन यहां अमिताभ बच्चन से उनका एक तूफानी सामना हुआ
0: करेक्ट,
1: आखिरी
0: आखिरी
1: रास्ता
0: रास्ता
1: फिल्म में।
0: में।
1: वो भी बड़ा खतरनाक रोल था,
0: बहुत ही बहुत ही। और उस
1: बहुत ही
0: समय
1: डरावना, और उससे लोगों की जो तारीफ है वो नफरत की शक्ल में उनको कितनी मिली।
0: नफरत तो लोगों ने की, बहुत ज्यादा नफरत की, लेकिन उस नफरत में प्यार ही छुपा हुआ
1: ऑफ
0: था
1: कोर्स
0: कलाकार
1: बिल्कुल।
0: के प्रति, जो प्यार था वो। अगेन अमित जी का वो कमबैक था, आखिरी रास्ता जब आई थी, उनका कूली का एक्सीडेंट होने के बाद उनकी वो पहली कुछ फिल्मों में से वो फिल्म थी और पहली सुपर डुपर हिट फिल्म हुई थी। तो उस समय अमित जी एक फेनोमेना थे, राइट। सब लोगों को ऐसे जा रहे हो आप अमित जी के साथ काम कर रहे हो, अमित जी के साथ काम कर रहे हो ऐसे। और पापा बहुत कूल हुआ करते थे, मतलब हाँ ठीक है ओके ऐसे। मतलब ये जो एक बात है ये उनमें थी कि सामने बैठा हुआ कलाकार कितना फेमस है या नहीं है इससे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, मुझे क्या करना है उसमें वो रहते थे।
1: इसीलिए उस फिल्म में उनकी एक सशक्त मौजूदगी है, अमिताभ
0: एग्जैक्टली
1: बच्चन के सामने
0: सामने।
1: विलेन, और पहले जो लोग विलेन करते रहे थे जिन्हें कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री के उस समय के दिग्गज लोग, उनके अलावा सदा शिवजी आते हैं और वो अपनी पूरी छाप छोड़ते हैं।
0: पूरी
1: वो
0: तरह से।
1: जिस तरह से वो नफरत हासिल करते हैं खतरनाक विलेन बन के, वो उसमें पूरा नजर आता है।
0: पूरा पूरा इस दैट इज अगेन बिकॉज जैसा मैंने कहा वो भोला साम जो मैं कहते आ रही हूं वो वैसे ही थे। वो आप मस्त रहते थे, उन्हें क्या करना है मुझे क्या करना है, मुझे अभी कैसे करना
1: अपना
0: है,
1: फर्ज निभाओ।
0: अपना फर्ज निभाओ, उसमें वो रहते थे। तो इसलिए कोई भी हो सामने, धर्म जी हो, हालांकि धर्म जी या अमित जी, धर्म जी तो पापा बचपन से उनका काम देखते आ रहे थे, राइट। तो
1: बिल्कुल।
0: प्रेशर तो बनता है इज व्हाट आई थिंक, लेकिन फिर भी बिकॉज उनको लगता था मैं मेरा काम है, मैं मेरा काम करूंगा, मैं हट जाऊंगा खत्म की बात। और जो आप नफरत की बात करते हो तो नफरत से ज्यादा डर, बिकॉज मैं छोटी थी उस वक्त और मेरे दोस्त भी सब मेरी उम्र के ऑफकोर्स, तो

0: नफरत इतनी नहीं, लेकिन डर बहुत लगता था।
1: बिल्कुल।
0: तो मेरी स्कूल के बच्चे या हमारी बिल्डिंग में भी जो बच्चे रहते थे, वो पापा अगर घर पे हो तो वो घर के अंदर ही नहीं आते थे, क्योंकि उनको लगता था अरे ये बहुत बड़ा विलन है, ये हम इसके सामने नहीं जा सकते।
1: अच्छा, स्कूल में ऐसा होता था कि सदाशिव अमरापुरकर की बेटी हैं तो थोड़ा डिफरेंट है?
0: लकीली नहीं हुआ वैसा, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि हमारे घर पे जो माहौल था वो काफी मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिलीज में जैसा होता है वैसा ही था। तो स्कूल में जाओ, अटेंडेंस पूरा रखो, होमवर्क करो, ये सब वैसा ही था। और स्कूल में ऑफकोर्स सब लोग मुझे जानते थे, बिकॉज मैं सदाशिव अमरापुरकर की बेटी थी, और मैं बहुत कम लोगों को जानती थी, बिकॉज मैं वैसे बहुत इंट्रोवर्ट थी उस वक्त। अच्छा। और मैं जितनी बात करती हूँ उतनी उस वक्त नहीं करती थी, पर मैं बहुत लकी हूँ ये मैं कह सकती हूँ कि उस वक्त जो मेरे दोस्त बने वो आज तक मेरे दोस्त है। और वो जो सही में रीमा इंसान क्या है उसके साथ वो दोस्त है। टीचर्स को ऐसे लगता था जैसे अभी स्कूल में कुछ बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए डोनेशन चाहिए, तो रीमा तुम्हारे पापा तो देंगे ही ना डोनेशन, ऐसा ऐसा हुआ करता था। पर उसके अलावा वैसे अलग ट्रीटमेंट किसी ने दी नहीं। हमारी टीचर्स भी बहुत अच्छी थी, वो ये जानती थी कि हाँ ये पैम्पर्ड अपने घर पर होगी, लेकिन यहाँ पर शी हैज टू परफॉर्म एज अ स्टूडेंट। तो उस तरह से स्कूल की ओर से ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते थे, किसी शादी में जाते थे या कोई इवेंट में जाते थे, तो एक सेपरेट आइडेंटिटी ये हमेशा होती थी, पापा साथ में हो या ना हो, ये सदाशिव जी की बेटी, ये जो है ये आज तक नहीं छूटा, ये हमेशा रहता था। और ये बहुत ही मजे वाली बात थी, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता था जब आप छोटे होते हो तो आप कुछ चीजों की अपेक्षा करने लगते हो कि अभी मैं वहां जाऊंगी वो कहेंगे सदाशिव जी की बेटी, और फिर उनका बर्ताव इस तरह से बदलेगा, ये आप एक्सपेक्ट करते हो।
1: ओहो, करेक्ट।
0: तो अगर आप कहीं जाते हो, जैसे हम अहमदनगर जाते थे कभी और उनके जो बचपन के दोस्त है उनके घर पे जाते थे, तो वहां पर तो ये रीमा तात्याची मुलगी इतना ही था ना, इट डिडंट मैटर वेदर ही वाज सदाशिव अमरापुरकर और नॉट। तो उस समय मुझे ना थोड़ा सा ऐसा लॉस लगता था कि अरे ऐसे कैसे, इन्होंने बताया अभी मैं पापा की बेटी हूं फिर भी ये लोग तो मुझसे नॉर्मली बात कर रहे हैं। तो ये कभी कभी होता था, पर अभी जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे समझ में आया कि वो क्रेडिबिलिटी जो है वो आपके पिताजी की है, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी आपको कमानी पड़ेगी, तभी लोग आपको वो सम्मान देंगे।
1: बिल्कुल। सबसे व्यस्ततम दिनों में भी उनका क्या शेड्यूल हुआ करता था, जब शूट्स होते थे घर पर क्या उनका जीने का तरीका था?
0: बहुत ही सिंपल था। मतलब मुझे याद है पापा जब घर पे होते थे तो एक तो वो हॉल में बैठते थे शांति से।
1: अच्छा।
0: हाँ, और उनका ऐसा बिल्कुल नहीं था मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए या मुझे मेरा मी टाइम जिसे हम कहते हैं आजकल, वैसा उनका बिल्कुल नहीं था। जैसा मैंने कहा कि उनके दोस्त हमेशा उनके आसपास रहते थे, तो किसी ना किसी के साथ वो रहते थे, कुछ ना कुछ बातचीत होती थी। और वो सवेरे उठते थे ब्रश करके, चाय ये उनकी क्या कहते हैं
1: जरूरत,
0: जरूरत से ज्यादा उनका प्यार था। दिन भर वो चाय पीते थे, एक एक घूट एक एक घूट ऐसे करके। तो चाय पीना, न्यूज़पेपर पढ़ना, रोज सवेरे एक डेढ़ घंटा वो शांति से न्यूज़पेपर पढ़ते थे।
1: अच्छा।
0: फिर सवेरे जो ये उनके सारे दोस्त थे उनको पता था कि अगर इससे बात करनी है तो सवेरे के टाइम फोन करो, वो जल्दी उठते थे, 6:30 बजे उठ जाते थे वो जब वो घर पे होते थे। और उठकर न्यूज़पेपर पढ़ना, चाय पीना, गपशप करना, फैमिली के साथ गपशप करना, फिर अलग अलग चीजों पर बातचीत करना, बिकॉज हमारे कुटुंब में हम लोग सब लोग बहुत अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड्स से आते हैं। मेरी सबसे बड़ी बहन जो है वो साइकोलॉजिस्ट है।
1: ओके।
0: तो मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी इनके बारे में उसकी पढ़ाई है और वो काम भी करती है उसमें। मेरी जो दूसरी बहन है उसने मास्टर्स इन सोशल वर्क किया हुआ है, और मैंने जो है वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स किया हुआ है। तो वो दौर मुझे याद है जब मेरी बहन मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही थी और मैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स कर रही थी। तो ऐसे हो गया था ना हमारे घर पे कि मेरी बहन पूरी सोशलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी और मैं पूरी कैपिटलिस्ट आर्ग्यूमेंट्स करती थी, और हमारे घर पे घंटों तक ये वाद विवाद चलते थे।
1: पिताजी की भूमिका अंपायर की,
0: अंपायर की, कभी मेरी साइड लेते थे कभी उसकी साइड लेते थे, पर धीरे धीरे समझ में आया वो हमें ना हमें जो कहना है वो कहने देते थे। फिर अगर हमने कभी जाकर पूछा कि क्यों आपको ये बात मेरी क्यों नहीं अच्छी लगी या आपने क्यों नहीं ये

0: सही समझा या क्या लगा आपको, तब वो जाके एक्सप्लेन करते थे कि देखो इसमें ये बात गलत थी इसलिए मैंने ये किया था, पर वो पूरी तरह से फ्रीडम देने के बिल्कुल पक्ष में थे कि आप पूरी तरह से सोचो, आप अपने अनुभव लो, आप उसमें से सीखो और आप समझो आपको क्या दिख रहा है आपके आसपास और उसका कैसे अर्थ निकालना है, आपके आजू बाजू जो घटनाएं घट रही है उसका अर्थ कैसे निकालना है ये आप डिसाइड करो।
1: आप लोगों के एनुअल फंक्शंस में वो आते
0: नहीं
1: थे?
0: बिल्कुल नहीं क्योंकि
1: क्यों?
0: फिर लोग एनुअल फंक्शन में परफॉर्मेंस देखेंगे ही नहीं, लोग इनको ही देखने
1: सख्त मनाही।
0: बैठेंगे ऐसे सख्त मनाई, बिल्कुल नहीं आते थे। लोगों ने बहुत प्यार किया, तो इतना बड़ा नाम जब आपके साथ जुड़ा हुआ होता है तो जैसे उसकी कुछ अच्छी चीजें होती है वैसे कुछ बुरी चीजें भी होती है। मुझे याद है पापा को, जैसा मैंने कहा, इतिहास का बहुत शौक रहा है और हम जब छोटे थे तो पापा, मतलब हमारी फैमिली, उनके जो दो तीन दोस्त करीबी दोस्त है उनकी फैमिलीज, ऐसे हम चार पांच फैमिलीज मिलकर हर साल कहीं पर घूमने जाते थे। तो पापा को अजंठा एलोरा औरंगाबाद के पास जो है वो देखना था, बहुत उनकी इच्छा थी, बहुत सालों में उन्होंने नहीं देखा था तो वो उन्हें देखना था इसलिए हम लोग औरंगाबाद गए। औरंगाबाद में दौलताबाद फोर्ट भी है, वहां पर बीबी का मकबरा भी है, तो एक तो जहां पर शहरों के अंदर जो मॉन्यूमेंट्स थे वो देखने के लिए तो पापा आ ही नहीं पाए बिकॉज वहां पर वैसे ही इतनी रश होती है, लेकिन अजंठा एलोरा तो हम लोगों ने एक बड़ी मैटेडोर की थी बिकॉज हम लोग 15-16 जन थे, बच्चे बड़े सब सब पकड़ के। 1 घंटे की दूरी पर है छत्रपति संभाजी नगर से अजंठा की बुद्ध गुफाएं हैं, तो वो देखनी थी बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर और वो फिलॉसफी, उन्होंने बहुत उस पर रिसर्च किया हुआ था, बहुत पढ़ा हुआ था और उनकी इच्छा भी थी कि कभी गौतम बुद्ध का रोल वो अगर कर पाए तो, लेकिन वो हो नहीं पाया। खैर वहां पर हम लोग जब गए उस समय, अभी तो हाईवेज बन चुके हैं पर उस समय छोटे छोटे चेक पॉइंट्स होते थे। और उस समय हमारी मैटेडोर का जो नंबर था वो हर एक चेक पॉइंट पे पहुंच चुका था। हाँ तो हमको लगता था हम मैटेडोर में हैं, किसी को पता नहीं है अंदर पापा बैठे हैं, पर हर एक चेक पॉइंट पे जो रश था, जो लोगों की भीड़ थी वो बढ़ती जा रही थी। तो अल्टीमेटली ऐसा हुआ वो अजंठा में जा ही नहीं पाए
1: अरे अरे अरे
0: क्योंकि वो उतर ही नहीं पाए, वहां पर एक रिजॉर्ट था वहां पर जाकर एक रूम में वो बैठ गए क्योंकि अगर वो बाहर आते तो हम भी नहीं देख पाते, तो
1: ओ
0: उन्होंने कहा मैं यहाँ बैठता हूँ तुम जाकर देख कर आओ। तो इस तरह से जब आपका नाम इतना बड़ा हो जाता है तो लोग जिस तरह से प्यार करते हैं वो अच्छा तो बहुत लगता है, हालांकि वो उस प्यार के लिए ही सब कलाकार काम करते हैं, लेकिन इस तरह से कभी कभी उसका एक नेगेटिव या बुरा असर पड़ता है कि भूल जाते हैं लोग कि ये कलाकार तो है, हम इस पे प्यार तो करते हैं पर ये एक फैमिली मैन भी है, इसकी भी एक निजी जिंदगी है, इसे भी कुछ उसके बीवी बच्चों के साथ दोस्तों के साथ वक्त बिताने का हक है,
1: बिल्कुल
0: ये लोग भूल जाते हैं। ऑफ कोर्स अभी जैसे सोशल मीडिया का दौर चला है वैसे लोगों को भी ये समझ में आने लगा है कि ये कलाकारों की जिंदगी भी आम लोगों की तरह ही होती है, इसलिए अभी थोड़ी बहुत स्पेस काफी अच्छे से देते हैं लोग जो है वो, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा एक श्राप है ऐसे हम कह सकते हैं।
1: बिल्कुल। यहां हम साथ साथ हैं फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: श्योर।

0: देखिए, हम 80 के दशक की बातें करते करते 90 के दशक तक पहुंच गए। हमने सड़क की बात कर ली और उनकी जो यात्रा है उसमें अचानक से एक बाढ़ आती है कॉमेडी रोल्स की, जो उसके बाद फिर पूरी एक धारा चल पड़ती है। मुझे लगता है कि आंखें से वो मामला शुरू होता है और फिर आंखें, इश्क और कुली नंबर वन पूरी लिस्ट है।
1: करेक्ट।
0: तो ये जो यात्रा है इसकी बात करते हैं। कभी उनसे ये बातें हुई कि विलेन के रोल करना उनको ज्यादा लुभाता है या ये जो कॉमेडी की धारा में वो किस तरह से मुड़ गए?
1: तो पापा की एक बात जो शायद ही मैंने आज तक कहीं पर कही हो वो ये थी कि उनका कॉमेडी का जो टाइमिंग था वो बहुत बहुत कमाल का था। मतलब अगर हम बैठ के बात भी कर रहे हैं ना
0: जी,
1: तो उसमें भी वो जिस तरह से रिएक्ट करेंगे कॉन्वर्सेशन में, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में, वो भी बहुत मजा किया था।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो उनकी कॉमेडी वो ऐसे चेहरे ऐसे ऐसे करना ऐसी नहीं थी।
0: वो उनके पंच आते थे,
1: पंच आते थे और वो उसी तरह से बात करते थे। कभी अगर मम्मी पापा की भी बात चल रही हो घर पे तो पापा कुछ ऐसी एक लाइन बोल देते थे कि जिसके ऊपर पूरा घर हंस रहा है और मम्मी ऐसे तिलमिला उठी है कि पर कुछ बोल नहीं पा रही है।
0: फिर वो जवाब बाद में,
1: हाँ वो बाद में वो उनको मिलता होगा जवाब, पता नहीं क्या है। तो वो उनका जो कॉमेडी का टाइमिंग था वो पहले से था और कॉलेज के दिनों में उन्होंने काफी सारा कॉमेडी किया हुआ था। जैसा मैंने कहा कि एक बार वो विलन बन गए तो विलनी का एक छाप उनपे बैठ गई और उसी तरह से काम वो करते रहे करते रहे करते रहे। एक पॉइंट ऐसा आया कि जब उनको लगा कि अभी हमें एक्सप्लोर करना चाहिए और उस समय हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी एक दौर से गुजर रही थी जहां पर मैंने प्यार किया जैसी फिल्म आई थी जहां पर विलन तो था पर वो पूरी तरह से विलन नहीं था। उसके बाद हम साथ साथ है आई जहां पर विलन ही नहीं था, राइट? तो धीरे धीरे धीरे धीरे इंडस्ट्री का दौर भी बदल रहा था।
0: बिल्कुल। वो जो हिंसा वाली फिल्में हैं उसकी बजाय एक दूसरी धारा चल रही थी,
1: फैमिली सिनेमा ज्यादा आ रहा था और कॉमेडी। और उस समय गोविंदा, शक्ति कपूर, कादर खान, इनकी जो ये एक वेव आई थी,
0: बिल्कुल
1: उसमें पापा एकदम फिट बैठे बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बिल्कुल मैच करता था इन सब लोगों के साथ। इसलिए आई थिंक ही स्विच्ड टू कॉमेडी बिकॉज उन्हें मजा भी आता था वो करने में। चंकी पांडे हो, गोविंदा हो, मिथुन दा हो, कादर खान हो, असरानी हो, जॉनी भाई हो, इन

0: सब लोगों के साथ एक अलग इक्वेशन और हर एक फिल्म में अलग किरदार के साथ अलग इक्वेशन,
1: उनको डायलॉग्स
0: जो
1: भी मजेदार मिलते थे।
0: बहुत मजेदार मिलते थे। और क्योंकि विलन जब आप होते हो तो आपका वो पक्का होता है, आप बुरे होते हो और आपका एक एक ही ग्राफ होता है, राइट, कि हीरो आएगा आपको मारेगा, खत्म, राइट। पर कॉमेडी में वैसा नहीं होता। कॉमेडी में जो कैरेक्टर होता है वो कभी कभी कॉमेडी करता है, कभी कभी इमोशनल सीन भी करता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है, कभी कभी बुरे काम भी करता है। तो ये वैरायटी जो थी, आई थिंक वो उन्हें बहुत दिलचस्प लगी होगी उस वक्त, और इसलिए उन्होंने किया, वो इश्क किया उन्होंने, आंखें की, फिर
1: आंटी नंबर वन,
0: आंटी नंबर वन, कूली नंबर वन, फिर ये हम है कमाल के, ऐसी काफी सारी फिल्में हैं। और फिर अरुणा जी के साथ, अरुणा ईरानी जी के साथ काम किया, बिंदु जी के साथ,
1: सो रहे हैं और वो जगाने आती है।
0: वो YouTube पर आज भी अगर आप देखोगे पापा का नाम डाल के सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स, तो इतने सारे वीडियोस उसमें निकल के आते हैं, तो बहुत ही फनी है। तो जब मेरी बेटी छोटी थी तो विलन वाली फिल्म में दिखाऊं कैसे उसे, है ना, क्योंकि इतना वायलेंस तो नहीं दिखा सकते। जब हम लोगों ने सोचा कि अभी उसको कुछ पापा का दिखाना तो चाहिए, बिकॉज सब लोग आजू बाजू, अच्छा सदाशिव जी की पोती हो, सदाशिव जी की पोती हो, ये तो वो सुन ही रही थी। तो उसे हम लोगों ने सदाशिव अमरापुरकर कॉमेडी सीन्स ऐसे वहां से शुरुआत की थी। मेरी बेटी कभी मिल नहीं पाई पापा से, लेकिन उसे ये पता है ये बहुत मजा किया थे, तो बहुत मजा आता था। फिर हमने उसे हम साथ साथ है फिल्म दिखाई, फिर इश्क दिखाई थोड़ी बहुत, तो इस तरह से वो थोड़ी और बड़ी होगी, फिर उसे शायद मैं सड़क दिखाऊंगी,
1: अर्धसत्य
0: दिखाऊंगी, ये सारी फिल्में दिखाऊंगी।
1: इश्क का रोल तो बहुत ही अलग था,
0: बहुत ही
1: तो,
0: अलग,
1: क्या लीक थी वो?
0: वो तो मतलब इंदु जी की फिल्म थी वो, इंदर कुमार।
1: हाँ।
0: एक तो इंदु जी का खुद का सेंस ऑफ ह्यूमर,
1: हाँ,
0: और टाइमिंग,
1: हाँ,
0: कमाल का है। ऊपर से आमिर और जूही, इनके साथ जो इनकी कॉमेडी की टाइमिंग बैठी है, जो एक्टिंग की है, मतलब मुझे लगता है इतना ओवर द टॉप कॉमेडी हम जिसे कहते हैं वो पहली बार ही आया। मतलब आंखें में भी कॉमेडी थी
1: बिल्कुल,
0: पर वो
1: लेकिन
0: इतनी
1: ये
0: ओवर
1: कुछ
0: द टॉप नहीं थी, वो सिचुएशनल कॉमेडी थी।
1: यस,
0: और ये ओवर द टॉप कॉमेडी थी। तो जो चाहिए वो करो। मतलब मुझे याद है हमारे घर के बिल्कुल पास में इश्क का सेट लगा हुआ था।
1: अच्छा।
0: तो एक दो बार मैं गई थी वहां पर ऐसे ही कुछ मैसेज देने या कुछ करने, मुझे याद नहीं है अभी क्यों गई थी, लेकिन मैं गई थी। और उस वक्त इंदु जी ब्रीफ दे रहे थे, सदा जी आपको जैसा लगता है ना आप वैसा कीजिए। फिर वहां से आमिर का ये आता था, सदा जी ऐसा ट्राई करते हैं। फिर दिलीप ताहिल जी थे, उनका होता था। तो ये सब लोगों ने मिलके वो जो कुछ भी किया था, स्क्रिप्ट तो फैंटास्टिक लिखी ही थी, इंदु जी का डायरेक्शन भी था, लेकिन ये जिस तरह से इन सब की जो केमिस्ट्री जम गई थी वो बहुत ही फैंटास्टिक थी। आई थिंक इट इज अ वर्ल्ड अपार्ट फिल्म। ऐसी फिल्म मुझे नहीं लगता अभी फिर से कभी बन पाएगी, बिकॉज जिस तरह से उसमें आमिर ने पापा की भी एक्टिंग की है,
1: हाँ,
0: ऐसी काफी सारी सिचुएशंस है जिसमें वो हुआ है।
1: बहुत मजेदार बातें चल रही हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई, तो मुझे लगता है कि इसका गाना सुन लिया जाए
0: प्लीज।

0: कि वो दौर था जब वो एक तरफ ये सारी कॉमेडी फिल्में कर रहे हैं, आउट एंड आउट कॉमेडी है, और एक अलग धारा चल रही है जहां उसी समय में वो दोगी भी कर रहे थे, कदाचित भी कर रहे थे, वास्तु पुरुष भी कर रहे थे,
1: देवी अहिल्या भी कर रहे थे।
0: यस,
1: तो ऐसा मैंने पहले भी कहा कि कलाकार थे और उन्हें अगर कुछ अच्छा लगता है और उन्हें अगर विश्वास है कि ये निर्देशक है और ये अच्छी फिल्म बनाने वाला है या बनाने वाली है, तो वो उसमें बिजी हो जाते थे। दोगी ये जो फिल्म थी एनएफडीसी की फिल्म थी,
0: बिल्कुल
1: हाँ, और सुमित्रा भावे सुनील सुकटनकर इनकी पहली कमर्शियल फिल्म थी, राइट। और उस समय पापा ने सुमित्रा मावशी के साथ इसलिए काम किया बिकॉज ये कुछ अलग विषय है जो ये औरत रखना चाहती है और इसे साथ देनी चाहिए, बिकॉज सुमित्रा भावे ये अगेन उनका जो सोशल सर्कल था, डॉक्टर अनिल अवसट, निलो फुले, डॉक्टर लागू, इन सब सोशल सर्कल में ही सुमित्रा मावशी भी थी। तो पूरा महाराष्ट्र उन्हें सुमित्रा मावशी कहता है, तो इसलिए मैं भी उन्हें सुमित्रा मावशी कहती हूँ। तो उस समय उन्होंने दोगी की थी, दोगी

0: फिर से उनके सिर्फ 3 या 4 सीन थे, पर उन्होंने वो किए थे. वो सोनाली कुलकर्णी जो है दिल चाहता है मैं जो थी, उनकी वो पहली फिल्म थी. तब
1: और
0: तक
1: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म,
0: बहुत महत्वपूर्ण फिल्म थी. और उसके बाद ही वास्तु पुरुष, बिकॉज उनका और सुमित्रा मावशी क्योंकि वो फेमिनिस्ट थी तो उनकी फिल्मों में हमेशा औरत का मुख्य किरदार हुआ करता था. तो ये पापा और उनके बीच में हमेशा ये जोक चलता था कि जब तक आप अभी मुझे लेकर फिल्म नहीं बनाओगे, मेरा सेंट्रल कैरेक्टर लेकर, तब तक मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा. लेकिन फिर भी हर बार सुमित्रा मावशी फोन करती थी और पापा उनके साथ काम करते ही थे. तो उसी तरह से वास्तु पुरुष फिल्म जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म रही है और उसे नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है.
1: हाँ.
0: पापा को नहीं मिला लेकिन उस फिल्म
1: को
0: मिला नेशनल अवार्ड. यस. तो पापा जो आप कह रहे थे कि एक दौर ये था कि वो आउट एंड आउट कॉमेडी कर रहे थे
1: और दूसरी तरफ ये इंटेंस काम कर रहे थे
0: बिकॉज वो उनकी पर्सनैलिटी की ही दो साइड्स थी. जैसा मैंने कहा कि वो सामाजिक रूप से बहुत अवेयर हुआ करते थे कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वैसे ही ये फिल्में आना बहुत जरूरी है. आउट एंड आउट कॉमेडी जब आती है, कमर्शियल फिल्में जब आती है, तो वो कहते थे ना ये मेरा दुकान है, मेरा घर चलता है इसलिए मैं ये करता हूं, लेकिन मेरा मन अगर मुझे चलना है, मन अच्छा रखना है, तो मुझे ये दूसरा करना भी जरूरी है. तो इस तरह से उनका वो बैलेंसिंग गेम चलता था. तो एज एन एक्टर उस समय, क्योंकि एक टाइम पे एक्टर्स 8-8, 10-10 फिल्में करते थे, उनमें वो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा थी कि इस सेट पे मैं अगर हूं और मेरा रोल अगर ये है तो मैं वैसा हूं. मतलब आप ऐसे सोचिए कि दोगी फिल्म जो है वो इतनी सीरियस फिल्म है और आप इश्क फिल्म कर रहे हो, उस सेट पर आप 2 दिन शूट करते हो और आप इमीडिएटली जाते हो एक छोटे गांव में जहां पर आप दोगी या वास्तु पुरुष जैसी फिल्म शूट कर रहे हो और आप उस सीरियस मोड में चले जाते हो. तो मेरे ख्याल से ये जो फ्लेक्सिबिलिटी उस समय के कलाकारों की थी, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आजकल के कलाकारों में थोड़ी बहुत कम हो गई है. क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही फिल्म करते हैं तो वो एक ही किरदार में जाते हैं, वो पूरा जीते हैं और बाहर निकलते हैं.
1: राइट.
0: आई थिंक इसका क्रेडिट काफी सारा इसमें भी जाता है क्योंकि उस समय जो फिल्मों के कलाकार थे वो काफी सारे थिएटर से भी आते थे.
1: जी.
0: तो थिएटर में जब आप शो करते हो तो उस 3 घंटे के लिए आप वो किरदार बनते हो और फिर आप हो, फिर आप वो किरदार बनते हो. अगर आप 2 प्लेज कर रहे हो तो दूसरे प्ले में जो आपका किरदार है आप वो बन जाते हो.
1: एक अच्छी ट्रेनिंग है वो, एक अच्छी बुनियाद,
0: बहुत अच्छी बुनियाद है. और उस वजह से ये सारे ही कलाकार, ओम पुरी जी हो, अमरीश पुरी जी हो, अगर आप देखेंगे अमरीश पुरी जी का भी बाद में जो उन्होंने कॉमेडी की है, मालामाल वीकली हो या ये जो सारी फिल्में हैं, विरासत में उनका कितना प्यारा है. तो इन सारी फिल्मों में आप देख सकते हो कि उनके कैरेक्टर आर्टिस्ट भी उतने ही ताकतवर है जितने उनके विलन रहे हैं. आई थिंक दिस इज एन ओड कि उस समय एक तो कलाकार रिस्ट्रिक्टेड नहीं थे कि मैं हीरो हूं तो मैं हीरो ही रहूंगा, ये भी नहीं था. मराठी में हम जिसे देवान घेवान कहते हैं, लेन देन, जो एक लेन देन थी वो बहुत क्लियर थी. कलाकारों तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं था. इसलिए आप कोई छोटी फिल्म भी बना रहे हो तो आप कलाकारों तक पहुंच सकते थे. अभी जो सिस्टम बन गई है, जो कॉरपोरेट सिस्टम है, उसमें ये नहीं होता है. तो कॉरपोरेट्स और जो एजेंसीज होती है वो डिसाइड करती है कि ये एक्टर को हमें कैसे मोल्ड करना है. एक्टर का से बहुत कम रह गया है. तो आई थिंक इस वजह से वो उस समय हो पाया एंड वी आर वेरी लकी कि ये हो पाया. इसलिए हमारी फिल्म इंडस्ट्री को जैसे हम है कमाल के मिली, कूली नंबर 1 मिली, वैसे ही दोगी मिली, वास्तु पुरुष मिली, गुप्त मिली. एग्जैक्टली. और आई थिंक इट इज अ रियली ग्रेट थिंग कि डायरेक्टर्स भी ऐसे थे, हालांकि ये बंदा कॉमेडी कर रहा है, ये सीरियस रोल कर पाएगा, ये इस किरदार को निभा पाएगा, ये ट्रस्ट उनका होता था. जैसे देवी अहिल्या उन्होंने की थी, अगेन जयू नचिकेत पटवर्धन की फिल्म थी. तो 22 जून 1897 के बाद पापा ने उनके साथ देवी अहिल्या में काम किया था.
1: बिल्कुल.
0: उसमें उन्होंने मल्हार राव होलकर की भूमिका निभाई थी. तो वो बहुत ही सुंदर फिल्म है, जो लोग देख पाए, NFDC की ही फिल्म है.
1: जी.
0: जो लोग देख पाए उन्होंने जरूर देखना चाहिए. मैं उस सेट पर भी गई थी क्योंकि पूना में ही शूटिंग हो रहा था और उस वक्त मैं पूना में पढ़ रही थी. उस वक्त मैं गई थी उस सेट पर, तो बहुत प्यारी फिल्म है और जिस तरह से इन्वॉल्व होकर वो फिल्म बनाई गई है, वहां के जंगल और उसमें शबाना जी भी है और काफी बड़ी कास्ट है उस फिल्म की, बहुत ही सुंदर तरीके से वो बनी है, तो जिनको इंटरेस्ट हो वो डेफिनेटली देखनी चाहिए उन्होंने वो फिल्म।
1: बिल्कुल, यहाँ गुप्त फिल्म का गाना सुनते हैं क्योंकि उसका जिक्र अभी अभी हुआ।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की तीसरी कड़ी। बातचीत की ये श्रृंखला जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। कार्यक्रम का संपादन नेहा शर्मा और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
2: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम रंग तरंग लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

शिव आराधना इस एल्बम से आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में ये भजन, जिसे लिखा महेंद्र दहलवी ने और दिलीप सेन समीर सेन का संगीत इसमें आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं रंग तरंग विविध भारती पर। आइए आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में जावेद अख्तर का ये कलाम, कुलदीप सिंह का संगीत, फिल्म साथ साथ।

साथ साथ फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे, जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: राजकुमार रिजवी की आवाज में आप सुन रहे थे उर्दू गजल मॉडर्न। इस एल्बम से ये गजल जिसे लिखा ताहिर फराज रामपुरी ने और बेनी का संगीत।
1: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

सुखविंदर सिंह और अलका याग्निक के साथ साथियों की आवाजें बीवी नंबर वन फिल्म के इस गीत में, सुखविंदर सिंह के बोल और उन्हीं का संगीत भी इस गीत में। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं सोनू निगम की आवाज में ये गीत।

सोनू निगम की आवाज में फैज अनवर के बोल आप सुन रहे थे। साजिद वाजिद का संगीत दीवाना एल्बम के इस गीत में और कार्यक्रम रंग तरंग विभिन्न भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं शंकर महादेवन को ब्रेथलेस में।

कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं है, महकी हुई सी अब सारी हवाएं है, कोई हुई सी अब सारी।

0: आंसू है उम्मीद पे दर्द की रंज की बातें हैं और फरियादें हैं मेरा अब कोई नहीं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं मैं हूँ और खोए हुए प्यार की यादें हैं।
1: शंकर महादेवन की आवाज में ब्रेथलेस एल्बम से आपने ये ब्रेथलेस गीत सुना।

0: और मोहम्मद अजीज की आवाज में आप सुन रहे थे चालबाज फिल्म का ये गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का,
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

ये हंसी पल यूं न खोना, दूर मुझसे अब तू न होना, फासले आजा मिटा दे लग जा गले।

0: गणेश हेगड़े की आवाज में आप सुन रहे थे उन्हीं के एल्बम का ये गीत, जिसे मनोज संतोषी ने लिखा और गणेश हेगड़े ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर रंग तरंग।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग, और आपको याद दिला दें कि शाम 4 सेहतनामा के अंतर्गत सुन सकते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। फिलहाल कार्यक्रम में सुनिए अगला गीत।

दर्दी रब रब इस एल्बम से आपने सुना दलेर मेहंदी को। जंगा नंदपुरी ने इसे लिखा और जवाहर वट्टल का संगीत इस गीत में आपने सुना। बस दो मिनट, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये प्रहसन है जिसे आप सुन सकते हैं रात 8 बजे हवा महल में। लेखन मदन बिहारी का, माफ कीजिएगा, लेखन मदन बिहारी शरण दीप का, निर्देशन श्याम सुंदर प्रसाद का। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस समय रंग तरंग। और आपको ये भी बता दें कि रात 9:30 से आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है अभिनेता परीक्षित साहनी पर, ये आप सुन सकते हैं। और अब सुनिए कार्यक्रम का आखिरी गीत।

सपने फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई और मलसिया वासुदेवन की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत। इसके साथ ही रंग तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रंग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने आज से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। बिहार में बांकीपुर सीट पर उपचुनाव मौजूदा सांसद नितिन नवीन के इस्तीफे के कारण हो रहा है। गुजरात में मंजलपुर विधानसभा सीट योगेश भाई नारंदास पटेल के निधन के कारण तथा मध्य प्रदेश में राजेंद्र भारती की अयोग्यता के कारण दतिया सीट खाली हुई थी। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने

0: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने एक आलेख में कहा कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। रूस ने आज सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की आवाज में दीदार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। शकील बदायूनी के बोल नौशाद का संगीत, और आप समझ गए होंगे यादों की महफिल कार्यक्रम में याद कर रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी को उनके जन्मदिन के मौके पर।

0: मुकेश की आवाज में आंसू और मुस्कान फिल्म का गीत आप सुन रहे थे इंद्रवर के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी

0: गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें याद कर रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी को उनके जन्मदिन पर।

पवित्र पापी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आशा भोसले, मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजें, प्रेम धवन के बोल और उन्हीं का संगीत इस गीत में आपने सुना। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल, और आज हम अभिनेता परीक्षित साहनी के जन्मदिन पर उन्हीं की फिल्मों के गीत आपको सुनवा रहे हैं।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल।
1: जाने क्यों लोग
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें अब सुनवा रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी के जन्मदिन पर उनकी फिल्मों से गीत। आइए सुनते हैं वंदना फिल्म का ये अगला गीत, असद भोपाली के बोल, रवि का संगीत, आवाज लता मंगेशकर की।

असद भोपाली की रचना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, रवि का संगीत वंदना फिल्म के इस गीत में। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर यादों की महफिल।

0: मोहम्मद रफी की आवाज में अनोखी रात फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आजमी के बोल, रोशन का संगीत।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।

0: विविध भारती पर। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, जिसमें हम याद कर रहे थे जन्मदिन पर अभिनेता परीक्षित साहनी को। कार्यक्रम के इस भाग में याद करते हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि पर।
1: हर तरफ

पाकिस्तान की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। मन्ना डे की आवाज में कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल आप सुन रहे हैं और अब हम याद कर रहे हैं पुण्यतिथि पर निर्देशक चेतन आनंद को।

किशोर कुमार की आवाज में कुदरत फिल्म से गीत आपने सुना। मजरूह सुल्तानपुरी की रचना, राहुल देव बर्मन की तर्ज। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

मोहम्मद रफी की आवाज में ही रांझा फिल्म का गीत आपने सुना, कैफी आजमी के बोल मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम विविध भारती पर आप सुन रहे हैं यादों की महफिल, जिसमें अब हम याद कर रहे हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हीं की फिल्मों के गीतों से।

मोहम्मद रफी, भूपिंदर, मन्ना डे और तलत महमूद की आवाजों में हकीकत फिल्म का गीत आपने सुना। कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल में समय हम याद कर रहे हैं निर्देशक चेतन आनंद को उनकी पुण्यतिथि के मौके पर उन्हीं की फिल्मों के गीत से। आइए अब कार्यक्रम में अंतिम गीत आपको सुनवाते हैं। हंसते जख्म फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें। कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

ही पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान।

हस्ते जख्म फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजें, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत, और इसके साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: नरेंद्र मोदी रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा

प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In his departure statement, the Prime Minister said his visit to the three countries will further strengthen India's Act East policy, Mahasagar vision, as well as the country's outlook towards a free and open Indo-Pacific. Prime Minister Modi said his visit to Indonesia will further deepen the comprehensive strategic partnership which was elevated during his 2018 visit. From Indonesia, the Prime Minister will travel to Melbourne at the invitation of Australian Prime Minister Anthony Albanese. The Prime Minister will then visit Auckland at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Union Home Minister Amit Shah has lauded the Ministry of Cooperation for bringing change in the lives of millions of people by following the mantra of prosperity through cooperation for the past 5 years. Addressing the gathering on the occasion of the 5th Foundation Day of the Cooperation Ministry, Mr. Shah said today is a very auspicious day for 30 crore people associated with the cooperative sector and more than 8,50,000 cooperative institutions across the country. He said that on this day, Prime Minister Narendra Modi decided to establish an independent Ministry of Cooperation in the government. The BRICS heads of anti-drug agencies meeting began in Guwahati today. Delegates from BRICS member countries are participating in the two-day meeting organized by the Narcotics Control Bureau under the Ministry of Home Affairs. Addressing the inaugural session, Director General of the Narcotics Control Bureau, Anurag Garg, said modern drug trafficking networks operate across borders through darknet platforms, synthetic drugs, new psychoactive substances and maritime routes, making enhanced international cooperation essential. He proposed the establishment of a dedicated BRICS virtual working group for regular intelligence sharing, analysis of trafficking trends and coordination of joint law enforcement efforts. The government has said over 104 crore health records have been linked to over 93 crore Ayushman Bharat health account Abha. This marks a significant progress in India's journey towards a connected digital public health ecosystem. Abha is a 14-digit unique identifier like Aadhaar that securely links individuals to the wider health system. It helps access healthcare facilities, doctors and other services with all their medical history intact through this network. The Election Commission today issued notification for by-elections to three assembly constituencies in Bihar, Gujarat and Madhya Pradesh. The by-elections will be conducted for Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur constituency in Gujarat and Dathia constituency in Madhya Pradesh. As per the notification, nominations will be accepted until the 13th of July and scrutiny will be held on the 14th. The polling for these seats is scheduled to be held on 30th July. The Election Commission has also announced by-elections to three seats of the Rajya Sabha from West Bengal. The seats were vacant following the resignation of Rajya Sabha members Shukhendu Shekhar Rai, Sushmita Dev and Prakash Ekbaraik. The notification for the elections will be issued tomorrow, while the last date for filing nominations is the 14th of July. In Ukraine, at least 10 people were killed and 46 others were injured after Russia launched a ballistic missile attack on the capital Kiev this morning. This came a day before a key NATO summit in Turkey, which US President Donald Trump is expected to attend. Ukraine's Air Force said Russia used ballistic missiles, cruise missiles and drones in the attack. Explosions echoed across the city as civilians sought shelter in metro stations. The Intermeteorological Department, IMD, has issued red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Konkan, Goa, Madhya Maharashtra and Chhattisgarh today. The weather agency predicted heavy to very heavy rainfall over East Rajasthan, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Madhya Pradesh and Uttarakhand during the day. England stormed into the FIFA World Cup quarterfinals with a dramatic 3-2 victory over Mexico at the Azteca Stadium in Mexico City today. In another match, Brazil's veteran player Neymar Jr. has announced his retirement from international football. And with that, we end this news bulletin.
1: Akash. आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूजा कुमारी। पहले मुख्य समाचार। सीआईडी ने झारखंड में मानव तस्करी पर रोक लगाने और लापता बच्चों की सुरक्षित बरामदगी के लिए बनाई मजबूत रणनीति। सभी जिलों को एक्शन प्लान लागू करने का निर्देश। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अभियान का दिखा असर। जिले में संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 10% से घटकर 2.6% हुई। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची को केंद्र सरकार से नैनो कण संश्लेषण के लिए विकसित अभिनव रिएक्शन वेसल्स प्रोटोटाइप का मिला पेटेंट। जमशेदपुर हत्याकांड में एसआईटी ने डीडी बार संचालक को राजस्थान से किया गिरफ्तार। अब तक कुल 9 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से राज्य में लगातार हो रही बारिश। आज से 9 जुलाई तक सभी 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर आज रवाना हुए। रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा से भारत और उन देशों के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया यात्रा से संबंधित पेश है एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। कार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: श्री मोदी इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा, व्यापार और निवेश, शिक्षा, मोबिलिटी, उभरती प्रौद्योगिकी, खेल और जनसंपर्क पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया में भारत वंशियों से भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के तीसरे चरण में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड जाएंगे। इस यात्रा के दौरान आर्थिक, व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों पर विचार विमर्श होगा। झारखंड में मानव तस्करी पर रोक लगाने और लापता लोगों, खासकर बच्चों की सुरक्षित बरामदगी के लिए सीआईडी झारखंड ने मजबूत एक्शन प्लान तैयार किया है। इसे राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को लागू करने के लिए भेज दिया गया है। एक्शन प्लान का उद्देश्य लापता व्यक्तियों के मामलों में शुरुआती स्तर पर ही गंभीरता से कार्रवाई करना, मानव तस्करी के मामलों को शीघ्र पहचान, पीड़ितों की सुरक्षित बरामदगी और पुनर्वास की प्रक्रिया को मजबूत बनाना है। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के विशेष अभियान का असर दिखने लगा है। 5 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार जिले में 4,164 लोगों की जांच में 108 मलेरिया संक्रमित मिले और पॉजिटिविटी दर घटकर 2.6% रह गई, जबकि 1 जुलाई को 3,240 संदिग्धों की जांच में 326 मरीज मिले थे और पॉजिटिविटी दर 10.1% थी। 4 दिनों में संक्रमित मरीजों की संख्या में 218 की कमी और पॉजिटिविटी दर में 7.5% अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। गोड्डा महिला कॉलेज में पारंपरिक ज्ञान प्रणाली एवं सतत विकास लक्ष्य विषय पर कल 7वां अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार शुरू हुआ। सम्मेलन में अमेरिका, नेपाल और अफ्रीका के प्रोफेसर भी ऑनलाइन जुड़े और अपनी बात रखी। मुख्य अतिथि डॉक्टर फारूक अली ने देश की खाद्य सुरक्षा पर चिंता जताई। वहीं महिला कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर सुमन लता ने कहा कि पारंपरिक ज्ञान के बिना सतत विकास संभव नहीं है।
3: हमारा जो झारखंड है, वो एक तरह से यहाँ का जो जल जंगल जमीन और यहाँ की जो दवाएं हैं और मड़वा का खेती है, यहाँ के जो लोग हैं, वो सब ये बताता है कि हम लोग सतत विकास में योगदान कर रहे हैं और बिना पारंपरिक ज्ञान के वो नहीं होगा। यहाँ के लोग उस पारंपरिक ज्ञान से विकास में योगदान कर रहे हैं।
1: बीआईटी मिश्रा आज से 10 जुलाई तक इमर्जिंग ट्रेड्स इन स्टेटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग विषय पर 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य आधुनिक कंप्यूटेशनल और सांख्यिकीय तकनीकों का विश्लेषण कर प्रतिभागियों की सैद्धांतिक समझ और व्यवहारिक कौशल दोनों को विकसित करना है। कार्यशाला में देश विदेश के विशेषज्ञ अत्याधुनिक तकनीकों और उनके वास्तविक दुनिया में अनुप्रयोगों पर विचार रखेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNewsRanchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। ICAR भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची को केंद्र सरकार से नैनो कण संश्लेषण के लिए विकसित अभिनव रिएक्शन वेसल्स प्रोटोटाइप का डिजाइन पंजीकरण प्राप्त हुआ है। यह पायलट स्तर की रिएक्शन प्रणाली नैनो उर्वरक, नैनो कीटनाशक और अन्य कृषि नैनो उत्पादों के उत्पादन के लिए विकसित की गई है। संस्थान के निदेशक ने इसे उपलब्धि पर अनुसंधान दल को बधाई दी है। झारखंड समेत समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर राजधानी रांची में भी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: जमशेदपुर में हिमांशु सिंह हत्याकांड में एसआईटी ने डीडी बार संचालक नीरज सिंह को राजस्थान से लौटते समय गिरफ्तार किया है। इस मामले में डीडी बार के मैनेजर विजय महानंद सहित अमित लोहार और लखिंदर को भी गिरफ्तार किया गया है। अब तक कुल 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वही मुख्य आरोपी विश्वनाथ मंडल की तलाश जारी है। रामगढ़ जिले के भुरकुंडा ओपी क्षेत्र में गैंगस्टर प्रिंस खान के सदस्य के साथ आज तड़के पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में अपराधी शिवराम उर्फ शिवा घायल हो गया। रामगढ़ पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत ने बताया कि शिवराम उर्फ शिवा प्रिंस खान गिरोह से जुड़ा हुआ है और पुलिस को इसकी लंबे समय से तलाश थी।
5: के निवासी अपराध कर्मी शिवराज उर्फ शिवा कुछ संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त है। यह हाल फिलहाल में ही जेल से बाहर निकल आया है। इसी क्रम में रांची और धनबाद पुलिस के माध्यम से भी सूचना प्राप्त हुई कि यह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है।
6: संयुक्त छापेमारी में अपराध कर्मी शिवराज उर्फ शिवा को हिरासत में लिया गया।
1: घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 494 अंक बढ़कर 78,258 पर और निफ्टी 149 अंक बढ़कर 24,419 पर कारोबार कर रहा है। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,37,500 रुपए प्रति 10 ग्राम है जबकि चांदी की कीमत 2,45,000 रुपए प्रति किलो है। बंगाल की खाड़ी में बने डीप डिप्रेशन के असर से राज्य में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज से 9 जुलाई तक सभी 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और रांची समेत 8 जिलों में भारी बारिश, तेज हवा, वज्रपात और जल भराव की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों के पास जाने से बचने तथा किसानों को सतर्कता बरतने की सलाह। सलाह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीआईडी ने झारखंड में मानव तस्करी पर रोक लगाने और लापता बच्चों के सुरक्षित बरामदगी के लिए बनाई मजबूत रणनीति। सभी जिलों को एक्शन प्लान लागू करने का निर्देश। पूर्वी सिंहभूम में ब्रेन मलेरिया के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के अभियान का दिखा असर। जिले में संक्रमण की पॉजिटिविटी दर 10% से घटकर 2.6% हुई। भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान रांची को केंद्र सरकार से नैनो कण संश्लेषण के लिए विकसित अभिनव रिएक्शन वेसल्स प्रोटोटाइप का मिला पेटेंट। जमशेदपुर हत्याकांड में एसआईटी ने डीडी बार संचालक को राजस्थान से किया गिरफ्तार। अब तक कुल 9 अभियुक्तों की हुई गिरफ्तारी। और बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के असर से राज्य में लगातार हो रही बारिश। आज से 9 जुलाई तक सभी 24 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
7: रुक जा। वहीं हमारी कौर साथी कह रहे हैं कि जीवन पथ पर मेरी बेटी के आगमन ने जीवन सफर की दशा और दिशा बदल दी। उसकी एक मुस्कान में मानो जीवन लक्ष्य छुपा था। आज वो 37 साल की ही कार्यरत है। कल स्वयं ड्राइव कर दूर घुमाने ले गई। मेरी दैनंदिनी जीवन बेटी ही है। वहीं हमारे बहुत से साथियों ने बहुत सी बातें लिख भेजी है। हमारे साथियों ने कहा कि कह रहे हैं कि उन्होंने चलने के महत्व को बताते हुए एक बात लिखी और कहा कि चलते रहना तो जीवन का सफर है। जीवन की तुलना हमेशा बहने वाली नदी से की जाती है। एक नदी अविरल बहती है। समुद्र में लहरें लगातार गतिशील रहती हैं। हवा एक पल के लिए भी नहीं रुकती। प्रकृति का नियम है कि जो ठहर गया उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ना, चुनौतियों को पार करना और हर बदलाव को स्वीकार करना ही वास्तविक जीवन है। मनुष्य का जीवन भी कर्म प्रधान है। जीवन के सफर में सुख दुख धूप छांव और उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यदि हम किसी एक पड़ाव पर रुक जाएं तो जीवन का असली उद्देश्य पीछे छूट जाता है। हमारे एक और साथी ने बताया कि मैं हर रोज शाम मेरी शॉप के आगे की खुली जगह में वॉक करता हूँ। संडे की शाम मेरे घर के पास वॉक करते करते घूम लेता हूँ। वॉकिंग टाइम मेरी जेब में मोबाइल में विविध भारती सेवा के गीत बजते रहते हैं। तो बिल्कुल हम भी आपके साथ यानी कि वॉक कर रहे हैं, उसे भी नोट किया जाना चाहिए। जो भी उस वक्त आपके साथ हैं विविध भारती पर बने हुए, उन्होंने भी आपके साथ वॉक की है, ऐसा हम मानकर चलेंगे। और हमारे एक और साथी ने कहा कि भाई यूं ही कोई मिल गया था सरी राह चलते चलते। बहुत बार कुछ अनजान लोग चलते चलते मिल जाते हैं, उनके साथ चलना भी बड़ा सुखद होता है। ये जानते हुए कि शायद दोबारा फिर कभी उनसे मुलाकात नहीं होगी। राह चलते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचने में उनका जो साथ रहता है वो हमेशा याद रहता है और दिल से उनके लिए शुभकामना भी निकलती है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप कई बार वॉक करने जब हम जाते हैं तो भी बहुत से लोगों से हमारी पहचान होती है, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, तो उनके पास जाकर कैसा लगता है आपको? कभी कभी तो हम वॉक करने के बाद बैठकर कुछ देर बात भी करने लगते हैं और वक्त यूं गुजर जाता है कि पता ही नहीं चलता। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? कौन है ऐसा व्यक्ति जिसके पास जाकर आपका वक्त यूं ही गुजर जाता है? हमें बताइए। और साथ ही ये भी बताइए कि जो गीत अब सुनवाने वाले हैं वो किसने लिखा है।

नीला आकाश फिल्म का ये गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी, आशा भोसले की आवाजें, राजा मेहंदी अली खां के बोल थे, जो जवाब हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही दिया। चलते रहने का नाम ही जिंदगी है। मंजिल मिले या ना मिले, हर कदम हमें कुछ नया सिखा जाती है। रास्ते बदलते रहते हैं, मौसम बदलते रहते हैं, लेकिन जो मुस्कुराते हुए चलता रहता है वही जिंदगी के हर सफर को यादगार बना लेता है। जिंदगी ठहरने से नहीं, चलते रहने से महकती है। हर नया कदम एक नई उम्मीद लेकर आता है और हर सफर हमें अपने बारे में कुछ न कुछ बताता है। वहीं हमारे साथी ने बताया कि मेरी बेटी ने थोड़ी देर से चलना सीखा था, क्योंकि वो एक भरे पूरे परिवार में पली बड़ी है, इसलिए सब उसे दिन भर गोद में ही लिए रहते थे। फिर जब मेरे पापा उसके लिए एक तीन पहियों वाली गाड़ी लेकर आए, तब उसने चलना सीखा। उस यादगार दिन की तस्वीर आज भी मेरे पास है। वहीं हमारे साथी ने भी कथा ये याद किया कि हम जब छोटे थे तो लकड़ी की तीन पहियों वाली गाड़ी होती थी, एक खरीद ली जाती थी तो कई बच्चों के काम आती थी, बाद में तरह तरह के रंग बिरंगे वॉकर आने लगे। जिंदगी किसी मंजिल का नहीं बल्कि चलते रहने का नाम है, ऐसा हमारे साथी का कहना है। और हर कदम हमें एक नई कहानी से मिलवाता है, हर मोड़ कोई नया एहसास दे जाता है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि निरंतर चलते रहना ही जीवन की रीत है। चलते हुए ही जिंदगी में अनेक मोड़ आते हैं जहां से जिंदगी का फलसफा बदल जाता है। चलते हुए जीवन के सफर में अनेक साथी मिलते हैं जो जिंदगी भर याद करते हैं या जिंदगी भर याद रहते हैं। और हमारे साथी ने बहुत से गीत लिखे हैं जिनमें से कुछ गीत तो शामिल हो गए हैं। हमारी एक और साथी कहती हैं कि जिंदगी सचमुच एक खूबसूरत सफर है, जहां हर कदम हमें किसी नई मंजिल, नए रिश्ते और नए अनुभव की ओर ले जाता है। कभी चलते चलते कोई अपना मिल जाता है, तो कभी वक्त हमें जीवन के अनमोल सबक सिखा देता है। राहें बदलती रहती हैं, मोड़ आते रहते हैं, लेकिन जो मुसाफिर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहता है वही जीवन की असली खूबसूरती को महसूस कर पाता है। हर मुलाकात एक नई याद बन जाती है और हर सफर दिल में एक नई धुन छोड़ जाता है। इसलिए जीवन का संदेश यही है कि रुकना नहीं, चलते रहना है, क्योंकि मंजिल से अधिक खूबसूरत वो सफर होता है जो हर पल हमें कुछ सिखाता है। तो चलते तो रहना है, चलते चलते हमारे पांव की खूबसूरती देखना भी बहुत जरूरत है, खूबसूरती से ज्यादा मजबूती। तो किस तरह से मजबूत बनाते हैं आप अपने पैरों को, चलते चलते तो बनाते ही हैं, और उनका ख्याल रखने के लिए किस तरह के जूते चप्पल आप लेते हैं ये बताइए। कभी कभी हम बहुत ही सुंदर दिखने वाले चप्पल जूते ले लेते हैं और उससे पांव में होती है तकलीफ। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किस फिल्म का है।

ताजमहल फिल्म का ये गीत आपने सुना और चलते रहने की बातें हो रही हैं आज के सुरीला सफर कार्यक्रम में, क्योंकि चलना ही जिंदगी है ऐसा हमारे साथियों का भी मानना है। और हमारे साथियों से हमने ये भी पूछा था कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको देखकर या जिसके साथ थोड़ी देर बैठकर आपको वक्त का पता ही नहीं चलता और ऐसा लगता है कि भाई ये वक्त कहाँ चला गया। तो इस तरह के लोगों की बातें हमारे साथियों ने कही है। हमारी एक साथी कहती है, एक बड़ा ही प्यारा दोस्त जिसके साथ बात भले ही ना हो पर उसका साथ हमेशा साथ रहता है, मानो वो हमसे हर समय बात कर रहा हो। प्यारा सा एहसास ही इतना प्यारा होता है कि मानो वो हमारे आसपास ही है, और कभी कभी उसकी बातें इतनी अपनी सी होती हैं मानो वो हमारी ही बात कह रहा हो। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि जिंदगी का सफर यूं ही नहीं कट जाने वाला, हम सफर साथ हो तो रास्ते यूं ही कट जाते हैं। बहुत से मित्र छूट गए, कुछ राह बदल गए, सफर ये VBS के साथ सुहाना हो गया है। वहीं हमारे एक और साथी ने बताया कि कॉलेज के लास्ट ईयर में एग्जाम के बाद हमें सभी दोस्तों से बिछड़ने पर ऐसी ही इच्छा हुई थी कि काश ये समय और हम यहीं रुक जाएं, पर ऐसा संभव कहां, जीवन तो बहता पानी है, चलता रहता है। आज भी उन सबसे टच में है, कभी कभी मिलना जुलना हो जाता है। मोबाइल के आविष्कार को शत शत नमन की बातचीत होती रहती है। वाकई मोबाइल के जरिए तो हम अपने साथियों से सबसे मिल लेते हैं और बातें कर लेते हैं, कितना ही अच्छा ये वक्त होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जब कोई साथ बैठा है बातें कर रहा है तो वो ना जाए, कुछ देर के लिए रुक जाए, और ऐसे में हम उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश भी करते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप किस व्यक्ति के साथ कुछ और देर बिताना चाहते हैं और उसे रोकना चाहते हैं और उसे आवाज देते हैं? कौन सा गीत गाते हैं उस वक्त, ये भी हमें बताइएगा। और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम लोग सोमनाथ और द्वारिकापुरी की यात्रा पर गए थे तो हमारे साथ के लोगों से 7 दिन में इतना मेल मिलाप हो गया थी, यात्रा के बाद अलग होते समय बहुत दुख हो रहा था, करीब 80 लोग थे। तो ये भी एक तरीका होता है जब हम अलग अलग सफर के दौरान मिलते हैं, लेकिन इन दिनों तो आपस में बने रहना, आपस में मिलते जुलते रहना, बातें करना आसान है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि अगर उत्तरदायित्व का बोझ है और राह में किसी खास व्यक्ति से सफर बाधित हो रहा है तो समझौता कर जाएं, त्वरित फैसले से नुकसान हो सकता है। हमारे एक और साथी को कछुए की याद आ गई, कछुआ और खरगोश की वो जो कहानियां हैं उससे उन्हें याद आ गया कि कछुआ

उदित नारायण और साथियों की आवाज में आपने सुना दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से ये गीत आनंद बख्शी ने इसे लिखा, जतिन ललित का संगीत। और हमने अपने साथियों से बहुत सी, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि भाई इसमें तो रुकने की बात है, चलने की बात कहाँ है, लेकिन रुका कितनी अच्छी तरह से जा रहा है ये तो देखिए। और हमारी इबारत में रुकने वाला शब्द भी तो शामिल है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि ताजमहल को देखने के लिए बहुत चलना पड़ता है। ताजमहल फिल्म का ये गीत सुनकर उन्हें याद आया है। तो हम ये बताएं कि बहुत से जो ऐसे स्थल हैं, दर्शनीय स्थल हैं, उनको

देखने के लिए बहुत चलना ही पड़ता है। और जब भी हम सखी सहेलियां किसी कार्यक्रम में इसकी जानकारी देते हैं तो आपको बताते ही हैं कि एक आरामदायक फुटवेयर आप साथ में लेकर जाएं, क्योंकि बहुत चलना पड़ेगा। और कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं चले गए घूमने के लिए और आपको इतना ज्यादा चलने का बिल्कुल भी मन नहीं था और किसी तरह से आप चल के जाकर देखने के लिए गए किसी नज़ारे को या किसी दर्शनीय स्थल को और आपको बहुत आनंद आया और ऐसा लगा कि चलना हमारा सार्थक हो गया। या कभी ऐसा हुआ है कि आप चले ही नहीं और उस जगह की सैर ही नहीं की, तो दोनों बातें हुई हो तो हमें से साझा कीजिए। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जूते अब हमारे शौक के अधीन नहीं है, उम्र के उत्तरार्ध में पापा ये पहनो ये वाला अच्छा लगता है कि उनकी मर्जी से शासित होते हैं। जितनी खर्च पोशाकों में उम्र भर की होंगी उतनी बच्चे मेरे लिए दो जोड़ी जूते पर कर देते हैं। भाई बड़े ही खुश नसीब हैं आप, ऐसा हम कहते हैं। हमारे एक और साथी का कहना है कि जूते और चप्पल अपने पैरों को फिट आए ऐसे लेने चाहिए, छोटी हाइट वाले हील लेने चाहिए जो चलने में दिक्कत ना हो। तो ऊंचे लोग टेपर हील वाले पसंद करते क्योंकि हाइट ज्यादा ना दिखाई दे, ऐसा इनका कहना है। पर लेकिन हील वाले जूते लेने के लिए कह रहे हैं, मतलब छोटी हाइट जिनके उन्हें हील वाले जूते ले लेने चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मुझे कभी भी जीवन का या किसी समस्या का या बच्चों के विषय में कोई फैसला लेना होता है तो अपनी धर्मपत्नी के पास बैठता हूं, सारी बात समझाता हूं और साथ में दोनों अदरक इलायची वाली चाय पीते हुए सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। अगर धर्मपत्नी कोई सही सुझाव देती है तो मैं यही कहता हूं कि आपके बिना मैं अधूरा हूं। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि मुझे लाइट वेट जो जूते होते हैं वो बहुत पसंद आते हैं। हमारे एक और साथी ने कहा कि सुबह 3 किलोमीटर पैदल घूमने जाते हैं और आते हैं, शाम को साइकिल में भी इतना ही घूम आते हैं। भाई हमारे श्रोताओं की सेहत का राज तो आज खुल रहा है क्योंकि वो बता रहे हैं कि कितनी वॉक कौन कर रहा है और सारे के सारे श्रोता वॉक करने पर जा रहे हैं, कोई साइकिल चला रहा है, कोई दौड़ने जा रहा है। भाई वाह, हमें तो आपसे सीख लेनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बिल्कुल वॉक करने से ही बहुत से लोगों से जान पहचान हो गई है, बहुत ज्यादा किसी के बारे में जान पहचान नहीं है, लेकिन हम टहलने के बाद कुछ देर बैठकर खाना बनाना, फल सब्जियों के भाव, घुटनों और पैर के दर्द के बारे में और भी कुछ बातें करते हैं, हंसते हैं, फिर ताजी स्फूर्ति और ऊर्जा के साथ अपने अपने घर को लौट आते हैं। हमें तो पूरा यकीन है कि जब इस दर्द की बातें होती होंगी तो उसकी दवा भी समझ में आती होगी, बहुत से लोग सुझाव भी देते होंगे। हमारे एक और साथी का कहना है कि सुबह की वॉक सिर्फ सेहत ही नहीं, नए रिश्तों और नई मुस्कानों का भी जरिया बन जाती है। राह चलते जब नए लोग मिलते हैं तो कुछ पल की बातचीत भी दिन को खुशनुमा बना देती है। कभी कभी अनजान चेहरे भी जीवन में अपनापन और नई सकारात्मक ऊर्जा भर जाते हैं। एक और साथी का कहना है कि मैं प्रतिदिन सुबह 1 से 1.5 घंटे तक हमारी क्रिकेट टीम के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। खेल पूरा होने के बाद हमारी टीम के कुछ खिलाड़ी रुकते हैं तो उनके साथ बातें करते करते वक्त कहाँ कट जाता है पता नहीं चलता। तो इस तरह से हमारे सभी साथी खेल से या फिर वॉक से सेहत से जुड़े हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है और आप हमें प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि भाई समय तो बीतता ही जाता है और सही समय पर किया गया सही काम भी काम आता है, तो इस वक्त मुझे लगता है कि सही काम ये है कि गीत सुनवा देते हैं। बताइए किसकी आवाज में गीत है।

गोलमाल फिल्म का ये गीत आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, गुलजार के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत। आपने आवाज बिल्कुल सही पहचानी। हमारे एक साथी ने बताया कि माँ शारदा शक्तिपीठ मेहर गया था, वहाँ पर लगभग 1000 सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बहुत थक गया था। वही हमारे एक और साथी का कहना है कि मैंने अपनी मॉर्निंग वॉक साइकिलिंग से शुरू करते हैं, फिर मॉर्निंग वॉक करते हैं काफी लंबे समय तक। अब रिटायर बैंकर हैं, 69 ईयर के हैं और उन्हें हमेशा अच्छा लगता है ये करना। वही हमारे एक साथी का कहना है कि उन्होंने 6000 स्टेप का एक बंधन रखा हुआ है। हमारे और साथी जो हैं वो भी बता रहे हैं सब अपने अपनी व्यायाम की बातें करने लगे हैं अब तो। ऐसा हमें लगा कि भाई आप इतनी अच्छे से चलते फिरते रहते हैं और वॉक करते हैं, योग करते हैं, ये सारी बातें हमारे साथी बताने लगे और स्वस्थ रहने के नुस्खे भी अब आने लगे हैं। अब हमें पता चल रहा है कि आपका जीवन इतना आनंदमय कैसे रहता है, किस तरह से इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप करते हैं। क्योंकि सुबह सुबह जब आप चलते हैं, जाते हैं, कहीं घूम फिर कर आते हैं तो आपके मन में भी एक अलग सी ऊर्जा रहती है, अलग सी सकारात्मकता रहती है जो हमें आपके कमेंट्स के जरिए मिलती है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि चलते चलते जीवन हमें बहुत कुछ सिखा जाता है। कुछ लगे लोग राह में मिलते हैं, कुछ बिछड़ जाते हैं, कुछ याद बनकर दिल में बस जाते हैं। सफर चाहे कितना भी लंबा क्यों ना हो, हर मोड़ पर कोई ना कोई एहसास हमारा हम सफर बन जाता है। वैसे हमारे साथी का कहना है कि भाई मैं तो सारे दिन चलती रहती हूँ और घर में कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, रेडियो में गाने चलते रहते हैं और मेरा हाथ बराबर चलता रहता है, कुछ भी करते हुए उनका हाथ काम में लगा रहता है। हमारे एक साथी ने बताया कि मेरी बेटी पूना में पढ़ रही थी, जाते जाते ट्रेन में एक लड़के से उसकी मुलाकात हो गई, हम लोगों को बताया भी। वो अक्सर यूं ही ट्रेन में मिलते रहते और उन दोनों ने शादी करने का निश्चय कर लिया। हम लोगों के लाख विरोध के बाद भी शादी हुई गई और दामाद बहुत ही अच्छा और शरीफ है। तो इस तरह से जो ट्रेन में हम सफर मिला वो जीवन में हम सफर बन गया, बहुत ही अच्छी बात। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि हम प्रतिदिन कम से कम 5 अधिकतम 8 किलोमीटर वॉक करते हैं, सुबह 5:30 से 8 बजे तक, 5 तो कम से कम चलते ही है। और एक साथी कहने कि सुबह योग और रात को खाने के बाद टहलने जाते हैं। हमारे एक साथी ने बताया कि कनाडा में नायग्रा फॉल देखने के समय उन्हें ऐसा लगा कि उनका दिल ये कह रहा था कि वापस ही नहीं आना है, वहीं रुक जाएं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैरों में हाई हील सैंडल किस उम्र तक पहननी चाहिए महिलाओं को। भाई ये सवाल तो किसी भी महिला के लिए पूरी तरह से नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जिसकी जितनी भी श्रद्धा भक्ति हो कह सकते हैं, या कहें कि जिसके पैर जितनी इजाजत दें, जो अपने पैरों को अच्छी तरह से संभाल सकें, वो उम्र का तो कोई इसमें सीमा रही नहीं, आप अपनी मर्जी से पहन सकते हैं। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने ताजमहल 15 बार देखा है, तो अब तो आपको पूरा याद हो गया होगा ताजमहल की कहाँ जाने से क्या क्या होता है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ये जिंदगी बड़ी अजीब है, मंजिल का लालच देती है और सारी उम्र इंसान को सफर में रखती है। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि गुरुजी के आश्रम में जाते हैं, वहां के वातावरण में ऐसी शक्ति होती है कि कुछ देर वापस लौटने का मन नहीं करता। एक साथी ने कहा कि उन्हें एक गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और आपने पूछा कि किसी के साथ रहने से अगर वक्त ठहर जाए तो गाना जब भी आता है तो मुझे मेरे पतिदेव जो इस दुनिया में नहीं है उनकी याद आती है और मेरे लिए वो ये गाना हमेशा गाते थे। तो बहुत अच्छी बात है कि आपको इस गीत के जरिए उनकी याद एक बार फिर हमने दिलाई। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि नाना नानी जब आते थे कुछ दिन रुकते थे और फिर जब वो जाने लगते तो हम बच्चे रोते थे, अगले दिन जब हम लोग स्कूल जाते तब वो चुपके से जाते थे। अच्छा ये बताइए कि नाना नानी के जाने से तो ऑलमोस्ट सभी रोया करते थे क्योंकि साथ में जाने का मन करता या एक अलग ही प्रेम जो मिलता था, लेकिन ये बताइए कि स्कूल जाने के लिए कितने लोग रोते थे, स्कूल जाने के लिए कितने लोग रोते थे और नहीं जाने के लिए कितने लोग रोते थे, ये बताइए। तब तक हम आपको सुनवा रहे कार्यक्रम का अगला गीत, हमें बताइए किसने लिखा ये गीत।

घर इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे गुलजार के बोल, और यही हमारे सवाल का सही जवाब जो आपने भी दिया। हमारे एक साथी कह रहे कि मेरे बचपन से एक हसरत थी कि गोलकुंडा हैदराबाद का किला देखूं, और वो इच्छा पूरी हुई। वहां पर पहाड़ बहुत ऊंचा था, उस पर चलना आसान नहीं था, लेकिन मैं गया और प्राचीन कला को देख कर आनंद आया। वही हमारे एक साथी का कहना कि 11 गीत की लिखी हुई इबारत में से 9वां और 11वें नंबर पर लिखा गीत शामिल हुआ। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तो स्कूल जाना बड़ा ही अच्छा लगता था, नहीं रोए कभी भी। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सरल सरल सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि कुछ हार्ड सवाल पूछें, सरल सवाल में इतना मजा नहीं आता। तो बिल्कुल आप बताइए कि कौन सा मुश्किल सवाल होना चाहिए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि एक बार जब हम सब छोटे थे तब राजस्थान मामा जी के विवाह में कार्यक्रम में गए थे, तब माता चौमुंडा देवी के मंदिर के दर्शन के लिए गए। मंदिर इतना ऊंचा है कि सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते बड़े बूढ़े तो थक गए थे, हम बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था। एक और साथी कहती है कि मैं रोज स्कूल जाती थी, चाहे बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, फुल अटेंडेंस होती थी मेरी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि पैरों में तकलीफ होने के बावजूद डॉक्टर चलते रहने की सलाह देते हैं, एक लोहे की मशीन अगर बहुत दिन तक चलाई न जाए तो उसमें जंग लग सकती है। इसी प्रकार यदि मनुष्य रुक गया तो धीरे धीरे पैर की हड्डियां जाम होने लगती है, इससे थोड़ा बहुत चलते रहना चाहिए। बिल्कुल सही सलाह आपने दी। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उनकी बचपन से हसरत थी घूमने जाने की, ये तो मैंने पढ़ ली। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मसूरी यात्रा के दौरान मैंने लैंडोर तक करीब 11 किलोमीटर के पैदल चढ़ाई की। जब मैं वहां लैंडोर बैक हाउस पहुंची तो उसके मशहूर केक और पेस्ट्री खाए और स्वाद आज तक मुंह में बसा हुआ है। एक और साथी कहने की मैंने मेरी दीदी की छोटी सी गाड़ी को बहुत चलाया जब वो एक दो साल की थी। हमने

और हमारे साथी कह रहे हैं कि हम जीवन और उसके अंदर हमें निरंतर सक्रिय रहने, चलने फिरते रहने, चलते रहने के बहुत कुछ याद आ रहे हैं इन्होंने गीत।

चलते चलते फिल्म से किशोर कुमार को आप सुन रहे थे और हम अलविदा नहीं कह रहे हैं, हालांकि वक्त हो गया है, लेकिन विविध भारती का सुरीला सफर तो रहता है आपके साथ दिन रात लगातार। इस कार्यक्रम से दीजिए इजाजत।

0: को एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उस दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: जगन्नाथ
4: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: जगन्नाथ
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
5: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावरे ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
3: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में 3री बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सदाबहार नगमे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

किशोर कुमार की आवाज में फंटूश फिल्म का गीत आपने सुना, साहिल ध्यानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर सुन रहे हैं।

0: टैक्सी ड्राइवर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में, साहिल लुधियानवी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

गुलजार के बोल आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। बंदिनी फिल्म के इस गीत में संगीत सचिन देव बर्मन का। कार्यक्रम सदाबहार नक में विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

पारस मणि फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नगमे विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं हाफ टिकट फिल्म से ये गीत, किशोर कुमार की आवाज, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।

0: ओ गुजरिया होय होय होय ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय हाय लटकट रंगीले आवरिया आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया।

बातों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट पहले तो बांधी निगाहों की डोर अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ तोरे नैना ओ मीठे बहना ओ तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आशिक फिल्म से गीत आप सुन रहे थे, मुकेश और साथियों की आवाजें, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। कार्यक्रम सदाबहार नकमे में अब आपको अंतिम गीत सुनवाते हैं, शमशाद बेगम और उषा मंगेशकर की आवाजें। ब्लफ मास्टर फिल्म का ये गीत सुनिए, जिसे लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। और इस गीत के साथ नेहा शर्मा को दीजिए इजाजत, विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली का। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सभी सखियों सहेलियों श्रोता भाइयों को और मंजरी आपको भी दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: तो दीपा तुमको और हमारे सुनने वाले सभी सखियों और साथियों को भीगा भीगा सा नमस्कार। जहां पर गर्मी पड़ रही है वहां पर हम कहेंगे कि मेरी आवाज से दीपा की आवाज से और हमारे जो सखी सहेली में गाने बजेंगे उसको मिला करके एक भीना भीना सा प्यारा प्यारा सा नमस्कार
0: है। बिल्कुल। और यहाँ तो इतनी ज्यादा बारिश हो रही है साथियों कि ऐसा लग रहा है कुछ हिस्सा इस बरसात का वहां चला जाए जहाँ अब तक बरखा रानी बरसी नहीं
1: बिल्कुल है ना? बहुत जरूरी है सब जगह बैलेंस होता रहे बरसा का तो ज्यादा ठीक है
0: जी।
1: क्योंकि यहाँ और पर तो लग रहा है बस अब रुक जाओ थोड़ी दिन सांस ले लें दो हमको थोड़ा धूप हमें भी दे दो ऐसी
0: कुछ ऐसा ही हाल है। और इस बदलते मौसम में हम आशा करते हैं आप सब अपना बहुत अच्छा ध्यान रख रहे होंगे तो आप अपने परिवार का और अपना सभी का स्वास्थ्य का खूब अच्छा ध्यान रखिए।
1: बिल्कुल। और चलो दीपा हम बता देते हैं कि आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रादेशिक व्यंजन। सबसे पहले तो खान पान की बात क्योंकि दीपा आ गई मंजरी आ गई है तो कुछ ना कुछ
0: कैसे
1: तो बनेगा
0: नहीं हो कि बातें भोजन पान की होगी
1: होगी बिल्कुल क्योंकि पंजाबी छोले आजकल हम लोग बताने वाले हैं और भटूरे साथ में तो बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इसका तो मेरे ख्याल से सबके लग रहा है सबको स्वाद आ रहा होगा छोले भटूरों का है ना
0: शायद आ रहा होगा। और ये देखिए ना इन मौसम में ऐसी कुछ चीजें चटपटी और कुछ तली भुनी चीजों का को हम उसका आनंद ले सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो बिल्कुल लेना भी चाहिए
1: लेना भी चाहिए। और अब हम बात उसके लिए बात करेंगे अगला विषय मेरा है वन महोत्सव तो जो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चल रहा है तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और आज है कथा सुधा
0: जी
1: में कहानी का दिन है तो आज दीपा कौन सी कहानी हम लेकर आए हैं?
0: आज हम मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी दो बहनें इस कहानी का हम सुनेंगे भाग एक
1: जी।
0: और फिर देखो महीने की ये शुरुआत है शुरुआत के महीने में तो ऐसा होता है ना जब सैलरी आती है या व्यापार में अगर आप हैं तो जो भी एक नियत आप पैसे जो घर पे लेके आते हैं तो शुरुआत में तो जिसको सैलरी आपको देनी है दे देते हैं घर में जो आपके काम करते हैं जो मदद करते हैं उनको दे देते हैं स्कूल की फीस वगैरह चली जाती है। उसके बाद 15 तारीख से ही फिर ऐसा लगता है खिंचातानी से कुछ शुरू होने लगी
1: है कि भाई अब बजट बनाए खर्चा
0: क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है
1: कोई कुछ कहता तो नहीं भाई अभी रुक जाओ अभी नहीं
0: सही बात
1: बचत करने के बारे में हम सभी सोचते हैं और महिलाएं खासकर सोचती हैं हालांकि थोड़ा वो खर्चा भी थोड़ा करती है मनमर्जी की लेकिन बचत के प्रति वो जागरूक भी रहती है इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन देखो मौसम को हम लोग थोड़ा सब जगह भेज देते हैं गीतों के द्वारा तो सभी सखियों और सखाओं को सुनाते हैं ये गीत।

0: साथियों, अभी तो सावन आया नहीं है, लेकिन हम उसे पुकार रहे हैं कि आए। लेकिन फिलहाल आषाढ़ के महीने में ये जो बरसात है हर जगह पहुंचे, हमारी तो यही शुभकामना है।
1: क्योंकि हरियाली छा जाती है, तो हरियाली छाते बस सावन याद आने लग जाता है, और सावन का मतलब होता है कि बस अब हाथों में मेहंदी लगाएंगे, श्रृंगार करेंगे, हरी हरी चूड़ियां पहनेंगे।
0: सब होगा, सब होगा मंजरी, लेकिन पहले चलो सुन लेते हैं कहानी
1: कथा सुधा।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: हिंदी कथा साहित्य के महान लेखक मुंशी प्रेमचंद की कहानी है दो बहनें। शीर्षक के अनुरूप कहानी दो बहनों के पारस्परिक संबंधों पर केंद्रित है। प्रेमचंद ने कहानी के मुख्य पात्र, दोनों बहनों के बाह्य आकार और रूप रंग का वर्णन करने के साथ ही उनके मन का भी सूक्ष्म विवेचन और विश्लेषण किया है। कहानी में प्रवाह है, धन की संपन्नता और विपन्नता के अनुरूप पात्रों का चरित्र चित्रण और पात्रों के चरित्र का विकास बहुत स्वाभाविक रूप में किया गया है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आदर्श और यथार्थ का अद्भुत समन्वय है। दोनों बहनें और उनके पति जिस मानसिक अवस्था और शैक्षिक

0: स्तर के हैं उसी के अनुसार शब्दों के प्रयोग, नाटकीयता के गुण और संवाद योजना के कारण कहानी जीवंत हो उठती है। वे यथार्थ का चित्रण करते हुए सदा आदर्श पर दृष्टि रखते हैं, यही इस कहानी में भी परिलक्षित होता है। मुंशी प्रेमचंद की स्पष्ट धारणा है कि साहित्यकार को मानवीय स्वभाव की उज्ज्वलताओं को दिखाने वाला होना चाहिए, यही इस कहानी का मर्म भी है। भाव और पात्र के अनुकूल भाषा का सफल प्रयोग इस कहानी की विशेषता है। अत्यंत मार्मिक और हृदय को छू लेने वाली कहानी है दो बहनें। इसने प्रेरणा देने की शक्ति के साथ साथ पाठक को चिंतन में लीन करने की भी अद्भुत क्षमता है। तो आइए सुनते हैं कथा सुधा में मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें, आज इस कहानी की पहली कड़ी।
1: दो बहनें दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है। बेशकीमत साड़ी और बेलदार उन्नाबी मखमल के जंपर ने उसके हुस्न को और भी चमका दिया है। वही रामदुलारी जो लड़कपन में सर के बाल खोले फूहड़ सी इधर उधर खेला करती थी, आखिरी बार रूप कुमारी ने उसे उसकी शादी में देखा था। दो साल कबल तक भी उसकी शक्ल और सूरत में कुछ ज्यादा तगय्युर ना हुआ था। लंबी तो हो गई थी मगर उतनी ही दुबली, उतनी ही जर्दरू और उतनी ही बदतमीज, जरा जरा सी बात पर रूठने वाली। मगर आज तो कुछ हालत ही और थी, जैसे कली खिल गई हो और हुस्न उसने कहां छुपा रखा था।
2: नहीं नहीं, नजरों को धोखा हो रहा है, ये हुस्न नहीं महज दीदा जेबी है। रेशम मखमल और सोने की बदौलत नक्शा थोड़े ही बदल जाएगा, फिर भी वो आंखों में समाई जाती है। 50 औरतें जमा हैं मगर ये कशिश और किसी में नहीं।
1: कहीं आईना मिलता तो वो जरा अपनी सूरत भी देखती। घर से चलते वक्त उसने अपनी सूरत देखी थी, उसे चमकाने के लिए जितना साइकिल कर सकती थी वो किया था, लेकिन अब वो सूरत जैसे याददाश्त से मिट गई है। उसकी महज एक धुंधली सी परछाई जहन में है, उसे फिर से देखने के लिए वो बेकरार हो रही है। यूं तो उसके साथ मेकअप के लवाजमात के साथ आईना भी है, लेकिन उस मजमे में वो आईना देखने या बनाव सिंगार करने की आदि नहीं है। ये औरतें दिल में खुदा जाने क्या समझे, यहां कोई आईना तो होगा ही, ड्राइंग रूम में तो जरूर होगा। वो उठकर ड्राइंग रूम में गई और कदे आदम शीशा में अपनी सूरत देखी। उसके खद व खाल बेएब हैं, मगर वो ताजगी में, वो शगुफ्तगी, वो नजर फरेबी नहीं है। रामदुलारी आज खुली है और उससे खुले जमाना हो गया, लेकिन इस ख्याल से उसे तस्कीन नहीं हुई, वो रामदुलारी से हेटी बनकर नहीं रह सकती।
2: ये मर्द भी कितने अहमक होते हैं, किसी में असली हुस्न की परख नहीं। उन्हें तो जवानी, शोखी और नफासत चाहिए बस। आंखें रख कर भी अंधे बनते हैं। मेरे कपड़ों में राम दुलारी को खड़ा कर दो, फिर देखो ये सारा जादू कहां उड़ गया है। चुड़ैल सी नजर आए, अब इन अहमकों को कौन समझाए। से राम दुलारी के घर वाले तो इतने खुशहाल न थे, वो शादी में जो जोड़े और जेवर आए थे वो भी बहुत दिल शिकन थे। उसके ससुर एक रियासत के मुख्तार आम थे और शौहर कॉलेज में पढ़ता था। इस 2 में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने, जेवर किसी से मांग कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हूं। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं। अब अपनी हैसियत को बढ़ाकर दिखाने का मर्ज कितना बढ़ता जाता है। घर में रोटियों का ठिकाना नहीं है, लेकिन इस तरह बन ठन कर निकलेंगी गोया कहीं की राजकुमारी है। बिसातियों के, दर्जियों के और बजाज के तकाजे सहेंगी, शौहर की घुड़कियां खाएंगी, रोएंगी, रूठेंगी, मगर नुमाइश के जुनून को नहीं रोक सकें। घर वाले भी सोचते होंगे कितनी छिछोरी तबीयत है इसकी, मगर यहां तो बेहयाई पर कमर बांध ली। कोई कितना ही हंसे, बेहया की बला दूर। इसको तो बस यही धुन सवार है कि जिधर से निकल जाए उधर उसकी खूब तारीफें की जाए। राम दुलारी ने जरूर जरूर किसी से जेवर और कपड़े मांग लिए हैं। मैं जानती हूं ये बेशर्म जो है।
1: उसके चेहरे पर गुरूर की सुर्खी झलक पड़ी। ना सही उसके पास जेवर और कपड़े, किसी के सामने शर्मिंदा तो नहीं होना पड़ता। एक एक लाख के तो उसके दो लड़के हैं, भगवान उन्हें जिंदा सलामत रखे। वो इसी में खुश है। खुद अच्छा पहन लेने और अच्छा खा लेने से ही तो जिंदगी का मकसद पूरा नहीं हो जाता। उसके घर वाले गरीब हैं पर इज्जत तो है, किसी का गला तो नहीं दबाते, किसी की बद्दुआ तो नहीं लेते। इस तरह अपना दिल मजबूत करके वो फिर बरामदे में आई तो रामदुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
3: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं?
1: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई। उफ़ रे दिमाग, गोया उसका शौहर लाठ ही तो है। अकड़ कर बोली,
2: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है। आजकल ये भी गनीमत है, मैं तो अच्छे अच्छे एमए पासों को देखती हूं कि कोई टके को नहीं पूछता। और तेरा शौहर अब बीए में होगा?
3: नहीं, उन्होंने तो पढ़ना छोड़ दिया है बहन। पढ़कर औकात खराब करना था और क्या, एक कंपनी के एजेंट हो गए हैं। अब 250 रुपया माहवार कमाते हैं, कमीशन ऊपर से 500 रुपया रोज सफर खर्च के भी मिलते हैं। अब ये समझ लो 500 का औसत पड़ जाता है। 150 रुपया माहवार तो उनका जाती खर्च है। बहन ऊंचे होदे पर है तो अच्छी हैसियत भी बनाए रखनी लाजिमी है ना?
2: वो तो है भाई।
3: 350 रुपया बेदाग घर दे देते हैं और उसमें 100 रुपए मुझे मिल जाते हैं। 250 में घर का खर्च खुशफेली से चल जाता है। अब एमए पास करके भला क्या करते?
1: रूप कुमारी उसे शेख चिल्ली की दास्तान से ज्यादा वक्त नहीं देना चाहती थी, मगर राम दुलारी के लहजे में इतनी सदाकत है कि चेहरे पर शिकस्त की बदमजगी साफ झलक रही है। मगर उसे अपने होशो हवास को कायम रखना है तो इस असर को दिल से मिटा देना पड़ेगा। उसे जिरहों से अपने दिल को यकीन करा देना पड़ेगा कि इसमें एक चौथाई से ज्यादा हकीकत नहीं है। वहां तक तो वो बर्दाश्त करेगी, इससे ज्यादा कैसे बर्दाश्त कर सकती है। इसके साथ ही उसके दिल में धड़कन भी है। अगर ये रुदात सच निकली तो वो कैसे राम दुलारी को मुंह दिखा सकेगी। उसे अंदेशा है कि कहीं उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने तमस्खुर के अंदाज से पूछा,
2: जब एजेंटी में इतनी तनख्वाह और भत्ते मिलते हैं तो ये तमाम कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते? भला बताओ जरा, हजारों लड़के क्यों अपनी जिंदगी खराब करते हैं?
1: रामदुलारी बहन की खिफत का मजा उठाते हुए बोली,
3: बहन तुम यहां गलती कर रही हो। एमए तो सभी पास हो सकते हैं।
2: अच्छा,
3: मगर एजेंटी करना किसको आता है भला? ये तो बहुत हुनर का काम है। कोई जिंदगी भर पढ़ता रहे मगर जरूरी नहीं कि वो अच्छा एजेंट हो जाए। रुपया पैदा करना दूसरी चीज है, इल्मी फजीलत हासिल करना दूसरी चीज है। अपने माल की खूबी का यकीन पैदा कर देना या जहन नशीन करा

0: देना कि इससे तो बेहतर और देरपा चीज बाजार में मिल ही नहीं सकती। आसान काम नहीं है,
1: वो तो है भाई।
0: एक से एक ग्राहकों से उनका साबिका पड़ता है। बड़े बड़े राजाओं और रईसों की ताली कलब भी करनी पड़ती है, औरों की तो उन राजाओं और नवाबों के सामने जाने की हिम्मत भी ना पड़े, और किसी तरह पहुंच जाए तो जबान ना निकले। शुरू शुरू में उन्हें भी झिझक हुई थी बहन, मगर अब तो इस दरिया के मगर है मगर। अगले साल तरक्की भी होने वाली है।
1: सही कहती हो।
2: रूप कुमारी की रगों में जैसे खून की हरकत बंद हुई जा रही है।
1: जालिम आसमान क्यों नहीं गिर पड़ता, बेरहम जमीन क्यों नहीं फट जाती? ये कहाँ का इंसाफ है कि मैं जो हसीन हूं, तमीजदार हूं, किफायत शियार हूं, अपने शौहर पर जान देती हूं, बच्चों को जान से अजीज समझती हूं, इस खस्ता हाली में बसर हो रही है मेरे, और ये बदतमीज तन परवर चंचल छोकरी रानी बन गई है। लेकिन कुछ तो उम्मीद है, बाकी शायद मेरी तस्कीन कल्ब का कोई तो रास्ता निकल आए।
2: उसी तमस्खुर के अंदाज से बोली,
1: तब तो शायद 1,000 मिलने लगे होंगे। हाँ,
0: 1,000 तो नहीं, मगर 600 में शुभा नहीं।
1: हाँ, ऐसे ही कोई आंख का अंधा मालिक बन गया होगा।
0: बहन, व्यापारी आंख के अंधे नहीं होते। हाँ, जब तुम उन्हें 6,000 कमा कर दो ना, तब कहीं 600 मिले। जो सारी दुनिया को चराए उसे कोई क्या बेवकूफ बनाएगा भला।
2: तमस्खुर से काम न चलते देख रूप कुमारी ने तहकीर शुरू की।
1: हाँ, वैसे मैं उसको बहुत मुअज्जज पेशा नहीं समझती। सारे दिन झूठ के तोमार बांधो, क्या ये ठीक विद्या है?
0: अरे, इस तरह तो जितने वकील बैरिस्टर हैं सभी गलत करते हैं। अपने मुवक्किल के फायदे के लिए उन्हें झूठी शहादतें तक बनानी पड़ती हैं। मगर उन्हीं वकीलों को हम अपना लीडर कहते हैं, उन्हें अपनी कौमी सभाओं का सदर बनाते हैं, उनकी गाड़ियां खींचते हैं, उन पर फूल बरसाते हैं। आजकल दुनिया पैसा देखती है, पैसा। पैसे कैसे आए ये कोई नहीं देखता। जिसके पास पैसा हो उसकी पूजा होती है। जो बदनसीब हैं, नाकाबिल हैं, पस्त हिम्मत हैं, वो जमीर और अखलाक की दुहाई देकर अपने आंसू पोंछ लेते हैं। वरना जमीर और अखलाक को भला कौन पूछता है।
2: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है, इससे मुजीर नहीं। तमस्खुर या तहकीर से वो अपनी तंगदिली के इजहार के सिवा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी। अगर राम दुलारी वाकई लक्ष्मी का वरदान पा गई है तो वो अपनी किस्मत को ठोक कर बैठ रहेगी। समझ लें कि दुनिया में कहीं इंसाफ नहीं है, कहीं ईमानदारी की कदर नहीं है।
3: कथा सुधा में आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहनें। आज आपने सुनी पहली कड़ी। पात्र परिचय इस प्रकार है: रूप कुमारी, रेणु चतुर्वेदी, राम दुलारी, ममता सिंह, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की पहली कड़ी सुनी। आगे यह कहानी क्या मोड़ लेती है जानने के लिए अगले हफ्ते जरूर सुनिएगा कथा सुधा।
4: इस कहानी के भाव में तो हम भी बह गए थे साथियों, आपके साथ
5: बिल्कुल।
4: चलिए सुनते हैं गीत।

0: पिता की आधी समस्या तो वैसे ही हल हो जाती
1: है ना। बिल्कुल सही कहा। देखो ना, कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हम जब खर्च करते चले जाते हैं, तो फाइनेंशियल यानी कि जो वित्तीय अनुशासन है वो अगर हम नहीं रख पाते हैं, तो हमें कभी ना कभी एक आर्थिक तनाव वो आ जाता है, थोड़ा सा एंजाइटी, टेंशन, ये सब चीज़ें आई जाती है। और फिर सहेलियों के मन में ये सवाल आता ही है कि आखिर पैसे इतनी जल्दी खत्म हो क्यों जाते हैं,
0: बिल्कुल
1: होता है ना ऐसा?
0: बिल्कुल ऐसा होता है। और यही होता ना कि अक्सर हम जो है बिना योजनाएं बनाकर बनाए खर्च करते रहते हैं, और छोटे छोटे जो खर्च होते हैं वो सुविधाओं के नाम पर होने वाला व्यय, अचानक की गई खरीदारी होती है, और बचत को टालने की आदत, यानी धीरे धीरे पूरे बजट को जो है वो बिगाड़ ही देती है।
1: अरे अरे मंजरी, इतना परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। और सखियो, हम आपसे भी कहते हैं इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम अगर थोड़ा सा आपस में अभी जो विचार विमर्श कर रहे हैं और जो बहुत सारे संदेश आए हैं, तो हम कुछ जानेंगे आसान बदलाव के बारे में कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं, आपको क्या सही लगता है क्या गलत, वो जरूर बताते चलिएगा।
0: बिल्कुल। और अक्सर लोग ये तय नहीं कर पाते हैं दीपा कि उनकी आय का कितना हिस्सा कहाँ खर्च होना चाहिए। और अब देखिए ना, कुछ खर्चे तो बिल्कुल निश्चित होते हैं कि जैसे मकान का किराया, राशन की खरीदारी करनी है, पेट्रोल भराना है, बिजली पानी वगैरह वगैरह, जैसे भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, घर में दूध का बिल देना है, तो बच्चों की फीस जमा करनी है, इन सब खर्चों के लिए पहले से ही राशि तय करने से कर लेने से क्या होता है कि फिजूल खर्च से हम बच सकते हैं। यानी कि जब आप सैलरी लेकर आएं तो एक एक छोटे छोटे बॉक्स बना लें, उसमें सबके हिस्से के पैसे डाल दें,
1: हाँ,
0: है ना,
1: इस तरह से
0: इस
1: भी
0: तरह
1: कर
0: से
1: सकते
0: बचत
1: हैं।
0: कर
1: बिल्कुल।
0: सकते हैं।
1: और कई बार ये भी देखने में आता है मंजरी कि बहुत सारे लोग महीने की शुरुआत में खुलकर खर्च कर देते हैं, फिर जनाब नतीजा तो तय ही होता है ना कि आखिरी दिनों में आर्थिक जो एक टेंशन सी आ जाती है वो बढ़ने लग जाती है। इसलिए जरूरी खर्चों के बाद बचे रकम को पूरे महीने के हिसाब से अलग अलग हिस्से में बांटकर देखना चाहिए, जैसे अभी आप बता रही थी। तो वैसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 से 10 तारीख का खर्च अलग रख दो, 11 से 20 का अलग रख दीजिए, और फिर 21 से 30 का खर्च आप अलग अलग एक सेगमेंट बना करके अलग
0: हाँ,
1: अलग रख
0: वो
1: के,
0: भी रख
1: ये
0: सकते
1: भी
0: हैं,
1: करके हम देख सकते हैं।
0: बिल्कुल। और अक्सर दीपा हम लोग यही सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचत में डाल देंगे, लेकिन क्या होता है ऐसा होता नहीं है, और पता ही नहीं चलता है कि मतलब सैलरी मिलते ही 20-30% राशि बचत के लिए जो हमने रखी है या नहीं रख पाए हैं वो कहाँ चली गई, खर्च होते ही चले जा रहे हैं। तो हमें बचत के लिए भी सोचना पड़ता है, और सच में यही बचत आने वाले दिनों में आर्थिक सुरक्षा का आधार बनाती है, जो हम
1: बिल्कुल।
0: कटौती करते हैं। और दीपा एक और रास्ता है कि आप एक कॉपी में लिखना शुरू कर दीजिए खर्चे को,
1: बिल्कुल।
0: तो आप अगले महीने उसको सोचिए कि हमने कहाँ पे खर्चा ज्यादा किया है, तो उस चीज को फिर अगले महीने आप बजट से हटा सकते हैं कि
1: हटा
0: नहीं भाई ये
1: सकते
0: हमारे
1: हैं
0: लिए
1: जी,
0: आवश्यक नहीं है।
1: बिल्कुल। और इसी तरह से एक इमरजेंसी फंड भी हम जरूर रखना चाहिए हमें, जैसे बीमारी हो गई या नौकरी में बदलाव हो गया, इस तरह की कोई परिस्थिति अगर बन जाती है, तो बिना तैयारी के जो ये आर्थिक दबाव आता है, ऐसे में 3 से 6 महीने का खर्च के बराबर का एक इमरजेंसी फंड अगर हम रखें ना अलग से, बहुत मुश्किलें, देखिए बोलना आसान होता है करना बहुत
0: करना बहुत
1: मुश्किल होता है,
0: मुश्किल होता है।
1: लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा बचा करके हम कुछ ऐसा करने की 3-1 महीने की सैलरी जितना पैसा अगर हमारा अलग से रखा हुआ है, तो कभी भी अचानक कुछ अगर इमरजेंसी आ गई है तो हमारे पास ऐसा नहीं होगा कि अरे क्या करें क्या
0: क्या
1: नहीं करें
0: करें।
1: और

0: तो सिर्फ बचत करने से काम नहीं चलता है दोस्तों, थोड़ा सा निवेश भी होता रहना चाहिए। इसलिए धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा निवेश करने की आदत जरूर बनाएं, फिर वो चाहे महीने के 1,000 या 2,000 रुपए की शुरुआत क्यों ना हो, शुरू किया जाए। और आप गुल्लक भी बना सकते हैं, अपनी गुल्लक भी बनाइए, बच्चों की भी, हस्बैंड के भी, और सबसे बोलिए इसमें सब लोग पैसे बचाइए, तो आप इस तरह से भी पैसे बचा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हम अपने लिए कुछ ऐसे दिन भी चुन सकते हैं जहां हम सिर्फ जरूरी चीजों की खरीदारी करेंगे और फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अगर ऐसा करेंगे, महीने के 3-4 दिन भी अगर ऐसे आ गए, तो आप देखिएगा थोड़ा सा पैसा तो हमारे पास बच जाएगा। एक और तरीका भी हो सकता है कि 24 घंटे का नियम बना लें, यानी कि कभी भी ऑनलाइन कोई लग्जरी आइटम या ऐसी कोई चीज जो कि आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं हमें लेना है, वो ऑनलाइन पे दिख गई, अब हमें लगता है खर्चना तो है या हमें ये खरीदना तो है, तो आप 24 घंटे का इंतजार करिए, उसके बाद ही उसे खरीदने की सोचें। देखिए, आवेग में आकर के बहुत चीज हम ऐसे खरीद लेते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा रुक जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है नहीं ये फिजूल लग रहा है, अगले महीने ले लेंगे।
0: आदत होती दीपा खर्चा करने की, हाथ में खुजली होती तो नहीं लगता है, मतलब पैसे वाली की, अब कुछ कुछ तो कर ले कुछ तो कर ले, तो उन्हें ऑनलाइन सबसे अच्छा माध्यम लगता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: तो इन्हीं लोगों के लिए ये है कि आप रुकिएगा, बिल्कुल तुरंत ही वो चीज जो है ऑनलाइन उसकी शॉपिंग ना करिएगा,
0: बिल्कुल
1: थोड़ा सा रुक जाइए। हम कह रहे हैं 24 घंटा, आप 24 घंटा भी नहीं, आप 12 घंटे रुकिएगा, 12 घंटे के बाद आपके मन में वो जो उतावलापन है ना, वो हम बिल्कुल
0: शांत
1: कम
0: हो
1: जाएगा।
0: और जब खरीदने का मन भी करे, तो आप अपने आप से ये कहिए कि ये मैं खरीदूं या नहीं खरीदूं, इसकी कितनी जरूरत है या नहीं जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह की जब बातों पर विचार करेंगे तो भी आप अपने को रोक सकते हैं। और दीपा, हम खुद को एक वित्तीय चुनौती देकर भी देख सकते हैं, जैसे कि 15 दिन से हम कोई एक तय हुई राशि में ही काम चलाएंगे, उसे चलाएंगे, ऐसा करके देख सकते हैं कि सोची हुई राशि से हम अपने 15 दिन निकाल सकते हैं या नहीं। अक्सर लोग केवल किराया, राशन, बिल जैसे तय खर्चों को ही बजट में शामिल करते हैं, लेकिन रोजमर्रा के कई छोटे छोटे अनियोजित व्यय धीरे धीरे पूरे वित्तीय संतुलन को बिगाड़ देते हैं।
1: ये बात तो बिल्कुल सही कही। और अब देखिए, कुछ ऐसे भी खर्च होते हैं जो अचानक से आ सकते हैं, जैसे उपहार खरीदना है, या कभी कभी ऐसा होता है ना, फल सब्जियों की अचानक कीमतें बढ़ जाती हैं, या बाहर कभी खाना खाने जाना पड़ सकता है कोई, या अचानक से कोई ट्रैवल यानी यात्रा पे निकलना पड़ सकता है, कोई मेडिकल खर्च भी आ सकता है, या दफ्तर में कोई छोटे छोटे योगदान होते हैं ना, हमें कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, इस तरह के भी खर्च आ जाते हैं। तो इन सब का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बजट में शामिल करके रखना जरूरी है।
0: बिल्कुल। और देखो, हमारे साथी भी लिखते हैं कि महीने की शुरुआत और बचत का सीधा संबंध है, शुरुआत अच्छी तो महीना अच्छा, सैलरी मिलते ही शुरुआती दिन में सबसे जरूरी वही खर्च करें जिनकी तारीखें फिक्स होती हैं, मसलन घर का किराया, बिजली का बिल, गैस पेमेंट, EMI, बच्चों की फीस वगैरह, फिर आता है राशन, और घर में कोई पेशेंट है तो दवाइयां, इसके बाद कुछ पैसा घर में इस तरह से रख लो कि लगभग ऐसा लगे कि जैसे है ही नहीं, जो आड़े वक्त काम आ सके, किसी से मांगना ना पड़े। फिर इसके बाद आते हैं शौक वाले खर्च, जो तो वो अपनी आय और बचत के अनुसार करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे को देखकर। अगर आय के अनुसार बजट बनाकर खर्च किया जाए तो महीना बहुत आराम से निकल जाता है।
1: और एक संदेश ये भी आ रहा है कि एक गीत सुना दीजिए।

0: बताइए आपके दिल में क्या है?
1: मेरे दिल में तो बहुत सारे कमेंट्स हैं, हम संदेश ही पढ़ेंगे फिलहाल तो अपने विषय पर।
0: हाँ।
1: तो हमारे साथी लिखते हैं कि आजकल बचत के बहुत सारे तरीके आ गए हैं, पर अपनी माँ के जमाने में हम देखते थे कि माँ एक अलग से अपना गुल्लक टिन या पाउडर वाले डिब्बे या किसी तरह के डिब्बे रखती थी। वे ज्यादातर रसोई घर में छुपा के रखा जाता था और कुछ महीने के अंत में कभी जरूरत पड़ा तो उसमें से निकाला जाता था पैसा। हम बच्चों को डरवाया जाता था, उस डिब्बे में कोई नहीं छूएगा, उसमें भगवान का पैसा रहता है, पाप लगेगा। अब कभी माँ निकालकर कुछ खर्च करके बाजार से मंगवाती थी तो हम कहते थे कि ये तो भगवान का पैसा है। माँ बोलती थी कि अन्नपूर्णा भी देवी माँ ही है, उन्हीं के नाम पर आ रहा है। क्या बात है,
0: क्या बात
1: माँ
0: है,
1: तो माँ ही होती है आखिर, है ना?
0: सही कहा। और एक संदेश में हमारे श्रोता भाई ने लिख भेजा है कि मेरे बड़े भैया अक्सर कहा करते थे कि जीवन में तीन मित्र जरूरी हैं, इससे बचत के स्रोत कहिए या मित्र, वो ऐसे मित्र हैं जो विपरीत परिस्थितियों में हमारे संकट मोचक साबित हो सकते हैं। पहला आपकी बचत, दूसरा है सोना या गहने का, और तीसरा है आपके खुद का मकान। मैंने उनकी बातों का अनुसरण करते हुए छोटी छोटी बचत के द्वारा शुरुआत की, जैसे पोस्ट या बैंक में 5 साल की अवधि के लिए रिकरिंग अकाउंट खुलवा लिए। इन अकाउंट की अवधि पूरी होने पर उसी रकम को फिक्स डिपॉजिट में तब्दील करता गया। 15 साल के बाद खुद का मकान बनाने में मुझे बड़े भाई जैसा साथ मिला हो ऐसा महसूस हुआ, वो भी बगैर लोन लिए। उसके बाद बेटे बेटी की शादी के लिए अग्रिम तैयारी स्वरूप समय समय पर गहने बनवाता गया। क्या बात है, और आज सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये सब कुछ बातें ठीक ठाक चल रही हैं। तो भाई इस तरह के अगर परिवार का साथ हो तो फिर तो देखिए बचत में और आपको दुगनी सहायता ही मिलेगी।
1: बिल्कुल। और एक हमारी साथी लिखती कि जब पहली तारीख को तनख्वाह आती तो इतना सारा पैसा एक साथ देकर मन ही मन बहुत से प्लान शुरू हो जाते थे, उस समय हाथ रुक भी नहीं पाता था। पर जब एक एक करके पैसे देने यानी फीस, राशन पानी, दवा, डॉक्टर आदि में निपटाने लगते थे तो कैसे फुर से उड़ जाता था, पैसा पता ही नहीं चलता था। और महीने के शुरू से ही कुछ एक चौथाई पैसा अलग दबा कर देते और भूल जाएं, और फिर पूरे महीने का राशन, दवा और डॉक्टर के पैसे, बच्चों की फीस, घर में काम करने वाली महिलाएं आदि को दे दे, बीच बीच में 50-100 रुपए एक अलग गुल्लक में डाल दे। अगर हाथ में पूरा पैसा होगा तो अधिक तेजी से खर्च होता है, दबाए हुए पैसे आड़े वक्त में काम आते हैं। बहुत अच्छी सी सबने बात लिख के
0: जी बिल्कुल
1: रखी है।
0: और हमारे सभी साथी बचत के मामले में इतने सतर्क हैं और हमेशा करते हैं और अलग अलग सुझाव दे रहे हैं, उसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं। मंजरी हमसे एक सवाल पूछ रही थी, क्या सवाल था मंजरी?
1: ये सवाल हम ये पूछ रहे थे कि ये बताओ कि वन तुमने देखा है ना, हरियाली वहां की बहुत मन को मोहती है, तो क्या कभी तुमने उस पर ध्यान दिया कि वन में कौन कौन से वृक्ष लगे होते हैं?
0: बहुत सारे लगे होते हैं, कई बार जाते हैं ना तो

0: लगातार कभी बरगद के पेड़ दिखने लग जाते हैं, नीम होते हैं, पीपल होते हैं, और भी कई कई तरह के कहीं कहीं पे आम के बगीचे लगातार दिखते हैं यात्रा में जाते हैं ना।
1: और देखो वनों में जब हम जाते हैं तो ये तो तुमने सही बताया, लेकिन इसके साथ साथ महुआ है, पलाश है, तेंदू है, सेमल है, आंवला है, जामुन है, खैर, बबूल, चंदन, शीशम, चीड़, देवदार, साल, सागौन, ये सारे पेड़ भी वहां पर दिखते हैं। तो जब कभी वन की तरफ रुख करना तो इन पत्तों को, इन पेड़ों को बहुत ध्यान से देखना, तो
0: बिल्कुल,
1: बड़ा मजा आएगा,
0: बहुत
1: है
0: मजा आता है। उनके अलग अलग आकार, किसी
1: ना।
0: कोई पत्ता चौड़ा होता है, कोई लंबा होता है, किसी की धारियां बहुत साफ सफाई से
1: और कोई
0: दिखती
1: बड़े
0: हैं,
1: खुरदुरे भी
0: और
1: होते कि
0: कोई
1: उंगली लगाओ
0: जी
1: तो तुम्हारे उंगली में भी छिलने जैसा एहसास होगा, ऐसा भी होता है। तो
0: बिल्कुल
1: भाई देखो, कहते हैं ना कि वन महोत्सव जो है 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जा रहा है। तो एक पेड़ लगाए 100 खुशियां पाए, हरियाली बढ़ाए, धरती को स्वर्ग बनाए, इस वर्ष की थीम है हरित पहलों के माध्यम से पृथ्वी का संरक्षण है। इसके अलावा ये मुहिम चलाई जा रही है कि एक पेड़ माँ के नाम, पेड़ धरती लगाओ बचाओ जैसे नारे जागरूकता बढ़ाने के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हमने जो पौधा रोपण किया है दीपा, उसकी देखभाल एवं उसके बढ़ने, फलने, फूलने तक का ध्यान रखा जाए। पानी समय पर देना है उसको, कोई और क्षति तो नहीं पहुंचा रहा है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसकी शुरुआत 1950 में तत्कालीन केंद्रीय कृषि और खाद्य मंत्री डॉक्टर के एम मुंशी इनके द्वारा हुई थी। तभी से इसे पेड़ लगाने का त्यौहार भी कहा जाता है। हर साल एक, जैसा कि अभी आपने बताया, हर साल 1 जुलाई से 7 जुलाई तक पूरे हमारे देश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। पेड़ों से हमें प्राण वायु ऑक्सीजन मिलती है, वर्षा चक्र संतुलन में रहता है, तापमान नियंत्रित करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, इनमें अनेक जीव जंतु पशु पक्षी निवास करते हैं, उन्हें भोजन मिलता है और हम सभी को अनेक आवश्यकताएं इन्हीं से पूर्ण होती हैं।
1: बिल्कुल, और इनको बचाना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कटाई इसकी रोकनी होती है, वरना आगे आने वाली पीढ़ी के लिए क्या बचेगा। जो वनों को बहुत काटते जाते तो उस पर भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, और इसको अगर थामा नहीं तो प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़ और गर्मी की दिक्कतें हमें झेलनी पड़ जाती है। तो कहना चाहिए प्रति व्यक्ति को वृक्ष लगाना चाहिए और उसकी देखभाल के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
0: बिल्कुल। और इसी तरह के बहुत सारे संदेश भी हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं, लेकिन सुनते हैं क्या
1: एक गीत।

0: जो काली काली घटाएं हैं ना, हर जगह हर तरफ बस ये बरखा रानी इसी तरह से बाहर बरसा दे, यही हम चाहते हैं।
1: बिल्कुल। हमारे साथी लिखते हैं, दीपा, वन महोत्सव के सप्ताह के दौरान स्कूल, कॉलेज या सरकारी संस्थान वृक्षारोपण अभियान वहां पर चलाया जाते हैं और लोगों को पौधे वितरित करते हैं और पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए एक पेड़ माँ के नाम और आम बहार आपके द्वार जैसे विषय विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसमें देशी और फलदार वृक्ष जैसे आम, जामुन, अमरूद, नीम के रोपण पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। और दीपा, जो हमारे जो पेड़ हैं उनसे हमें क्या क्या मिलता है? वृक्ष जब लगे होते तो देखो लकड़ी की और लकड़ी और इमारती सामान मिलता है, जल जलावन की लकड़ी मिलती है, औषधि जड़ी बूटियां, शहद, फल, जामुन, आंवला, बेल आदि, मेवे, मशरूम, बांस और बेत भी मिलते हैं, गोंद, लाख, राल, ये सब चीजें इन सबते हैं, घास और चारा मिलता है पशुओं के लिए, और वन्य जीव पक्षी जो है वो वहां पर जीव जंतु हैं, पशु पक्षी वो सब वहां पर निवास करते हैं। तो कहना चाहिए कि हमें वृक्ष लगाने चाहिए और वनों को कटने से, उसको जो रोकने से बचाना चाहिए और तभी हमारा जो जीवन है वो सफल हो पाएगा।
0: बिल्कुल, सफलता सफल जीवन के लिए देखिए अच्छा वातावरण तो बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और स्वास्थ्य अच्छे के लिए अच्छा सा स्वादिष्ट भोजन करना बहुत जरूरी है। तो देखिए बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने लिख भी भेजा है, बहुत सारे रेसिपीज आज अलग अलग तरह से आई है, पंजाबी छोले और भटूरे की। तो मंजरी आप पढ़ रहे हैं या हम पढ़े?
1: कोई भी पढ़ सकता है,
0: पढ़िए आप पढ़िए।
1: चलिए, तो हमारे एक साथी लिखते हैं, छोले भटूरे की रेसिपी, 2 कप काबुली चने रात भर भिगे हुए, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर पिसे हुए, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च, 1 छोटा चम्मच जीरा, इतना ही आप हल्दी लें और आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 या 2 छोटे चम्मच ले सकते हैं, और लाल मिर्च अपने स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच छोटा छोले मसाला पाउडर लेना है, आधा चम्मच छोला मसाला लेना है, इन्होंने लिखा है, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बड़े चम्मच तेल, थोड़ा सा हरा धनिया, भीगे हुए चनों को नमक, प्रेशर कुकर के साथ में और पानी डालकर 5-6 सीटी के साथ इसको उबाल लें, 1 कढ़ाई में तेल गरम करके उसमें प्याज सुनहरा होने तक भूने, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट डालें, टमाटर और सारे मसाले डालकर तब तक पकाएं जब तक तेल अलग ना हो जाए, अब छोले और थोड़ा सा गर्म पानी डालकर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाएं, अंत में हरा धनिया डालकर गैस बंद कर दें। भटूरे के लिए सामग्री, दीपा, इसकी सामग्री है 2 कप मैदा, 2 बड़े चम्मच सूजी, 2 बड़े चम्मच दही, आधा छोटा चम्मच चीनी, आधा छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, 1 बड़ा चम्मच तेल, गुनगुना पानी, तलने के लिए तेल लेना है आपको, मैदा, सूजी, नमक, चीनी और बेकिंग सोडा मिलाएं, दही और तेल डालकर गुनगुने पानी से मुलायम आटा गूंथ लें, आटे को ढककर 2-3 घंटे के लिए रख दें, छोटी छोटी लोइयां बनाएं जब आपको बनाना हो और गर्म तेल में मध्यम तेज आंच पर गर्म तेल करें और मध्यम तेज आंच होनी चाहिए और दोनों तरफ भटूरों को आप उसमें सुनहरा तल लें और बस भटूरे तलने पर बहुत ही अच्छे बनते हैं और आप इसको परोसना है तो आप कटा प्याज, हरी मिर्च, नींबू और आम के अचार के साथ छोले के संग में परोसें।
0: ये भोजन का आप स्वाद का आनंद लीजिए और साथ में लीजिए इस गीत का आनंद।
2: अरे

0: तो साथियों, आज तो देखिए समय कह रहा है कि हमारे भी चलने का वक्त हो गया है,
1: लेकिन से पहले एक बात बताते हैं। हमारी सखी ने लिखा है, जंगल की जो हम लोग बात कर रहे थे वनों की, तो उन्होंने कहा है कि कभी कभी वो ऐसे वन भोज में शामिल हुई जहाँ पर उन्हीं पत्तों पर वहाँ की सब्जियां साग परोसे जाते थे और झाड़ बेरियां और जंगली पत्तों पर बैठ कर प्रेम से भोजन करते थे, इन्होंने लिखा है। तो भाई वन तो ऐसे हैं कि हम उनको छू कर महसूस कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं, वहाँ पर पूरी आत्मिक शांति मिलती है।
0: बिल्कुल, तो हम तो आशा करते हैं आज का कार्यक्रम में आपने खूब आनंद लिया होगा। आप अपना, अपने परिवार का खूब अच्छे से ध्यान रखिएगा।
1: और अब लेते हैं विदा कार्यक्रम से, तो सभी को मंजरी वर्मा
0: और दीपा माहेश्वरी का
1: नमस्कार।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली।

0: अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों ने हाल ही में देवीपुर में हुई एक हत्या और कई लूट कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। गिरिडीह की पीरटांड पुलिस ने अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में मुन्ना लाल किस्को को गिरफ्तार किया है। डुमरी एसडीपीओ आबिद खान ने बताया कि आरोपी ने अवैध संबंध के शक में 28 जून को अपनी नवविवाहिता पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और शव को नाले के पास छिपा दिया था। कोडरमा के डोमचांच स्थित बैजनाथ प्रसाद स्नेही कॉलेज में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और विधायक डॉक्टर नीरा यादव शामिल हुए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। और पूर्व उप प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर आज रांची में प्रदेश कांग्रेस के महासचिव सुरेंद्र राम सहित कई नेताओं ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: थैंक यू।
1: कैसा लग रहा है आपको?
2: बहुत अच्छा।
1: स्टूडियो में आकर
2: बहुत ही अच्छा लगा
1: जी। आज एक बड़ी समस्या हो गई है जिसके बारे में बहुत कम जानकारी लोगों को है, जिस पर सजगता बहुत जरूरी है, वो है पीसीओडी। ये पीसीओडी क्या है और क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होता है, इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
2: यस, अभी पीसीओडी यानी बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है। और पीसीओडी क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, इसका फुल फॉर्म है पॉली यानी ज्यादा और सिस्ट यानी सिस्ट। पीसीओडी के दो है, पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। जो पीसीओडी है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है और पीसीओडी में क्लियरली होता है सिस्टिक ओवरीज। और जो पीसीओएस है जो उसमें मल्टीपल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, ज्यादा लक्षण होते हैं, इसमें फर्टिलिटी पर इफेक्ट करता है। ये आजकल यही है पीसीओएस।
1: इसके लक्षण क्या है, मतलब क्या है इसमें खतरा क्या है?
2: पीसीओडी है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और ये जो है ये फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है। फर्टिलिटी पे तो इफेक्ट करता ही यही है, लेकिन उसके साथ साथ में शुगर, बीपी हो सकता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है और आगे बहुत आगे चल के एंडोमेट्रियल कैंसर भी हो सकता है। ये जितना सिंपल है उतना खतरनाक भी है ये बीमारी।
1: तो पीसीओडी असल में क्या है, ये क्या हार्मोनल
2: इम्बैलेंस? पीसीओडी एक हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। क्या होता है, अभी जो ओपीडी में बच्ची आती है हमारे पास, 10 बच्चियों में से 6 बच्चियों में ये साइन दिखता है पीसीओडी। तो इसका बहुत ज्यादा ही प्रमाण हो गया है। रिप्रोडक्टिव एज जो होता है बच्चियों का 14 से 35 तक ये इफेक्ट करता है और ज्यादातर 20 से 30 तक उम्र के बच्चों में ये ज्यादा दिखता है
1: जी।
2: ये जो डिसीज है लाइफस्टाइल चेंज डिसीज है, लाइफस्टाइल चेंजिंग, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं और ये तीन फैक्टर के वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है
1: जी।
2: और इंसुलिन रजिस्टर हो जाने के वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। और जब हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है तो इंसुलिन रजिस्टेंस के वजह से मेल हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन जिसको बोलते हैं और एंड्रोजन बढ़ने लगता है और ये बढ़ने के वजह से ओवुलेशन जो है वो ब्लॉक हो जाता है। तो इसके वजह से नॉर्मल ओवुलेशन नहीं आता है, पीरियड रेगुलर नहीं आता है, ओरी सिस्टिक हो जाती है और रेगुलर सब हो जाता है
1: जी। तो इसके जैसे कि आप लक्षण बता रहे हैं पीरियड्स हाँ। नहीं आते हैं रेगुलर, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या हाँ। हो जाती है ना लड़कियों की, महिलाओं की, उनको स्ट्रेस और बढ़ेगा, अगर स्ट्रेस और बढ़ेगा तो ये समस्या और बढ़ेगी। तो इसका क्या इलाज है?
2: हाँ, तो इसके लक्षण बताती हूँ मैं। पहला इसमें फर्स्ट लक्षण दिखता है पीरियड का इरेगुलर हो जाना और पीरियड का फ्लो कम हो जाना, स्केंटी पीरियड्स बोलते हैं, कभी कभी ज्यादा भी हो जाना। कभी 2 महीने के अंदर पीरियड आते हैं, 3-3 महीने आते हैं, ये 6-6 मंथ भी नहीं आते हैं और कभी कभी मेडिसिन लेके ही पीरियड्स आ जाते हैं। वजन बहुत ज्यादा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन रहता है, एक्ने आते हैं, पिंपल्स आते हैं, रफ फेस दिखता है
1: जी।
2: और मूड स्विंग्स होते हैं, आलस आता है, बाल झड़ते हैं और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हेयर ग्रोथ, अनवांटेड हेयर, चीन पे हेयर आते हैं, अपर लिप्स पे हेयर आते हैं, बॉडी पे अनवांटेड हेयर आने लगते हैं और इनफर्टिलिटी में ये बहुत इफेक्ट करता है, आगे चल के शुगर, थायराइड वो सब होता है
1: जी। तो इसका इलाज किस तरह से संभव है?
2: हाँ, इसका इलाज संभव है, इसका इलाज है कि नेचुरल वे से संभव है, जैसे वेट लॉस। पीसीओडी के पेशेंट में देखो तो 80% पेशेंट में ओवर वेट रहते हैं, पेशेंट वेट ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका इलाज है वेट लॉस और एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एक्सरसाइज एक्सरसाइज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, यानी
1: मेडिटेशन,
2: हाँ वो थोड़ा, तो एक्सरसाइज, योगा, सूर्य नमस्कार, पावर योगा, वॉकिंग, एरोबिक्स, कार्डियो, स्विमिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्कीपिंग कर सकते हैं, ये सब एक्सरसाइज में कर सकते हैं, 30 मिनट सुबह 30 मिनट शाम। एक्सरसाइज इतना किया तो भी 35% तक पीसीओडी रिवर्स हो जाता है और डाइट।
1: तो अब आगे बढ़ने से पहले एक गाना सुन लेते हैं, आपकी पसंद का कौन सा गाना?
2: अच्छा, एक प्यार का नगमा।
1: प्यार का नगमा है मौजू की रवाने, सुनते हैं ये गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है इसमें।

0: लगाने के बाद डॉक्टर आशा लता आपने जिक्र किया था कि पीसीओडी यानी कि ये एक तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस है, असंतुलन है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी भी होता है। तो इनफर्टिलिटी के लिए जब पता चले कि हाँ बच्चा नहीं हो रहा है किसी कपल को, तो क्या है जांच पद्धति और क्या है उसका ट्रीटमेंट, बताइए। हाँ, पहले जांच पद्धति बताइए। हाँ, किस तरह
1: तो
0: से ट्रीटमेंट,
1: जब इनफर्टिलिटी के पेशेंट ओपीडी में आते हैं तो 1 ईयर कुछ प्रिकॉशन यूज करते हुए भी उनको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो रही है, तो फर्स्ट थिंग हम करते हैं लेडीज में, फीमेल में, ओलेशन स्टडी। कि ओलेशन स्टडी एक सोनोग्राफी होती है
0: जी,
1: और उसमें पता चलता है कि उसका यूटेरस सही है, यूटेरस की मेजरमेंट क्या है, ओरी सही है, गर्भनलिका जो है वो सही है, एंडोमेट्रियम थिकनेस जिसको हम बोलते हैं अंदर का अस्तर वो सही है, ये सब पता चलता है। और फिर उसके कोई हार्मोनल टेस्ट रहती है, उसमें रहता है ब्लड टेस्ट रहते हैं, वो पीरियड के सेकेंड डे से करना पड़ता है और वो खाली पेट करते हैं, उसमें FSH रहता है, फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन बोलते हैं, LH रहता है, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल रहता है, और सबसे बड़ी चीज ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट बोलते हैं, ग्लूकोज का पूरा टेस्ट करते हैं, फास्टिंग, पीपी, और उसमें कुछ आ गया 120 110 20 के आसपास तो HbA1c, ये टेस्ट रहता है। और फर्टिलिटी के लिए AMH लेवल, एंटी मिलेरियन हार्मोन की लेवल रहती है, वो करना पड़ती है, इतना ब्लड टेस्ट रहता है और UHG सोनोग्राफी, ये दो टेस्ट बहुत जरूरी है। और मेल पार्टनर में हम सेमेन काउंट, सेमेन एनालिसिस करते हैं।
0: और अभी तो तकनीक काफी एडवांस हो गई है, तो इनफर्टिलिटी के जांच के लिए और भी कुछ जांच की पद्धति आ गई है, तो तुरंत पता चल जाता है कि हाँ इन्हें बच्चा ना होने का क्या कारण है, उसके बारे में भी जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को। जैसे लेप्रोस्कोपी है तो क्या?
1: हाँ, वो थोड़ा जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लेप्रोस्कोपी या IVF या IUI एडवाइज हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे, और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लेट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल, और मल्टीविटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3, और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, B12 हो, ये सब देकर, और शिफ्ट नहीं हो रहा है तो टेस्ट रहते हैं आगे चल के उनका ट्यूबल ब्लॉक है कि नहीं, वो एक अच्छी सी टेस्ट रहता है
0: जी।
1: तो वो सब ठीक है, अभी नहीं हो रहा है नॉर्मल, कुछ ज्यादा दिन ब दिन ज्यादा बढ़ रहा है, तो आगे चल के उनको लेप्रोस्कोपी सजेस्ट करते हैं।
0: तो ये भी इनफर्टिलिटी भी एक ऐसा कारण है जो स्ट्रेस को बढ़ावा देता है। आज हम बात करना चाह रहे हैं पीसीओडी और महिलाओं के अन्य तमाम समस्याओं पर, और आपने कहा डॉक्टर साहिबा कि जब पीसीओडी का इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती, लक्षण हैं जैसे कि पीरियड्स का इररेगुलर हो जाना। तो पीरियड्स का इररेगुलर होता है, कई बार कई महिलाओं को, कई लड़कियों को हैवी ब्लीडिंग होती है, भयानक पेन होता है, तो दर्द से निजात पाने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? और ये भी सुना है कि फिर फाइब्रॉइड्स हो जाते हैं क्या हैवी ब्लीडिंग की वजह से, इसके बारे में जानकारी दीजिए कि क्या है फाइब्रॉइड्स और
1: यूटेराइन फाइब्रॉइड और सीस्टी जो है, तो मेडिसिन लेकर देखते हैं पेशेंट को, अगर उसका साइज ज्यादा हुआ, फाइब्रॉइड बहुत ज्यादा बढ़ गया तो वो सर्जरी करना पड़ता है इसका।
0: कैसे पता चलता है कि फाइब्रॉइड्स है या नहीं?
1: UHG में, सोनोग्राफी में उसका परफेक्ट मेजरमेंट आता है
0: जी,
1: सोनोग्राफी एक ही माध्यम है उसको
0: जी। तो क्या फाइब्रॉइड्स का ऑपरेशन करना जरूरी होता है या ट्रीटमेंट से ठीक हो जाता है?
1: शुरू शुरू में तो ट्रीटमेंट नहीं देना जरूरी है, और ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है मेजरमेंट उसका, तो सर्जरी करना पड़ती है
0: जी। तो एक गाना और सुने आपकी पसंद का, कौन सा?
1: अजीब दास्ता
0: है जी, सुनते हैं, बेहतरीन गाना चुना है, लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आपने कुछ लक्षण बताए, हार्मोनल असंतुलन होता है तो और क्या क्या लक्षण होते हैं जब हार्मोनल असंतुलन होता है, और इनको क्या नजरअंदाज करती हैं कई बार महिलाएं, तो क्या कुछ मुश्किलें आती हैं जब इन्हें नजरअंदाज करती हाँ। छोड़ देती हैं?
1: ये तो जब फिजिकली होता है तो हमको समझ में आता है कि नहीं उसको ये हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है इसमें, उसको नजरअंदाज कर दिया जा सकता है। तो मेंटल स्ट्रेस के लिए मेडिटेशन है जिसे, और काउंसलिंग पार्ट इसमें बहुत ज्यादा।
0: तो काउंसलिंग किस तरह की होनी चाहिए?
1: काउंसलिंग जब डॉक्टर के पास जाते हैं पेशेंट, तो डॉक्टर भी अच्छे जब काउंसलर डॉक्टर हो गए तो पेशेंट का रेपो अच्छा हो जाता है उनसे, फ्रेंडली। जब वो अच्छे से समझाते हैं तो आधा काम इधर ही हो जाता है ऐसा मुझे लगता है। और डीप ब्रीदिंग जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट एक थिंग है, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत बड़ी अभी जो चाहिए इस जमाने में, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में डीप ब्रीदिंग है, मेडिटेशन है, और उसका स्लीपिंग जो पार्ट है प्रॉपर स्लीप वो होना चाहिए, और समझाना चाहिए सब। और एक है पॉजिटिव विजुलाइजेशन, जो तुम मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पॉजिटिव प्रोसेस, पॉजिटिव थिंक प्रोसेस और पॉजिटिव विजुलाइजेशन, ये बहुत बड़ी बात है
0: जी। डॉक्टर आशालता, पीसीओडी एक बड़ी समस्या है, हार्मोन्स का असंतुलन, तो इसमें डाइट्स का कितना बड़ा योगदान है? क्या डाइट्स के जरिए ठीक किया जा सकता है, खान पान के जरिए?
1: डाइट
0: किस तरह से ठीक किया जा सकता है?
1: डाइट के जरिए 35 तक ठीक कर सकते हैं पीसीओडी, 35% तक ठीक कर सकते,
0: 35%
1: हाँ। तो डाइट में, डाइट ही बहुत जरूरी है पीसीओडी यानी वुमन हेल्थ में, एक्सरसाइज, डाइट और स्ट्रेस, ये तीन फैक्टर बहुत जरूरी है। और डाइट में हम देखें तो अभी फास्ट फूड खाते हैं बच्चियाँ, बस फास्ट फूड ही खाती है, बर्गर खाएगी, पिज्जा खाएगी, बाहर का सब खाएगी, तो ये सबसे बुरी बात है। कार्ब्स कम करना है इसमें, और फाइबर इंटेक करना है, जैसे सैलड हो, कच्चे स्प्राउट्स हो, कैलोरीज पर ध्यान देना है। हाँ, जो हमको डेली में लगता है 1800-2000 तक कैलोरीज, और बच्चियां लड़कियां खाती है 4000-5000 कैलोरी, तो कहाँ पर कम करना है, और कैलोरी अगर खा लिया तो बर्न कैसे करना है, तो उसको बर्न करना है एक्सरसाइज से। तो डाइट हम लोग जैसे बोलेंगे तो टाइम पे सोना है, उठना है पीसीओडी में, पानी पीना है 3 से 4 लीटर, स्ट्रेस ना लेना है, और शुरू में उठते बराबर सुबह सुबह थोड़ा गर्म पानी पीना है, और अगर मेथी, थोड़ा जीरा, थोड़ा दालचीनी का टुकड़ा ये भी डाले तो ये टी हो सकता है, हर्बल टी, उससे भी थोड़ा सा पीसीओडी कम होने में मदद कर सकते हैं। नाश्ते में फाय आलमंड, व्हाइट एग ये ले सकते हैं, स्प्राउट्स ये ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में मूंग दाल वगैरह ये चीले ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन उपमा, पोहा, शिरा ये कार्ब्स है, उससे वजन बढ़ता है और अफेक्ट करता है। और हरी सब्जियां बहुत जरूरी है, जैसे सभी मेथी, पालक ये सब, और हरी सब्जियां से भी 25% तक पीसीओडी या वुमन हेल्थ कम कर सकता है। और शुगर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, शुगर, शुगर एकदम बंद, पीसीओडी के पेशेंट में हम शुगर बंद कर देते हैं, शुगर, मैदा, वाइट जो चीजें, राइस जैसे हाँ, और हाई प्रोटीन डाइट हम बोलते हैं पेशेंट को कि थोड़ा प्रोटीन लो, तो प्रोटीन किस में होता है, जैसे मिल्क है, टोफू है, पनीर है, गुड प्रोटीन होता है ड्राई फ्रूट्स में, वो भी हम बोलते हैं। और सप्लीमेंट्स भी लेना जरूरी है, हम उनको बोलते हैं जैसे ओमेगा फैटी हो गया, विटामिन डी थ्री हो गया, विटामिन डी,
0: और विटामिन डी धूप से
1: सनलाइट,
0: और आजकल धूप की बहुत कमी है,
1: बहुत कमी है,
0: लोग एयर कंडीशन कमरों में बैठते हैं, घर में भी एसी, ऑफिस में भी एसी, तो मिलता नहीं, तो धूप सेकना बहुत जरूरी है। धूप का ही एक गाना है, एक टुकड़ा धूप का, फिल्म थप्पड़ से, आप कहें तो वो गाना सुनवा दें, आप कहें तो कोई और गाना,
1: नहीं नहीं जरूर, वो बहुत अच्छा गाना है,
0: तो ठीक है ये गाना सुनते हैं जिसमें धूप है।

0: डाइट का कितना योगदान है?
1: डाइट का बहुत सारा योगदान
0: हाँ,
1: है।
0: तो और
1: और
0: क्या क्या डाइट्स ले सकते
1: हाँ,
0: हैं?
1: अभी डाइट में कोल्ड ड्रिंक्स नहीं ले सकते हैं, जैसे
0: जी,
1: कोक हो गया और जो कोल्ड ड्रिंक्स हो गया।
0: चॉकलेट
1: हाँ,
0: नहीं ले
1: आर्टिफिशियल
0: सकते।
1: स्वीटनर्स रहता है उसमें, वो बिल्कुल नहीं, चॉकलेट्स भी नहीं। और इससे बहुत ज़्यादा शुगर लेवल बढ़ता है, और शुगर लेवल इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। बाहर की चीज़ें जैसे रिसाइकलिंग ऑयल में हम जैसे बोलते हैं समोसा, जो
0: नहीं खाना
1: इससे हाँ
0: चाहिए,
1: नहीं खाना चाहिए,
0: समोसे के
1: उससे
0: शौकीन
1: ट्रांस
0: के लिए
1: फैटी,
0: मुश्किल
1: हाँ
0: है।
1: हाँ ये ट्रांस फैटी एसिड बढ़ता है, और वो भी ओवुलेशन को ब्लॉक कर देता है। और पैकेज फूड जो होता है, पैकेट बंद पैकेट का फूड, वो भी नहीं चाहिए। प्रोसेसिंग फूड,
0: जी।
1: नमकीन, भुजिया, जो सॉल्टी फूड्स है, वो भी नहीं।
0: तो और आपने कहा कि शक्कर बंद कर देना चाहिए एकदम, तो कई बार एकदम से शक्कर बंद हो जाए तो लोगों को चक्कर आना, इस तरह की समस्या, वीकनेस,
1: हाँ,
0: कमजोरी महसूस होती है, तो उसके लिए फिर क्या
1: वो
0: करना
1: फ्रूट्स
0: चाहिए?
1: से नेचुरल शुगर मिल जाती है
0: जी,
1: उनको। हाँ, तो फ्रूट्स
0: मतलब
1: इंटेक कीजिए।
0: जब अगर
1: हाँ,
0: शक्कर
1: खजूर,
0: छोड़े तो फल जरूर
1: हाँ
0: खाए।
1: फल जरूर खाएं। और ऐसा नहीं है कि शक्कर छोड़े गुड़ खाओ, अभी वैसा ही करती है महिलाएं कि हमको शक्कर छोड़ने बोला है और बोला है कि गुड़ खाओ,
0: जी,
1: बिल्कुल गलत है।
0: हाँ।
1: शक्कर की सब्स्टिट्यूट गुड़ नहीं है, शक्कर नहीं तो कोई नहीं, स्वीटनर कोई नहीं है।
0: मीठा वो
1: और
0: भी है,
1: मीठा, हाँ,
0: नुकसानदायक
1: हमारे रोज के खाने में भी हमको शुगर जाती है।
0: है।
1: और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, खजूर वगैरह है, नेचुरल शुगर मिल जाती
0: वो
1: है,
0: खा सकते
1: खा
0: हैं।
1: सकते हैं।
0: और पीसीओडी जो हार्मोनल असंतुलन होता है, तो क्रॉनिक स्ट्रेस होता है,
1: हाँ,
0: तो
1: क्रॉनिक्स,
0: उसके लक्षण क्या है और कैसे इलाज हो सकता है, क्या
1: हाँ
0: निजात पाए,
1: क्रॉनिक
0: कैसे
1: स्ट्रेस
0: निजात
1: होता
0: पाए?
1: है, बहुत सारी चिड़चिड़ पीसीओडी के पेशेंट, चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा होती है पीसीओडी के पेशेंट की। अभी जब भी पेशेंट हमारे पास आती है तो बोलती है कि चिड़चिड़ी बहुत ही होती है, कुछ भी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो ये क्रॉनिक ये रहता है स्ट्रेस, और इससे कॉर्टिसोल बढ़ा देता है ये, और वजन बढ़ता है, और ओवुलेशन ब्लॉक हो जाता है, सिस्टिक ओवरी हो जाती है, फर्टिलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है।
0: और क्या क्या कर सकते हैं इस स्ट्रेस से निजात पाने के लिए?
1: स्ट्रेस से कुछ तुम हॉबी हो, या करियर पे ध्यान दो, या थोड़ा मेडिटेशन करो, या थोड़े अच्छे संगीत सुनो, और फिर थोड़ा सा मौन व्रत धारण करो।
0: चलिए, हम मौन व्रत धारण करते हैं, एक गाना सुनते हैं। बताइए कौन सा गाना
1: चलिए,
0: सुनवाए?
1: झिलमिल सितारों के।
0: आंगन होगा, सुनते हैं यही गाना।

0: डॉक्टर साहब, आप पीसीओडी की बात करें और महिलाओं की और भी बीमारियां होती हैं जो महिलाएं जिनसे बचती भी हैं, जिन्हें छुपाती भी हैं, संकोच करती हैं।
1: हाँ।
0: जैसे कि एक समस्या और है कि एक खास समय पर टीनेज पर 12 से 13 साल की उम्र में पीरियड्स शुरू होते हैं मासिक धर्म, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को ये बताया नहीं जाता, अवेयर नहीं किया जाता है, माँ बाप उन्हें इस बात की शिक्षा नहीं देते हैं। तो आप क्या कहेंगे, किस तरह से उनको जागरूक बनाया जाए, उनको जानकारी कैसे दी जाए, इसके बारे में कुछ
1: अभी जो है टीनेज में आने का, जो मेनार्क बोलते हैं हम लोग, पीरियड स्टार्ट होने का, वो एज बहुत अर्लियर हो गया है,
0: जल्दी आ जाता
1: है। हाँ, जल्दी आ गया है। हम लोगों में जब 14 to 16 था, 12 से आता था, 12 ईयर से, अभी वो 8.5-9 साल की लड़कियों में भी दिख जाता है कि इसको मेनार्क स्टार्ट हो गया, इसको पीरियड

0: स्टार्ट हो गए। और ये बहुत ज्यादा डरने की चीज है, डरने की चीज।
1: तो
0: तो
1: क्या वजह है
0: क्यों?
1: इसकी?
0: इसकी वजह है जब बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाती है, 2-3 साल की, खाने लगती है, तो बस उसको फास्ट फूड देते हैं।
1: ओ
0: हाँ, कोक, ये वो सब।

0: सब स्कूल में इसके सब शोज होते हैं, बातें करती है डॉक्टर, और अवेयरनेस बहुत ज्यादा है।
1: और आपने ये गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
0: गर्भाशय में सिस्ट बन जाता है,
1: क्या समस्या है और इसका इलाज कैसे होता है?
0: गर्भाशय रहता, गर्भाशय है, गर्भाशय के साइड में दो गर्भनलिकाएं रहती है और गर्भनली के नीचे ओरिस रहती है। और जनरली देखा जाए तो 30 डेज की साइकिल रहती है, 30, 20 और 30। तो फर्स्ट 10 डेज, बीच के 10 डेज और लास्ट 10 डेज, ऐसे 30 डेज। तो फर्स्ट 10 डेज में ओवुलेशन नहीं होता है, लास्ट 10 डेज में ओवुलेशन हो जाता है, और बीच के 10 डेज जो होते हैं उसमें ओवुलेशन होता है, यानी ओरी से एक फॉलिकल निकलता है, अंडा निकलता है, वो रिलीज होता है, बाहर आता है, और जब स्पर्म उससे मिलता है तो प्रेगनेंसी कंसीव होती है, और नहीं मिलता है तो पीरियड्स आ जाता है। ये नेचुरल नॉर्मल लेडी में होता है, बीच के 10 डेज ओवुलेशन पीरियड। और पीसीओडी के पेशेंट में ये होता है कि उनका वो जो एग है वो रिलीज नहीं होता है, वो बाहर नहीं आता है, वो बाहर ना आने जाने की वजह से मोतियों जैसी, मालाएं जैसी ओरी में सिस्ट दिखती है, छोटी छोटी सिस्ट होती है, और बाहर न आने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती है।
1: जी, तो उस सिस्ट का इलाज कैसे किया जाता है, क्या ऑपरेशन होता है या दवा?
0: वो सिस्ट तो नेचुरल सिस्ट, मैंने जैसे बार बार बोला है कि वो अच्छे से डाइट, एक्सरसाइज, पहले नेचुरल वे से कंट्रोल करते हैं, नेचुरल वे से नहीं कंट्रोल हुआ तो मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं, नहीं हुआ तो सिस्ट का ड्रिल होता है, ड्रिलिंग लैप्रोस्कोपी से, सर्जिकल प्रोसेस है।
1: जी, तो उसका कोई खतरा नहीं?
0: नहीं, उसका कोई खतरा नहीं, सर्जिकल होता है और मेडिकली वो होता है ठीक ठाक।
1: जी, अब बताइए कौन सा गाना सुनवाए?
0: सुरमई अखियो,
1: सुरमई अखियो में
0: नन्ना मुन्ना,
1: सुंदर गाना, सदमा फिल्म का गाना सुनते हैं।

0: ये गाना हमने अपने श्रोताओं को सुनवाया और डॉक्टर आशा लता विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर हमें बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी का जिक्र किया था कि पीसीओडी के कारण इनफर्टिलिटी होती है, तो उसके तो बहुत सारे इलाज आजकल संभव है। अखबारों में विज्ञापन आता है कि इतने हजार में आप आईवीएफ तकनीक से बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आईवीएफ तकनीक के बारे में बताइए किस तरह से वो बच्चे का जन्म होता है, और हमारे बहुत सारे श्रोता जो गांव में भी हैं जिन्हें नहीं पता उनके लिए भी बताइए, और कितना टाइम लगता है, कितना रिस्की होता है।
1: तो पेशेंट जैसे इनफर्टिलिटी उनको डिटेक्ट हुआ, चलो तो डायरेक्टली आईवीएफ नहीं करना चाहिए और करते भी नहीं है, उनको प्रॉपर नेचुरल वे से ट्राई करते हैं और फिर इनफर्टिलिटी जर्नी किसी को नहीं होना चाहिए, इतनी सफर होती है पेशेंट उसमें बहुत सारे, तो नेचुरल ट्राई करते हैं। नेचुरल ट्राई नहीं हुआ तो डॉक्टर मेडिसिन देके ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा है और फिर आईयूआई का सेटिंग करते हैं। आईयूआई भी नहीं हुआ तो
0: आईयूआई क्या है?
1: आईयूआई है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको, डायरेक्टली यूटेरस में सीमेन डाल देते हैं। आईयूआई जब करते हैं कि जैसे स्पर्म काउंट कम हो, उसकी मोर्टेलिटी कम हो और स्पर्म काउंट जीरो भी हो, एजोस्पर्मिया उसको जो बोलते हैं, तो डोनर से बोल लेते हैं, लैब में ये सब किया जाता है
0: और लैब से भी डोनेट,
1: हाँ डोनर कर देते हैं, और डोनर को पता नहीं रहता है पेशेंट को, नहीं पेशेंट को पता नहीं रहता है, ये सब बहुत ही लीगली होता है, बहुत ज्यादा लीगली होता है। और आईयूआई के जैसे परसेंटेज सक्सेस रेट बहुत कम है, 5-7% इतना ही सक्सेस रेट है, बहुत ज्यादा सक्सेस रेट कम है। और फिर नहीं आईयूआई हुआ तो वो फॉर आईवीएफ, आईवीएफ के तरफ जब जाते हैं तो आईवीएफ क्या होता है, तो आईवीएफ में ओम पिकअप करते हैं फीमेल का,
0: वो जो परेक्टली
1: हाँ सिर्फ हाँ उसमें सब मेडिसिन पहला देकर उसको मैच्योर करते हैं और वो पिकअप करते हैं, और स्पर्म तो लैब में उसको एम्ब्रियो बनाते हैं, उसका एम्ब्रियो बन जाने के बाद में यूटेरस में
0: तो इस पूरी प्रक्रिया में पीरियड्स के किस दिन से शुरू होता है ये प्रोसीजर?
1: हाँ पीरियड्स के सेकेंड थर्ड से स्टार्ट हो जाता है प्रोसीजर, फर्स्ट तो इंजेक्शंस मेडिसिंस और फिर बाद में ओम पिकअप करते हैं जब मैच्योर हो जाता है श्रीबीज अंडा, और फिर बाद में
0: तो कई बार कपल जो पति पत्नी होते हैं जाते हैं डॉक्टर के पास, उनको घबराहट भी होती है कि क्या प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि कैसे होता है, क्या जैसे महिलाओं के गर्भाशय से जब अंडे रप्चर होते हैं वो निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, वो उस समय कैसे फिर उनको कोई तकलीफ तो नहीं होती है?
1: वो थोड़ा पेनफुल प्रोसीजर रहता है, हाँ। तकलीफ तो होती है उनको,
0: एनेस्थीसिया वगैरह देना पड़ता?
1: एनेस्थीसिया नहीं, एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं रहती है, और स्पर्म तो ऐसे ही लैब में कलेक्ट हो जाते हैं और उसका एम्ब्रियो बनाते हैं लैब में।
0: तो फिर इसमें किसी तरह का खतरा कोई रिस्क नहीं होता है?
1: नहीं अभी तो सब लैब टेस्टिंग होता है, पूरा सब लीगली प्रोसीजर्स होता है, खतरा कोई नहीं होता है।
0: कितने साइकिल में ये संभव हो पाता है, डॉक्टर के पास कितनी बार जाना पड़ता है?
1: वो बोल नहीं सकते, कभी वन साइकिल में हो जाता है, कभी सेकंड साइकिल में, कभी थर्ड साइकिल में भी हो जाता है, वो बोल नहीं सकते, कभी फेल भी हो जाता है। लेकिन आईवीएफ जो फेल हो गया वो लास्ट है
0: जी,
1: लास्ट टप्पा है। आईवीएफ फेल हो जाने के बाद में तुम नेचुरल वे में नहीं आ सकते
0: जी जी,

0: पीसीओडी के कारण क्या ये भी होता है कि मेनोपॉज जल्दी हो जाए या फिर बहुत देर से हो, ये समस्या भी होती है?
1: हाँ होती है, पीसीओडी में पीरियड्स ही रेगुलर रहते हैं और ट्रीटमेंट नहीं किया तो मेनोपॉज ही हो जाता है, कभी कभी दवाई लेके ही पीरियड आता है,
0: जी
1: ये भी होता है।
0: जी तो इसकी क्या वजह है कि नींद की कमी
1: हाँ नींद
0: और
1: की कमी, डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है और हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोनल
0: जी
1: इम्बैलेंस बस।
0: कई बार हमने देखा है कि महिलाओं में ब्लीडिंग ज्यादा होती है और कई महिलाओं में बहुत कम
1: कम
0: होती
1: हो
0: है,
1: जाती है स्कैंट में।
0: और कुछ महिलाओं को दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो इसकी क्या वजह होती है?
1: वो जेनेटिक फैक्टर भी रहता है, कभी कभी दर्द होता है, मनर्जिया बोलते हैं उसको, और डाइट का भी इफेक्ट करता है वो, और एक्सरसाइज भी नहीं होती है तो होता है। जो
0: जी
1: महिलाएं एक्सरसाइज करती है, योगा करती है, काम करती है, उनको नहीं इतना कुछ होता है।
0: तो
1: जो महिलाएं बहुत सुख वस्तु है, कुछ भी नहीं करती, योगा भी नहीं करती है, तो उनको ये सब पेरीमेनोपॉज मेनोपॉज पेनफुल होता है।
0: तो ये गंभीर रूप कब ले लेता है?
1: तो इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये गंभीर ही रूप लेता है।
0: क्या कुछ
1: यूटेरस
0: खतरा होता है?
1: हाँ यूटेराइन कैंसर भी होता है, एंडोमेट्रियम कैंसर, ओरीज का कैंसर हो सकता है बाद
0: जी
1: में, और ये सब इफेक्ट करता है बहुत ज्यादा।
0: तो क्या इसके लिए कोई वैक्सीन उपलब्ध है कि इससे
1: वैक्सीन
0: निजात?
1: उपलब्ध है लेकिन उसका सक्सेस रेट कितना है ये पता नहीं है।
0: और कई बार महिलाओं के गर्भाशय में छोटी मोटी गांठ होती है, कई बार फाइब्रॉइड्स को भी लोग गांठ समझ लेते हैं और
1: हाँ
0: कैंसर का डर पैदा होता है, तो
1: डर
0: ऐसा
1: पैदा है,
0: कहां तक सच्चाई है इसमें?
1: सभी गांठें कैंसर की होती है ऐसा नहीं है।
0: जी
1: कभी कभी ये पीसीओडी की तो सीस्ट पानी जैसे होता है उसका,
0: जी
1: हाँ कभी कभी हेमोरेजिक होती है, खून भी रहता है उसमें, हेमोरेजिक सिस्ट भी होता है,
0: मतलब पानी,
1: सिस्टिक
0: हाँ,
1: होता है, और कभी कभी हेमोरेजिक भी होती है
0: यूरिन के रास्ते से सफेद
1: यूरिन
0: पानी
1: के।
0: आता है ऐसा?
1: हाँ वो अलग चीज़ है, यूरिन के रास्ते जो सफेद पानी है तो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, वो इन्फेक्शन के कारण हो जाता है।
0: जी तो
1: हाँ
0: उसका क्या इलाज है?
1: वो तो क्लीनिनेस और फिर थोड़ा एंटीबायोटिक और सभी देख के वो क्लियर हो सकता है।
0: जी तो यहाँ पर कौन सा गाना सुनवाए?
1: ये रात भीगी भीगी
0: ये रात
1: नरगिस,
0: भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, चोरी चोरी फिल्म का गाना है,
1: हाँ
0: सुनते हैं यही गाना।

0: पीसीओडी की जो समस्या होती है डॉक्टर, तो उसमें आपने जिक्र भी किया था कि अनावश्यक बाल हो जाते हैं चेहरे पर, जो लड़कियों को महिलाओं को बहुत बुरा लगता है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढती है, तो इसके बारे में बताइए कि इसका क्या इलाज है।
1: पीसीओडी का लक्षण है अनवांटेड हेयर।
0: हाँ,
1: और लड़कियां बोलती है कि हमको पीसीओडी चलेगा लेकिन ये अनवांटेड हेयर नहीं, हर 2-3 दिन के बाद हेयर ग्रोथ हो जाती है, कभी रेजर करते हैं, कभी वैक्सिंग करते हैं, कभी थ्रेडिंग करते हैं, और उससे भी बहुत ज़्यादा होता है। और ये बाल तो जैसे पीसीओडी इम्बैलेंस रहा, हार्मोनल इम्बैलेंस, तब तक आते ही रहते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये बाल होते हैं। और इसमें भी LHR बोलते हैं उसको, लेजर कर देते मशीन से, हेयर लेजर रिमूवल, वो भी बहुत अच्छी एक है।
0: जी, जब हार्मोन्स का असंतुलन होता है तो मानसिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, किस तरह से होता है?
1: मानसिक स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, चिड़चिड़ापन होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है।
0: जी, तो इसका इलाज क्या है?
1: इसका इलाज मेडिटेशन, शांत रहना।
0: डॉक्टर, आज के युग में ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन हो गया है, बहुत सारी महिलाओं के बारे में सुना जाता है उन्हें ब्रेस्ट कैंसर से वो महिला जूझ रही है, तो इसका परीक्षण कैसे करें?
1: हाँ, इसका परीक्षण सेल्फ परीक्षण भी कर सकते हैं। मिरर के सामने खड़े होके अपना पाल ये है ऐसा थोड़ा सा टच करके, कुछ लगे हार्ट तो जल्दी से डॉक्टर को बता देना चाहिए। और महीने में एक बार तो भी सेल्फ परीक्षण करना चाहिए। और फिर कुछ लगा ऐसे कि हार्ड होता है, कुछ गठे जैसी लग रही है, तो डॉक्टर से तुरंत सलाह लेना चाहिए। और ब्रेस्ट कैंसर फर्स्ट सेकेंड स्टेज में तो बहुत ही अच्छा हो जाता है।
0: और इसके लिए एक तकनीक भी इसकी जांच के लिए उपलब्ध है ना, मेमोग्राफी।
1: मेमोग्राफी कर,
0: तो
1: मेमोग्राफी, सोनोग्राफी, FNAC, नीडल बायोप्सी।
0: लेकिन महिलाएं डरती हैं इस तकनीक से?
1: महिलाएं डरती नहीं है, महिलाएं वो करना ही पड़ता है, वो जरूरी है, डरने का ये नहीं है। महिलाएं कभी डर गई तो बढ़ जाएगा, थर्ड फोर्थ स्टेज में कुछ नहीं होता है।
0: और पीसीओडी में मूड स्विंग बहुत
1: होता है,
0: तो इसका क्या इलाज है मूड स्विंग का, कि अचानक किसी महिला को देखा है अचानक चीखने चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, अचानक बिल्कुल शांत,
1: मेंटल स्ट्रेस,
0: तो इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है?
1: उसका डाइट से, डाइट एकदम मसालेदार, बहुत चटपटा, बहुत बाहर का, अंदर से पूरा हीट बढ़ गया ऐसा है, वो इसका इलाज भी मेडिटेशन है, शांत रहना है
0: जी,
1: एक्सेप्टेंस करना है, और जो मैनेजमेंट रहता है स्ट्रेस मैनेजमेंट वो आना चाहिए
0: जी,
1: अच्छे से किताब पढ़ो, अच्छे से थोड़ा माइंड डाइवर्ट करो, फोकस करो करियर पे, जो चीज तुमको बुरी लगती है उसको थोड़ा सा अवॉइड करो, जो तुमको थोड़ा सा अच्छा लगता है हॉबीज से कुछ उस पे ध्यान दो।
0: और पीसीओडी की समस्या से निपटने के लिए और क्या सलाह देंगी आप हमारे श्रोताओं को?
1: पीसीओडी से निपटने के लिए तो फास्ट फूड बंद करो। जब पीसीओडी का पेशेंट आता है तो हम यही बोलते हैं कि फास्ट वॉक, अवॉइड फास्ट फूड बस, और नींद लो अच्छे से।
0: जी, कुछ संदेश देना चाहती हैं हमारे श्रोताओं को?
1: बस हैप्पी रहो, किसी को पीसीओडी ना हो। जो महिला योगा करती है अच्छे से खुद को माइंड फ्रेश रखती है, हैप्पी रहती है, और उनको पीसीओडी, मेनोपॉज, ये वो सभी समस्या से वो आराम से गुजर जाती है, आराम से हो जाता है सब। और जो महिलाएं नहीं, चिड़चिड़ापन ही रहता है उनका, बाकी कुछ ज़्यादा सोचती नहीं, बस चिड़चिड़ चिड़चिड़, तो ये सब जो हमारे स्टेजेस हैं महिला के जीवन में, मेनार्के है, जैसे पेरीमेनोपॉज है, मेनोपॉज है, अभी ये पीसीओडी आ गया, तो इससे वो नहीं जूझती है, उनको तकलीफ होती है इससे सब
0: जी,
1: बाहर
0: जी,
1: निकलने के लिए
0: जी।
1: पॉजिटिविटी बहुत बड़ी चीज है, और लाइफ में पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचो, सभी अच्छा होता है।
0: बिल्कुल,
1: पॉजिटिव विजुलाइजेशन, पॉजिटिव मेडिटेशन, सात्विक सकारात्मक
0: जी
1: जीवन शैली।
0: डॉक्टर आशालता, आप विविध भारती के स्टूडियो में आई और इतनी सारी बातें हमारे श्रोताओं को बताई, आपका बहुत

0: बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।
2: ये थी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक, संपादन रीमा जोशी और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
2: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
4: छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
5: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खेलगांव स्थित टिकैत उमराव सिंह शूटिंग रेंज का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान खेल परिसर के रखरखाव की बदहाल स्थिति पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं और अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज रामगढ़ के पदरातु में विस्थापितों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत लंबित मुआवजे और पुनर्वास की मांग उठाई। वित्त मंत्री ने विस्थापन को राज्य की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार इस मुद्दे को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। लोहरदगा स्थित डायट चिरे में आज से पलाश बहुभाषी शिक्षा कार्यक्रम के तहत 4 दिवसीय जिला स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण का शुभारंभ हुआ। 9 जुलाई तक चलने वाले इस शिविर का उद्घाटन अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी सीमा लकड़ा ने किया। प्रशिक्षण में जिले के 50 शिक्षक भाग ले रहे हैं। गुमला में भाजपा ने आज जिला अध्यक्ष सागर उरांव के नेतृत्व में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती मनाई। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के साथ ही पिछले पखवाड़े से चल रहे स्मृति दिवस कार्यक्रमों का समापन हुआ। साहिबगंज में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के माय भारत अभियान के तहत आज डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में वक्ताओं ने डॉ. मुखर्जी को महान राष्ट्र नायक बताते हुए युवाओं से उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया। और लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीणा और पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर ने आज परिसदन के समीप नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम और आधुनिक जिम का संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। उपायुक्त ने शेष कार्यों को समय पर पूरा करने और परिसर के नियमित साफ सफाई के निर्देश दिए। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ये दुनिया, ये खंजर वाली दुनिया, ये पीठ फेरते ही हमला करने वाली दुनिया, उफ ये दुनिया, उफ इस दुनिया के धोखे।

कभी-कभी यूं लगता है जैसे हम इस दुनिया का हिस्सा नहीं हैं, जैसे अनगिनत अनजान चेहरों वाली इस भीड़ भरी दुनिया में हम एक अजनबी हैं, एक अजनबी जिसे हर कोई धक्का मार रहा है, एक अजनबी जो इस संगदिल दुनिया में तलाश रहा है अपना ठौर। कभी

कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं और ये तेज हवाएं अपने साथ कुछ चीजें उड़ा कर ले जाती हैं, वो चीजें जिन्हें आप दिलो जान से चाहते हैं। तेज हवाएं खतरनाक हो सकती हैं, कभी कभी तेज हवाएं चलती हैं।

कहते हैं कि इंसान का चेहरा सब कुछ बयान करता है। कितने इंच की है सामने वाले की मुस्कान, वो आईना बन जाती है उसके दिल का। मुस्कान ही नहीं, आंसू भी बयां करते हैं दिल की हालत का।

शाम के सुरमई आसमान पर तुम्हारा ख्याल जैसे डूबता हुआ सूरज। इस ख्याल को भी सूरज की तरह डूब जाना है, शाम के इस सुरमई आसमान पर आखिरकार अंधेरा छा जाना है। शाम का ये सुरमई आसमान, अंधेरे में डूबा हमारा दिल है।

0: आज के छाया गीत में थे मोहम्मद रफी के चंद उदास नगमे, फिल्मों के नाम
1: आपके पहलू में आकर रो दिए आपके,
0: मीरा साया, राजा मेहंदी अली खां, मदन मोहन।

0: दो बदन, शकील बदायूनी, रवि।
1: ये आंसू मेरे दिल की जुबान है।
0: हमराही हसरत जयपुरी, शंकर जयकिशन।
1: हुई शाम का ख्याल आ गया।
0: मेरी हमदम मेरे दोस्त आनंद बख्शी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
2: हमारे श्रोता सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी देर में।

आइए अब सबसे पहले एक नज़र डालते हैं सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आपसे थोड़ी ही देर बाद यानी कि 5:35 पर आप सुनिएगा महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। साथ ही आप 6:02 पर सुन सकेंगे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे हरी खाद के प्रकार और उसकी खेती, श्री विधि से धन की खेती। इस विषय पर हम इसी कार्यक्रम में चर्चा सुनेंगे और आप आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई एक भेंट वार्ता भी सुनेंगे। विषय होगा मुर्गियों की देखभाल और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा आप सुन सकेंगे शाम 6:30 पर। इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो हम आपसे बातें करेंगे, चर्चा का विषय होगा मछली पालन हेतु तालाब की तैयारी। आज की बात में हम आपसे बातें करेंगे अंतर्वर्ती खेती से लाभ और इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता, जो कि विषय होगा मोटे अनाजों में शामिल फसलें और उसकी वैज्ञानिक खेती। इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। आज के नसीहत में हम आपसे बातें करेंगे गेहूं में कीट प्रबंध, आज का मौसम और आज का बाजार भाव आप इसी कार्यक्रम के तहत सुन सकेंगे। 7:15 का समय होगा प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद का और 7:45 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी। इस कार्यक्रम में आज हम आपको भेंट वार्ता सुनवाएंगे डॉक्टर अविनाश कुमार झा से ली गई, जो कि रांची के हैं और इनसे बातचीत करेंगे संजीव कुमार लाल और विषय होगा खट्टी डकार भी बीमारी का लक्षण। फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से 8:00 और 10:00 हम फिर से एक बार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनवाएंगे रजनीगंधा। और हर रोज की तरह सभा की समाप्ति होगी रात्रि 11:10 पर। अभी आप सुन रहे थे आज सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है।

0: इस गीत के बाद बहनों अब हम आइए सुनते हैं जयपूर्णा विश्वकर्मा की वार्ता। विषय है मानव सभ्यता का नया अध्याय, कृत्रिम बुद्धिमता।
1: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI मानव सभ्यता का नया अध्याय। प्रस्तावना। मानव जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। आदिकाल से ही मनुष्य ने अपने जीवन को सरल, सुरक्षित और उन्नत बनाने के लिए नए नए आविष्कार किए हैं। कभी पत्थरों के औजारों का निर्माण हुआ, फिर पहिए का आविष्कार हुआ, उसके बाद बिजली, टेलीफोन, कंप्यूटर और इंटरनेट जैसे महान आविष्कारों ने संसार को बदल दिया। आज मानव जिस युग में जी रहा है वह तकनीक और डिजिटल क्रांति का युग है। इस आधुनिक युग की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण और चर्चित तकनीक है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। कृत्रिम बुद्धिमत्ता केवल एक तकनीक नहीं बल्कि मानव सोच का विस्तार है। यह ऐसी प्रणाली है जिसमें मशीनों और कंप्यूटरों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वे मनुष्य की तरह सोच सके, सीख सके, निर्णय ले सके और समस्याओं का समाधान कर सके। आज AI ने मानव जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग, व्यापार, न्याय, सुरक्षा, बैंकिंग, परिवहन, मनोरंजन और संचार, हर क्षेत्र में AI का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। कुछ लोग AI को मानव जीवन के लिए वरदान मानते हैं क्योंकि इसने जीवन को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। वहीं कुछ लोग इसे चुनौती और खतरे के रूप में देखते हैं क्योंकि यह मानव रोजगार, गोपनीयता और सामाजिक संरचना पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। इसलिए AI के लाभ और हानि दोनों समझना अत्यंत आवश्यक है। आज संसार डिजिटल युग से आगे बढ़ AI युग में प्रवेश कर चुका है। आने वाला समय में यह तकनीक मानव जीवन को और अधिक प्रभावित करेगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम AI को केवल तकनीक के रूप में न देखें बल्कि उसे सामाजिक, नैतिक, आर्थिक और मानवीय प्रभावों को भी समझें। AI क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दो शब्दों से मिलकर बना है। आर्टिफिशियल अर्थात कृत्रिम या मानव द्वारा निर्मित और इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धिमत्ता अर्थात ऐसी कृत्रिम प्रणाली जो बुद्धिमानी से कार्य कर सके और उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब मशीनें मानव की तरह सोचने, समझने, सीखने और निर्णय लेने लगें तो ये उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहा जाता है। AI का उद्देश्य ऐसी मशीनों और कंप्यूटर प्रणालियों का निर्माण करना है जो मानव मस्तिष्क की तरह कार्य कर सके। ये मशीनें अनुभवों से सीखती है, डेटा का विश्लेषण करती है और समय के साथ अपने कार्यों में सुधार करती जाती है। उदाहरण के रूप में मोबाइल का वॉइस असिस्टेंट, गूगल मैप, ऑनलाइन चैटबॉट, स्वचालित कारें, रोबोट, मेडिकल जांच प्रणाली, सोशल मीडिया, ऑनलाइन ट्रांसलेशन, डिजिटल बैंकिंग, सुरक्षा प्रणाली इत्यादि AI के उदाहरण हैं। AI का इतिहास। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का विचार नया नहीं है। प्राचीन काल में भी मनुष्य ऐसी मशीनों की कल्पना करता था जो स्वयं कार्य कर सके, परंतु आधुनिक AI की शुरुआत 20वीं शताब्दी में हुई। प्रारंभिक विकास 1950 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक एलन टूरिंग ने यह प्रश्न उठाया कि क्या मशीनें सोच सकती है। उन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट प्रस्तुत किया जिसके माध्यम से यह जांचा जाता है कि कोई मशीन मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदर्शित कर सकती है या नहीं। 1956 में अमेरिका के डार्टमाउथ सम्मेलन में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द का प्रयोग किया गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने ऐसी मशीनों के निर्माण पर कार्य शुरू किया जो स्वयं सीख सके। आधुनिक युग में एआई, इंटरनेट, बड़े डेटा, तेज कंप्यूटर और मशीनी लर्निंग तकनीक के विकास में एआई को नई गति दी। आज एआई केवल प्रयोगशालाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के मोबाइल फोन और दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। एआई के प्रमुख प्रकार। नैरो एआई, सीमित एआई, इसे केवल विशेष कार्य करने के लिए विकसित किया जाता है, जैसे गूगल असिस्टेंट, चैटबॉट, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। आज अधिकांश एआई इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा, जनरल एआई। तीसरा, सुपर एआई। जनरल एआई यह ऐसी बुद्धिमत्ता होगी जो मानव की हर तरह हर प्रकार का कार्य कर सके। वर्तमान में यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। सुपर एआई यह भविष्य की कल्पना है जिसमें मशीनें मानव से भी अधिक बुद्धिमान हो सकती हैं। इस विषय पर वैज्ञानिक और दार्शनिक लगातार चर्चा कर रहे हैं। एआई वर्तमान समय में कैसे उपयोग हो

क्लासरूम, भाषा अनुवाद, परीक्षा प्रणाली इत्यादि। चिकित्सा के क्षेत्र में AI, चिकित्सा विज्ञान AI मानव जीवन के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है, जैसे रोग पहचान, रोबोटिक सर्जरी, दवा निर्माण, स्वास्थ्य निगरानी इत्यादि। न्याय और कानून के क्षेत्र में AI, आज AI कानून और न्याय व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कानूनी रिसर्च, ड्राफ्टिंग, न्यायिक विश्लेषण इत्यादि। कृषि के क्षेत्र में AI, भारत जैसे कृषि प्रधान देश में AI किसानों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, जैसे मौसम की जानकारी, फसल रोग पहचान, स्मार्ट सिंचाई इत्यादि। व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में AI व्यापारिक क्षेत्र में अत्यंत प्रभावशाली बन चुका है, जैसे ग्राहक सेवा, ऑनलाइन शॉपिंग, उत्पादन प्रणाली इत्यादि। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में आज बैंकिंग प्रणाली पूरी तरह से डिजिटल होती जा रही है। ऑनलाइन लेन देन सुरक्षा, डिजिटल भुगतान, निवेश विश्लेषण इत्यादि। परिवहन और सुरक्षा, ट्रैफिक नियंत्रण, ड्राइवरलेस कार, सुरक्षा प्रणाली इत्यादि। मनोरंजन और मीडिया के क्षेत्र में AI मनोरंजन उद्योग में भी क्रांति ला रहा है। फोटो और वीडियो एडिटिंग, संगीत निर्माण, फिल्म विशेष प्रभाव, सोशल मीडिया, यूट्यूब सुझाव प्रणाली, ये सब AI के माध्यम से संचालित होते रहे हैं। मानव जीवन पर AI का सकारात्मक प्रभाव, समय की बचत, कार्य की सटीकता, जीवन को सरल बनाना, नई खोज का विकास, दिव्यांग लोगों के लिए सहायता। AI के नकारात्मक प्रभाव, AI के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे बेरोजगारी, मानसिक निर्भरता, साइबर अपराध, गोपनीयता का संकट, मानवीय संवेदनाओं की कमी। AI और नैतिक चुनौतियाँ, AI के विकास के साथ कई नैतिक प्रश्न भी उठ रहे हैं। क्या मशीनें मानव पर शासन करेंगी? क्या AI मानव स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा? क्या AI का दुरुपयोग युद्ध और अपराध में होगा? क्या मशीनें मानव निर्णय को नियंत्रित करेंगी? इन प्रश्नों का समाधान केवल तकनीक से नहीं बल्कि नैतिकता और कानून से संभव है। AI और रोजगार, यह सत्य है कि कुछ पारंपरिक नौकरियां समाप्त हो सकती हैं, परंतु AI नए रोजगार भी उत्पन्न कर रहा है। डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, AI ट्रेनर, डिजिटल विश्लेषक। इसलिए आवश्यक है कि लोग नई तकनीकी सीखें और स्वयं को आधुनिक युग के अनुसार विकसित करें। भारत में AI का विकास, भारत तेजी से AI तकनीकी की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान, स्मार्ट सिटी परियोजना, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल न्याय प्रणाली, स्वास्थ्य तकनीकी, इन सभी क्षेत्रों में AI का उपयोग बढ़ रहा है। भारत के युग AI के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। क्या AI मानव का स्थान ले सकता है? यह प्रश्न आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। AI मानव की तरह गणना और विश्लेषण कर सकता है, परंतु प्रेम, करुणा, संवेदना, नैतिकता, रचनात्मकता जैसी मानवीय विशेषताओं का पूर्ण रूप से स्थान नहीं ले सकता। मशीनें आदेश का पालन कर सकती हैं, लेकिन मानव हृदय की भावनाओं को नहीं समझ सकती। इसीलिए AI मानव का सहयोगी हो सकता है, विकल्प नहीं। भविष्य में AI की भूमिका, भविष्य में AI और अधिक शक्तिशाली होगा। स्मार्ट शहर, रोबोटिक अस्पताल, स्वचालित वाहन, डिजिटल न्यायालय, वर्चुअल शिक्षक, अंतरिक्ष अनुसंधान जैसे क्षेत्र में पूरी तरह AI आधारित हो सकते हैं। यदि AI का उपयोग मानव कल्याण के लिए किया जाए तो यह विश्व की नई दिशा दे सकता है। AI और मानवता, तकनीक का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। यदि AI का उपयोग केवल लाभ और शक्ति के लिए किया जाएगा तो यह समाज में असमानता

0: और संकट पैदा कर सकता है। हमें यह समझना होगा कि तकनीक तभी उपयोगी है जब वह मानवता के की सेवा करे। निष्कर्ष: कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधुनिक युग की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है। इसने मानव जीवन को नई गति, नई दिशा और नई संभावनाएं दी है। आज AI शिक्षा, चिकित्सा, न्याय, कृषि, व्यापार और विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत परिवर्तन ला रहा है। आज AI मानव जीवन को सरल और आधुनिक बना रहा है, वहीं इसके दुरुपयोग से सावधान रहना भी आवश्यक है। बेरोजगारी, साइबर अपराध, गोपनीयता का संकट और नैतिक चुनौतियां इसके नकारात्मक पक्ष हैं। इसीलिए आवश्यकता है इस बात की कि मानव विवेक, नैतिकता और संवेदनशीलता के साथ AI का उपयोग करें। अंत में यही कहा जा सकता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव की बुद्धि का विस्तार है, उसका प्रतिस्थापन नहीं। यदि मानव सही दिशा में AI का उपयोग करे तो आने वाला भविष्य ज्ञान, विकास, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण हो सकता है।
1: बहनों, अभी आपने सुना जयपूर्णा विश्वकर्मा की वार्ता, विषय था मानव सभ्यता का नया अध्याय, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। और अब आइए हम बातें करते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन्म दिवस पर। जी हाँ बहनों, हम आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म दिवस आज है, जो है सो क्योंकि आज ही के दिन हर साल 6 जून को मनाया जाता है। हम आपको बता दें बहनों कि वे एक प्रख्यात शिक्षाविद एवं प्रमुख राष्ट्रवादी और भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक पूर्ववर्ती संगठन के संस्थापक थे। उनका जन्म आज ही के दिन यानी कि 6 जून 1901 को कोलकाता में हुआ था। एक अत्यंत निपुण शिक्षाविद के रूप में वे 33 वर्ष की आयु में कोलकाता की विश्वविद्यालय के सबसे युवा कुलपति बने और डॉक्टर मुखर्जी को जम्मू और कश्मीर के भारत के पूर्ण एकीकरण के लिए किए गए सर्वोच्च बलिदान के लिए व्यापक रूप से याद किया जाता है। और उन्होंने ही प्रसिद्ध नारा दिया था, एक देश में दो विचार विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। बहनों, और जो है राष्ट्रीय एकता के लिए उनकी जो महत्वपूर्ण जानकारी है, हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय एकता के लिए उनके आजीवन संघर्ष और भारत के पहले उद्योग मंत्री के रूप में उनकी भूमिका को सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 6 जून को मनाया जाता है। और यह दिवस जो है प्रतिवर्ष 23 जून को मनाया जाता है, यानी कि शहादत दिवस, बलिदान दिवस उनका 23 जून को मनाया जाता है, जो उस दिन की याद दिलाता है जब 1953 में बिना आधिकारिक अनुमति के जम्मू और कश्मीर में प्रवेश करने के बाद श्रीनगर में उन्हें हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों, ये तो बातें हुई आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जन्म दिवस पर। और अब जो है हमें घर आंगन कार्यक्रम से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

आप सुन रहे थे महिला बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। हमारा अगला प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से होगा, माफ कीजिएगा, रांची केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की अद्यतन कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं को गति देने और खेल तथा सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने रांची सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई की। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि रिम्स 2 परियोजना की भूमि और बोकारो के वैध कारों में नियम उल्लंघन के मामलों पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने आज धनबाद में वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने और अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के कड़े निर्देश दिए। पलामू स्थित चैनपुर के रामपुर गोलीकांड में सिकंदर चौधरी की हत्या के खिलाफ आज समाहरणालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच और बाकी आरोपियों के अविलंब गिरफ्तारी की मांग की। सरायकेला के सिद्धू कानू पार्क में आज से झारखंड आंदोलनकारियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। आंदोलनकारी पिछले 7 महीनों से लंबित सम्मान राशि के भुगतान की मांग कर रहे हैं। और इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब लीजिए प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बारी।

ग्रामीणों को संबोधित खेतीबाड़ी के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सभी को कल्याण कुमार का नमस्कार जोहर। श्रोताओं, आज के इस खेतीबाड़ी कार्यक्रम के तहत चर्चा में आप जानेंगे हरी खाद के प्रकार एवं उसकी खेती, साथ ही साथ आप सुनेंगे श्री विधि से धान की खेती। और इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे आदर्श ग्राम पदाधिकारी प्लामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार से ली गई भेंटवार्ता। विषय है मुर्गियों की देखभाल। इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हुए आइए जानते हैं हरी खाद के प्रकार और उसकी खेती। जी हाँ श्रोताओं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हरी खाद हमारे फसल के लिए, हमारे मिट्टी के लिए, हमारे उर्वरा शक्ति के लिए काफ़ी आवश्यक फसल जानी जाती है, क्योंकि हरी खाद एक ऐसी फसल होती है जिसे हम हरी अवस्था में ही खेत में पलटकर मिट्टी में मिला देते हैं, जिसका उद्देश्य होता है मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, जैविक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करना और फसल के उत्पादन को और बेहतर बनाना। हरी खाद प्राकृतिक एवं सस्ती विधि भी है। इसमें रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता जो है वो प्रायः कम हो जाती है और यह पर्यावरण के भी अनुकूल खेती मानी जाती है। श्रोताओं, हरी खाद का यदि महत्व की हम बात करें तो हरी खाद में जैविक पदार्थ की मात्रा जो है वह मिट्टी में बढ़ती चली जाती है, साथ ही साथ वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है, तो कहीं ना कहीं मिट्टी में भी नाइट्रोजन की उपलब्धता जो है वो बढ़ती चलती है। मिट्टी में जलधारण की क्षमता बढ़ती है, मिट्टी के संरचना में भी सुधार होता है। श्रोताओं, साथ ही साथ लाभकारी जो सूक्ष्म जीव जो हमारे मिट्टी में उपलब्ध रहते हैं उनकी भी संख्या बढ़ती चली जाती है, और जो खरपतवार के लिए हमारे जो फसल पर इसकी जो पैदावार पर प्रभाव पड़ता है, तो ये भी देखा गया है कि जब हम हरी खाद का उपयोग करते हैं तो खरपतवार को नियंत्रण करने में भी ये काफ़ी सहायक साबित होती है। और जो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है श्रोताओं कि खेती में जो लागत जब हम रासायनिक उर्वरकों का करते हैं तो लागत बढ़ जाती है, तो यहाँ पर होता क्या होता है कि हम रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता ही यहाँ पर कम हो जाती है, तो निश्चित रूप से फसल पर जो लागत है वो हमारी कम हो जाती है, मिट्टी का कटाव भी कम होता है और फसलों के उत्पादन और वृद्धि दोनों में बढ़ोतरी होती है। तो इस प्रकार से देखा जा सकता हो तो हरी खाद का एक विशेष महत्व है। ये हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे मिट्टी के लिए, हमारे फसल के लिए और हमारी आर्थिक स्थिति के लिए भी काफ़ी महत्व रखती है। अब इसके हम कुछ प्रकार की बात करें तो श्रोताओं, इसमें जो प्रमुख है ढेंचा, जो कि हमारे देश में इसका जो है सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, क्योंकि तो इसकी वृद्धि तेज होती है और 45 से 50 दिन में ही एक खेत में पलटने के योग्य भी हो जाती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपलब्ध रहता है और सभी प्रकार के मिट्टी में इसे उगाया जा सकता है। तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि ढेंचा जो है वो किसी भी प्रकार के मिट्टी में लगाया जाए तो इससे भरपूर लाभ हम ले सकते हैं। साथ ही साथ हम बात करते हैं सने की, तो सने भी एक दलहनी फसल के रूप में, हरी खाद के रूप में, हरी खाद फसल के रूप में यह जानी जाती है और यह भी कम समय में हरा जैविक पदार्थ तैयार करती है। इसकी जड़ें मिट्टी को भुरभुरी बनाती है और नाइट्रोजन की पूर्ति करती है। तो श्रोताओं, कहने का तात्पर्य है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो बढ़ती चली जाती है। बात करते हैं मूंग की, तो मूंग की फसल जो है वो दाल उत्पादन के साथ साथ हरी खाद भी हम इसे प्राप्त करते हैं। इसे फूल आने से पहले ही खेत में पलट दिया जाता है तो मिट्टी की उर्वरकता में काफ़ी बड़े स्तर पर वृद्धि हो जाती है। बात करते हैं उड़द की, तो ये भी एक दलहनी फसल है श्रोताओं, जो कि नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में ये काफ़ी कारगर साबित होती है और हरी खाद के रूप में प्रयोग करने से मिट्टी की गुणवत्ता में भी श्रोताओं सुधार होता है। बात करते हैं लोबिया, जिसे हम चवला कहते हैं श्रोताओं। लोबिया कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी सफलतापूर्वक हम इसे लगा सकते हैं, उगा सकते हैं और इसमें जैविक पदार्थ और नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में उपलब्ध रहती है। बरसीम की हम बात करते हैं श्रोताओं, तो इसका भी उपयोग हरी खाद के रूप में किया जाता है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के साथ साथ पशु के लिए भी एक उत्तम चारा के रूप में जाना जाता है।
श्रोताओं, हम बात करते हैं हरी खाद की खेती की विधि के बारे में कि किस तरीके से हम अपने खेतों में हरी खाद की जो फसल है उसकी बुआई करें, लगाएं और उसका भरपूर लाभ लें। श्रोताओं, इसके लिए है कि खेत की एक से दो बार जुताई कर दे, यानी कि मिट्टी को भुरभुरी कर दे और फिर मिट्टी को समतल कर दे जिससे कि पानी का उचित प्रबंधन हो सके। और बुआई का जो समय होता है श्रोताओं, यदि हम ढेचा की बात करते हैं तो मई से जुलाई के बीच इसे आप आसानी से कर सकते हैं। मानसून के शुरुआत में हरी खाद की खेती

सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। ढेचा में सोता हूँ प्रति हेक्टेयर 25 से 30 किलोग्राम बीज की दर होनी चाहिए, और मूंग में 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और उड़द में भी 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की मात्रा जो है वो पर्याप्त मानी जाती है। श्रोताओं, इसकी जो बीजों की जो बुआई है, इसे तो आप छिड़काव या कतार में भी कर सकते हैं। कतार से कतार की जब दूरी रखेंगे तो 25 से 30 सेंटीमीटर रखें और बीजों को 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई पर ही बोएं। यदि वर्षा ना हो तो अतिरिक्त सिंचाई की जरूरत पड़ती है, अगर वर्षा हो जाती है तो फिर सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। तो वर्षा कम यदि होती है श्रोताओं, तो 1 से 2 हल्की सिंचाई कर दें। देखा जाता है श्रोताओं की प्रारंभिक अवस्था में खरपतवार यदि निकले हो तो उसे निकाल दें, जिससे कि जो हरी खाद की जो फसल है उसकी अच्छी बढ़वार और इसका विकास हो सके श्रोताओं। अब बात हम करते हैं श्रोताओं कि जब हम हरी खाद की जो फसल है जब तैयार हो जाती है तो उसे हम अपने खेतों में किस समय कब पलटें। जो श्रोताओं, हरी खाद की जो फसल है प्रायः 45 से 50 दिनों की अवस्था में यह तैयार मानी जाती है। तैयार का तात्पर्य श्रोताओं कि इसमें फूल आने से पहले, जो श्रोताओं कि हरी खाद की फसल में फूल ना आए, फूल आने की स्थिति में हो तो उसी समय मिट्टी में पलटना जरूरी माना जाता है, क्योंकि इस समय पौधों में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की जो मात्रा जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। पलटने के पश्चात खेत में हल्की सिंचाई कर दें, जिससे कि पौधे जल्दी सड़कर मिट्टी में मिल जाए, और 15 दिन से 20 दिनों के पश्चात पुनः मुख्य फसल की बुआई आप इसी खेत में कर सकते हैं। श्रोताओं, हरी खाद के लाभ के बारे में हम बात करें तो जब हम हरी खाद को अपने मिट्टी में पलटते हैं तो करीबन 40 से 80 किलोग्राम तक नाइट्रोजन की उपलब्धता जो है प्रति हेक्टेयर मिट्टी में उपलब्ध हो जाती है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी काफ़ी लंबे समय तक कारगर बनी रहती है। रासायनिक उर्वरकों की जो लागत है वो भी प्रायः श्रोताओं कम हो जाती है। मिट्टी में केचुआ या फिर जो भी लाभकारी जीवाणु हैं उनकी भी संख्या श्रोताओं काफ़ी बढ़ती चली जाती है। धान हो, गेहूं हो, चना, गन्ना हो या फिर सब्जी की खेती हो तो आप देखेंगे कि उसमें पैदावार जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से हो रही है, और मिट्टी की जलधारण क्षमता भी श्रोताओं काफ़ी बढ़ जाती है और सूखे का प्रभाव भी कम होता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इसमें हम प्राकृतिक चीज़ों का ही उपयोग कर रहे हैं तो ये हमारे पर्यावरण के लिए भी काफ़ी लाभदायक मानी जाती है। हाँ, थोड़ी सी सावधानी रखनी है श्रोताओं कि हरी खाद की फसल को ज़्यादा परिपक्व ना होने दें। खेत में पलटने के पश्चात पर्याप्त मात्रा में नमी का रहना जरूरी है। स्वस्थ और प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। दलहनी फसल में आवश्यकता अनुसार राइजोबियम कल्चर का ही उपयोग करें और मुख्य फसल की बुआई 15 से 20 दिन के पश्चात ही करें, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि हरी खाद पूरे तरीके से सड़ गई हो। जैसा श्रोताओं, यदि हम इस तरीके से हरी खाद की प्रक्रिया को अपनाते हैं तो यह काफ़ी प्रभावी भी होती है, सस्ती भी होती है और पर्यावरण के अनुकूल भी एक तकनीक है। ढेचा हो, सने हो, मूंग, उड़द और लोबिया, इस प्रकार की जो भी दलहनी फसल है मिट्टी में नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की मात्रा जो है वह बढ़ाती है। इससे मिट्टी में उर्वरा शक्ति में सुधार होता है और नियमित रूप से हरी खाद का उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों पर भी निर्भरता है श्रोताओं वह कम होते चली जाती है। उत्पादन की लागत घट जाती है और फसल की गुणवत्ता और उपज दोनों में श्रोताओं बढ़ोतरी होती है। इसलिए यदि देखा जाए तो टिकाऊ और लाभकारी खेती के लिए हरी खाद का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना श्रोताओं काफ़ी लाभदायक माना जाता है। तो श्रोताओं, हरी खाद की फसल को आप अपने खेतों में लगाएं और 45 से 50 दिनों के बाद पलटकर मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएं। तो श्रोताओं, ये तो थी बातें हरी खाद की एक प्रभावी और सस्ती तकनीक के बारे में, और अब इसी के साथ श्रोताओं आइए सुनते हैं एक भेंट वार्ता।

0: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। ग्रामीण भाइयों, कार्यक्रम में आज हम लोग बातें करेंगे स्वरोजगार की, और स्वरोजगार में बातें होंगी मुर्गी पालन की। विशेषकर हमारे बहुत से ग्रामीण भाई बहन मुर्गी पालन करते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तकनीकियां नहीं अपनाते हुए वे देख रेख नहीं कर पाते, जिससे लगाई गई पूंजी का कई गुना लाभ उन्हें प्राप्त नहीं हो पाता। अतः मुर्गियों की देखभाल किस प्रकार करनी चाहिए जिससे बेहतर मुनाफा हमें प्राप्त हो सके, मुर्गियों के की जो उत्पादन और क्षमता है उसमें बढ़ोतरी हो सके, इन तमाम बातों से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के आदर्श ग्राम पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। स्वागत है आपका सर कार्यक्रम में। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: हमारे ग्रामीण भाई बहन किस प्रकार मुर्गियां की देख रेख करें सर, किस प्रकार उनकी उत्पादन क्षमता है जो उसमें बढ़ोतरी लाएं, इन तमाम बातों से संबंधित जानकारियां हमारे किसान भाइयों को दी जाए।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा कि कैसे किसान भाई मुर्गी पालन कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से वैज्ञानिक रूप से करें कि उनकी आजीविका बेहतर हो सके। जब उनका उत्पादन अधिक होगा तभी उनकी आजीविका बेहतर हो सकती है। इस दिशा में मैं किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी मुर्गी पालक हैं, अगर मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले उनके आवास पर ध्यान देना चाहिए। जब भी मुर्गियों के लिए आवास बनाने लगें, मुर्गी घर बनाना शुरू करें, तो आप उसे ये देख लें कि वो रोड्स के नज़दीक है कि नहीं। दूसरा, उसमें नीचे बरसात में ज़मीन में जो फर्श है वो उसमें सीलन नहीं हो, थोड़ी सी ऊँची जगह पर बनाएँ। दूसरा, ये ध्यान रखें कि बरसात के दिनों में छज्जा होता है वो 4 फीट से 9 फीट रखें, ताकि बरसात का जो पानी है वो मुर्गी घर के अंदर ना जाए। और ध्यान रखना चाहिए कि बीच में जो है उसकी ऊंचाई 14 फीट के आसपास रखें, और साइड वाला दीवार है उसको 9 फीट रखें। और जब भी आप शेड बना रहे हों तो मुर्गियों के, एक मुर्गी के लिए कम से कम 1 से 1.5 वर्ग फीट की ज़रूरत होती है। तो अगर मान लीजिए आपको 400 चूजे रखने हैं तो आपको 600 स्क्वायर फीट का शेड होना चाहिए। तो इस शेड में आप 30 फीट लंबा जो है पूरब से पश्चिम की ओर बना सकते हैं, और 20 फीट उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ा करेंगे, तो इससे 600 स्क्वायर फीट का आपका मुर्गी फार्म बन जाएगा, जिसमें कि आप 400 अंडे देने वाली मुर्गी, जिसको कि अंडे देने वाली मुर्गी को हम लोग लेयर बर्ड कहते हैं
0: जी।
1: तो आप इस 400 अंडे देने वाली के लिए आप 600 स्क्वायर फीट का घर बनाएंगे। लेकिन इसी तरह से कोई हमारे मुर्गी पालक भाई चाहते हैं कि नहीं, हम अंडे पालन करने वाली मुर्गी नहीं रखें बल्कि इसके बजाय मांस वाली मुर्गियां रखें, तो वो 500 चूजे के लिए प्रति 1 स्क्वायर फीट के हिसाब से 500 चूजों के लिए 500 स्क्वायर फीट का घर बनाना होगा। तो उसके लिए वो 20 फीट चौड़ा और 25 फीट लंबा पूर्व से पश्चिम की ओर 500 स्क्वायर फीट का शेड बनाएं, तो ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। ये जब ऊंचाई अधिक रखने से क्या होता है, बीच में 14 फीट रखने और साइड वाले दीवार 9 फीट रखेंगे, मुर्गी घर के अंदर गर्मी बहुत पैदा नहीं हुई गर्मी के दिनों में। और जाड़े के दिनों में आप उसमें चूंकि जाली लगाए हुए हैं तो उसके ऊपर प्लास्टिक देकर के हवा को रोक सकते हैं। अगर जाली आप नहीं लगाते हैं आवास में, तो चूंकि मुर्गियाँ जहाँ पर रहती हैं तो उनका लीटर है, मैंने जो हम हिंदी में कह सकते हैं उसका पेशाब और पैखाना दोनों एक साथ आता है, उसमें अमोनिया की बहुत मात्रा होती है, और अगर आप जाली नहीं देंगे तो ये अमोनिया की मात्रा अधिक होने से, ये भारी गैस है, और उस स्थिति में मुर्गियों को बार बार अमोनिया लेने के कारण ऑक्सीजन कम होने लगती है, तो मुर्गियाँ हाँफने लगती हैं। तो ऐसे में मुर्गियाँ जब हाँफने लगेंगी तो उनका उत्पादन घट जाएगा। तो किसान भाइयों को आवास बनाते समय इतना जरूर सुनिश्चित कर लें कि जहाँ भी आवास है वहाँ पर बिजली, पानी, सड़क और सुरक्षा और बाजार की कितनी दूरी है, अगर इतना है तो आपका आवास सही है। इसके बाद दूसरी बात आती है कि आप अगर मुर्गी पालन करने चल रहे हैं तो फिर हम हैं कि चूजा, तो ये चूजे दो तरह के होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि आप मांस के लिए मुर्गी पाल रहे हैं या अंडे देने के लिए। और तीसरा आपका विकल्प हो सकता है कि न मांस के लिए न अंडे के लिए बल्कि बीज का आप कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप पहले हम बात करें मांस वाली मुर्गी। अभी मांस वाली मुर्गियां चूंकि 25 दिन में अब 1 किलो के आसपास हो जा रही हैं और लोग 35 दिनों में उसे हटा दे रहे हैं, ब्रायलर मुर्गी कर रहे हैं तो ब्रायलर का चूजा खरीदेंगे। इसी तरह से दूसरा हुआ अंडे देने वाली मुर्गियां, तो कुछ जो अंडे देने वाली मुर्गियां हैं वो अभी सलोनी वगैरह हैं जो कि आपको 280 अंडे प्रतिवर्ष देंगी। ये मुर्गियाँ 4 महीने के बाद, मतलब 5 महीने के आसपास ये अंडे देना शुरू कर देती हैं, तो आपको अगले 1.5 साल तक अच्छे अंडे देती हैं, इसके बाद इनके अंडे के उत्पादन घटने लगती है, तो इन दोनों में आप डिसाइड कर लेंगे। तीसरा जो हमने कहा वो है कि आप वनराजा वनरानी कैरी निर्भीक ये किस्म की जो आ रही हैं नस्लें, ये आपको लगभग 150 से लेकर 200 तक अंडे साल में देंगी। इन्हें आप थोड़ा बहुत आंगन में चरा भी सकते हैं और उससे इनको रख सकते हैं। अब आती है बात तीसरा, मुर्गियों को हम टीकाकरण कैसे करेंगे। तो टीकाकरण में है कि आपका मेरिस डिजीज की टीका जो है, जो बाजार से आप चूजा खरीदेंगे, वो एक दिन में ही वहाँ से कंपनी दे करके भेजती है।
0: अच्छा।
1: तो मेरिक्स बीमारी का टीका आपको लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है रानीखेत। तो रानीखेत का टीका जो है, सभी मुर्गियों को 3 से 4 दिन के अंदर आँख में या नाक में आपको एक एक बूंद पिला देना है, आँख या नाक में डालना है। इसके बाद आपको 21वां दिन जो है रानीखेत का, आप ये फोन हम लोग दे दिया है, अब इसके बाद हम लसोटा उसको जो है 21वां दिन पानी में घोल करके पिलाते हैं।
0: अच्छा।
1: और इसके बाद जो है मांस वाली मुर्गियां, चूंकि

0: उसमें फॉर्मलिन मिला करके भी उपचार कर सकते हैं। कुछ दवाइयाँ एंटीसेप्टिक्स आती हैं, उन्हें आप कोहरसोलिन TH नाम की, उसे आप 1 लीटर में 2 ml दवा मिला करके पूरा स्प्रे कर दीजिए दीवार पर, खिड़की पर, उसके जाली पर, ताकि वहाँ कोई और बीमारी ना हो। जब इतना हम कर लेते हैं, बायोसिक्योरिटीज कर लेते हैं, और दूसरी बात की सावधानी रखें कि जहाँ भी आप फार्म वाली मुर्गी रखे हैं वहाँ पर देसी मुर्गी ना रखें, क्योंकि देसी मुर्गियों में अगर टीकाकरण नहीं किया गया है तो वो आपके मुर्गियों को ग्रसित कर सकती हैं। जब आपके घर में चूजा आ गया है तो आप उसे आटे के साथ चूजे को पेपर बिछा दें, पेपर के ऊपर में जो है मुर्गियों को और बी कॉम्प्लेक्स का सिरप या लीवर टॉनिक का सिरप आप 1 लीटर पानी में 5 से 7 ml मिला करके जो मुर्गी का पिलाने का बर्तन है उसमें उसको दे दें। साथ में आप तुलसी के छोटे छोटे मुलायम पत्ते भी दे सकते हैं। इस तरह से जब आप एक दिन उसको, मुर्गियाँ जब भी अंडे देती हैं तो उनको 72 घंटे के बाद ही उनको भोजन देना होता है
1: जी।
0: तो आप उस 72 घंटे कंपनी के रिकमेंडेशन के हिसाब से देखने के बाद तब भोजन आप देना शुरू करें। ये भोजन देने में आपको ध्यान रखना है कि 3 तरह का मुर्गियों का भोजन होता है। एक स्टार्टर हम लोग बोलते हैं जो हम लोग पहला दिन से 10वां दिन तक देते हैं, इसके बाद ग्रोवर देते हैं 10 से 20 दिनों तक, और 20 दिनों के बाद जो है हम लोग उसको फिनिशर राशन बोलते हैं, या आप लेयर मुर्गी में कहिएगा तो लेयर राशन कहलाएगा। पहला जो हम लोग ने स्टार्टर देते हैं उसमें हमारा जो प्रोटीन का ये होता है वह लगभग 23 से 24% होता है, और प्री स्टार्टर में जो है 21 से 22% होता है, और फिनिशर में 19 से 20% प्रोटीन होता है। इसी तरह से इसमें एनर्जी जो है प्री स्टार्टर में 2900 किलो कैलोरी होगा, स्टार्टर में जो है 2950 किलो कैलोरी होगा, और फिनिशर में जो है 3000 किलो कैलोरी होता है
1: जी।
0: तो ये भोजन हो गया। इसके बाद हम जब मुर्गियों को लाते हैं तो मुर्गियां चूंकि जाड़े के दिनों में खास करके जब लाते हैं तो उन्हें मुर्गी उनके साथ नहीं होती तो उनको गर्मी चाहिए, तो इसके लिए हम लोग ब्रूडर व्यवस्था करते हैं। तो ब्रूडर में आप बल्ब जला करके देखना है आपको कि अगर आपका बल्ब का पावर सही है और 95 डिग्री फॉरेनहाइट अगर रूम का टेम्परेचर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसको आप ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि बल्ब लगाइए और ब्रूडर के घेरा बनाइए और घेरा बना करके देखिए कि अगर आपकी चूजे जो बच्चे हैं अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं इसका मतलब है कि उन्हें ठंड लग रही है, तो आप पावर बढ़ा दीजिए। और अगर लगता है कि नहीं जहाँ बल्ब जल रहा है उससे दूर दूर आपके चूजे जा रहे हैं, तो इसी स्थिति में आप बल्ब के पावर को कम कर दीजिए ताकि उनको लग रहा है कि ज़्यादा गर्मी लग रही है तो किनारे भाग रहे हैं, तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात की ये सावधानी रखने के लिए कि जाड़े के दिनों में थोड़ा पानी तो सभी दिनों सालों भर आपको साफ पानी पिलाना है, लेकिन इसका टेम्परेचर जो है वो कोशिश करिए कि 15 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में हो। गर्मी के दिनों में अगर बहुत गर्म पानी देंगे तब भी वो नहीं पिएगा, और जाड़े के दिनों में ठंडा पानी होगा तब भी नहीं पिएगा, तो इसको टेम्परेचर को निश्चित रूप से मेंटेन करने की कोशिश करें। और गर्मी के दिनों में 2 बार पानी को बदलें, और जाड़े के दिनों में 1 बार पानी का बर्तन को साफ करके बदल दिया करें। इस तरह से मुर्गियों में 7 दिन पर ही सफाई का ये किया जाता है, ऐसे ब्रॉयलर मुर्गी में तो हम लोग 1 बार ही ये करते हैं सफाई जैसो, क्योंकि हम लोग का उस फार्मूला ये है कि ब्रॉयलर मुर्गी रखे हुए हैं तो आप एक साथ ही 600 के 600 मुर्गी को बेच दीजिए और फिर नया का नया पूरा डालिए। इसको ऑल इन ऑल आउट कहता है।
1: अच्छा।
0: इससे फायदा क्या होगा कि अगर उसमें से कोई बीमारी है भी तो वो साथ बाहर जाएगी, और जो नई मुर्गी आएगी उसको हम सैनिटाइज करके करेंगे तो हमको दूसरी मुर्गियों में बीमारी नहीं फैलेगी। तो इसलिए ऑल इन ऑल आउट जो है यही बेस्ट अभी माना जा रहा है। इस तरह से किसान भाई अगर करेंगे, और दूसरी बात आती है अंडे देने वाली मुर्गी, तो आप अंडे देने वाली मुर्गी को 4 महीने के बाद आप रखते हैं तो उसमें अगर लाइट की व्यवस्था अच्छी रखते हैं, लाइट की व्यवस्था प्रकाश की व्यवस्था दोनों मुर्गियों में ज़रूरत है, क्योंकि जो ब्रॉयलर मुर्गी है अगर उसे लाइट अब 14 घंटे देंगे तभी वो भोजन करेगी और जल्दी जल्दी अपना वजन गेन करेगी बढ़ाएगी। इसी तरह से अंडे देने वाली मुर्गियों में भी अगर 14 घंटे का आप लाइट देते हैं तो उनका भोजन वो ज़्यादा लेंगे और उनके अंडे भी अच्छे आएंगे और अधिक मात्रा में उत्पादित होंगे। इसी तरह से इनमें कुछ बीमारियां हैं जैसे कोक्सीडियोसिस की बीमारी है, तो आपके इस स्थिति में अगर आपके यहाँ पतला दस्त हो रहा है और उसमें लाल पैखाना हो रहा है तो ये कोक्सीडियोसिस है, तो आप अपने डॉक्टर से जो नज़दीक में पशु चिकित्सक हैं प्रखंड में या अस्पताल में उनसे मिल करके आप एम्प्रोलियम या फिर सल्फा मेथोक्साजोल विथ टाइमोथोप्रीम की दवा आती है आप उसे दे सकते हैं। इसी तरह से अगर मुर्गियों में सर्दी होती है तो आप सिफेलेक्सिन पाउडर आता है घोल करके, या इनरोफ्लोक्सासिन का भी आता है उसे घोल करके आप मुर्गियों को पिला सकते हैं। तो ये आप

0: अपनी जानकारी किसान भाई अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय से प्राप्त कर सकते हैं।
1: जी हाँ ग्रामीण भाइयों, जी हाँ किसान भाई बहन, बातें हो रही थी मुर्गियों की देखभाल हम किस प्रकार से करें कि ताकि हम ज़्यादा उत्पादन ले सकें, मुर्गियों से अंडे ज़्यादा उत्पादित कर सकें और मालामाल हो सकें। जी हाँ किसान बंधु, और मुर्गियों की देखभाल किस प्रकार करें, किस प्रकार उत्पादन बेहतर रूप से प्राप्त करें, इन तमाम बातों पर जानकारियां साझा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में थे पलामू जिला के आदर्श ग्राम पदाधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। सर, आप कार्यक्रम में आए और हमारे ग्रामीण भाइयों को मुर्गी पालन से संबंधित जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार
2: जी। हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आदर्श ग्राम पदाधिकारी पलामू के डॉक्टर प्रमोद कुमार से लेकर भेंटवार्ता, विषय था मुर्गियों की देखभाल, और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और हमारे श्रोताओं जानते हैं श्री विधि से धान की खेती। जी हाँ श्रोताओं, श्री विधि से धान की खेती काफ़ी आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति मानी जाती है। इस तकनीक में कम बीज, कम पानी तथा कम लागत का उपयोग कर ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। इस विधि से हमारे जो किसान भाई हैं उनके आय तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ जल संरक्षण और मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में भी यह जो विधि है काफ़ी कारगर साबित होती है। इस विधि में सबसे पहले गुणवत्ता वाले जो भी होता है बीजों का चयन किया जाता है। प्रति हेक्टेयर 5 से 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त माने जाते हैं। बीजों की नर्सरी तैयार की जाती है और 8 से 15 दिनों के पश्चात स्वस्थ पौधों की रोपाई इसके अंतर्गत की जाती है। खेत की अच्छी तरीके से जुताई कर लेने के पश्चात उसे समतल बनाया जाता है और गोबर की सड़ी हुई खाद या फिर कंपोस्ट खेत में मिलाई जाती है। रोपाई के समय प्रत्येक स्थान पर केवल एक पौधा ही लगाया जाता है और पौधे के बीच 25 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर रखनी होती है। पौधों की जड़ों का इससे अच्छा विकास होता है और अच्छे अधिक कल्ले इसमें निकलते हैं। श्रोताओं, इस विधि में खेत को लगातार पानी से भरा भी नहीं रखा जाता है, आवश्यकता अनुसार सिंचाई की जाती है। इससे कहीं ना कहीं 30 से 40% तक पानी की बचत हो जाती है। खरपतवार नियंत्रण के लिए भी समय समय पर निराई और गुड़ाई की जाती है। श्रोताओं, मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है और पौधों की वृद्धि भी अच्छी होती है जब हम निराई और गुड़ाई करते हैं। श्रोताओं, श्री विधि से लाभ की अगर हम बात करें तो इसमें कम बीज की जरूरत पड़ती है, पानी की पर्याप्त बचत हो जाती है, उत्पादन की लागत कम हो जाती है, पौधों में अधिक कल्ले निकलते हैं, धान की उपज पारंपरिक विधि के तुलना में ज़्यादा मिलता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति और जैविक गतिविधियाँ जो है श्रोताओं वो बढ़ती चली जाती है और ये पर्यावरण के संरक्षण के लिए भी काफ़ी लाभकारी मानी जाती है। श्रोताओं, इसमें एक बात का ख्याल रखना है श्रोताओं कि कम आयु के स्वस्थ पौधों का ही इसमें रोपण किया जाता है। रोपाई सावधानीपूर्वक करना है और इसमें जड़ों का नुकसान ना हो इस बात का सावधानी रखना है। खेत में लगातार पानी को भी नहीं भरना है और समय समय पर निराई और गुड़ाई करना है और इसमें जैविक खादों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना लाभकारी माना जाता है। तो श्रोताओं, यदि देखा जाए तो श्री विधि धान उत्पादन की काफ़ी प्रभावी, किफ़ायती और पर्यावरण के अनुकूल अच्छी तकनीक है। इससे कम संसाधनों में ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है और हमारे किसान भाई यदि इस श्री विधि को सही ढंग से अपनाते हैं तो उनकी उत्पादन लागत जो है वो घटती है, उपज बढ़ती है और आय में भी बढ़ोतरी होती है। श्रोताओं, तो श्रोताओं ये तो थी बातें कि श्री विधि से धान की खेती और किस तरीके से हम धान की खेती कर बेहतर लाभ ले सकते हैं। तो श्रोताओं, अब इसी के साथ खेती बाड़ी से हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे खेतीबाड़ी का कार्यक्रम अपने डाल्टनगंज केंद्र से। और अब आइए सुनते हैं कृषकों को संबोधित हमारा कार्यक्रम ग्रामीण सभा। तो आज के ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है, सभी को पुनः कल्याण कुमार का नमस्कार, जोहार। श्रोताओं, आज की इस ग्रामीण सभा के तहत चर्चा में आप जानेंगे मछली पालन हेतु तालाब की तैयारी, और आज की बात का विषय है अंतर्वर्ती खेती से लाभ। इसी कार्यक्रम की कड़ी में हम आपको सुनवाएंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार से लेकर भेंटवार्ता। विषय है मोटे अनाजों में शामिल फसलें एवं उसकी वैज्ञानिक खेती। इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार, और आज का मौसम का मिजाज भी हम आपको श्रोताओं बताएंगे। तो चलिए कार्यक्रम का आगाज करते हुए आइए जानते हैं मछली पालन हेतु तालाब की तैयारी। श्रोताओं, मछली पालन देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में विशेष रूप से आय और रोजगार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। हालांकि आज के समय में परिवेश में देखा जाए तो प्रायः सभी हमारे जो युवा लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपने आजीविका को देखते हुए और संसाधनों को देखते हुए मछली पालन का कार्य कर रहे हैं। और सो तो यदि सफल मछली पालन के लिए सर्वप्रथम तालाब की उचित तैयारी ज़्यादा माने रखती है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तालाब की वैज्ञानिक ढंग से यदि तैयारी की जाए तो मछलियों की वृद्धि अच्छी होती है, उनमें रोगों की संभावना भी कम हो जाती है, साथ ही साथ उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। तालाब की तैयारी में सफाई, मरम्मत, चूना और खाद का प्रयोग के साथ साथ जल प्रबंधन जैसे कुछ बातें शामिल हैं। श्रोताओं, जब भी आप मछली पालन करना चाहते हैं तो तालाब का चयन करते समय कुछ बातों का ख्याल रखें। इस बात को सुनिश्चित कर ले कि वहां पर वर्ष भर पर्याप्त पानी जो है वो उपलब्ध रह सके। तालाब की मिट्टी जो है वो चिकनी या फिर दोमट होनी चाहिए, जिससे कि पानी का रिसाव जो है वो प्रायः ना हो सके। तालाब ऐसी जगह पर चयन करें जहां पर बाढ़ का खतरा ना हो, और पानी भरने की स्थिति में निकालने की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। श्रोताओं, तालाब की सफाई की भी हम बात करते हैं। यदि तालाब पुराना है तो सबसे पहले उसका पानी निकालकर उससे अच्छे तरीके से साफ कर ले। तालाब में उगी हुई जो भी जलकुंभी हो, काई हो, घास फूस हो, या जो भी अन्य वांछित जो जलीय पौधे हो उसे हटा दे। इससे होता क्या है श्रोताओं, कि मछलियों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है और उनका विकास भी श्रोताओं बेहतर होता चला जाता है। तालाब की मेढ़ों को भी मजबूत और ऊंचा बनाए, जिससे कि वर्षा के पानी जो है समय पर बाहर ना निकल सके। मेढ़ों में किसी भी प्रकार की दरार या बिल होने पर, यदि छेद होने पर भी श्रोताओं उसे मिट्टी से भर दे। पानी के प्रवेश और निकास के स्थान पर जाली जरूर लगाए, जिससे कि बाहरी मछलियां या फिर हानिकारक जीव जो है वो तालाब में प्रवेश ना कर सके। तालाब में यदि शिकारी या अनावश्यक मछलियां उपस्थित हो सकता हो तो उन्हें निकाल दे, और आवश्यकता अनुसार ही अपने जो भी मछली विशेषज्ञ हैं, मत्स्य विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह लें और उचित रसायनों का उपयोग करें। साथ ही साथ इस बात को भी सुनिश्चित कर ले कि जो भी आप मछली के बीज जो दे रहे हैं वो काफ़ी हद तक सुरक्षित हो। श्रोताओं, तालाब की जो मिट्टी होती है उसकी अम्लता के अनुसार भी चूना डालना जरूरी हो जाता है। जी हाँ श्रोताओं, तालाब में चूने का प्रयोग जरूरी है। प्रायः देखा गया है कि 200 से 500 किलोग्राम चूना प्रति हेक्टर के हिसाब से एक तालाब में प्रयोग किया जाना चाहिए। चूना पानी की गुणवत्ता में सुधार करता है और हानिकारक जो भी जीवाणु रहते हैं उन्हें काफ़ी हद तक ये नियंत्रित करता है, और इससे कहीं ना कहीं हमारे मछलियों के लिए एक अनुकूल वातावरण जो है वो तैयार हो जाता है। तालाब में प्राकृतिक भोजन की वृद्धि के लिए भी गोबर की सड़ी हुई खाद का उपयोग करें। इससे 2000 से 500 किलोग्राम गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर तालाब में डालें, और आवश्यकता अनुसार संतुलित मात्रा में रासायनिक उर्वरक का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे मछलियों का प्राकृतिक भोजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाती है। श्रोताओं, कई बार ऐसा देखा गया है कि तालाब में पानी भर जाते हैं, तो इस बात को भी सुनिश्चित कर लें कि तालाब में साफ और प्रदूषण रहित ही पानी भरे।
पानी की गहराई 1.5 से 2 मीटर तक ही रखें। पानी भरने के पश्चात 7 से 10 दिनों तक प्रतीक्षा करें। यदि किसी प्रकार का पलवक अच्छे तरीके से विकसित हो जाए, इसके पश्चात ही मछली के बीज को उस तालाब में छोड़े। तालाब जब तैयार हो जाता है श्रोताओं, तो उसे स्वस्थ और रोग मुक्त ही मछली बीज का चयन करें। मिश्रित मछली पालन के लिए रोहू, कतला, मृगल, ग्रासकॉपर, सिल्वर क्रॉप जैसी प्रजातियों का उचित अनुपात में ही चयन करें और बीज छोड़ते समय पानी का तापमान का ख्याल जरूर रखें। तालाब के पानी में पर्याप्त ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, इसलिए समय समय पर पानी का रंग, गंध और उसकी गुणवत्ता की जांच जरूर करते रहें। यदि ऑक्सीजन की कमी हो तो ताज़ा पानी मिलाए और या फिर कोई भी जो भी उपयुक्त तो उपाय लगता हो उसे अपना सकते हैं श्रोताओं। कुछ बातों का भी ख्याल रखना जरूरी है, कुछ सावधानियां रखना जरूरी हो जाता है श्रोताओं, कि तालाब में गंदा या कोई भी रासायनिक जो अवशिष्ट पदार्थ हो वो पानी में ना जा सके। नियमित रूप से तालाब का निरीक्षण करते रहें। मछलियों को संतुलित और पौष्टिक आहार दें। रोग के लक्षण जब भी दिखाई देते तुरंत मत्स्य विशेषज्ञ से सलाह लें। पंछी और अन्य शिकारी जीवों से भी मछलियों की सुरक्षा का ख्याल रखें। जैसे बताओ, मछली पालन में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तालाब की वैज्ञानिक और उचित तैयारी ज़्यादा जरूरी है, जिसमें तालाब की सफाई,

0: तालाब से हमें ज़्यादा मछली तो प्राप्त होती ही है और कम लागत में ज़्यादा उत्पादन भी प्राप्त होता है। और यह हमारे किसान भाइयों के लिए और साथ ही साथ एक अतिरिक्त आय के लिए भी देखा जाए, पोषण की सुरक्षा की हम बात करते हैं उसके लिए भी, और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने में भी ये जो मछली पालन है काफ़ी कारगर साबित होती है श्रोताओं। और हम सभी जानते हैं कि मछली की मांग गांव, कस्बे, शहर, हर जगह इसकी मांग लगातार बनी रहती है, और विशेष रूप से शादी या किसी प्रकार के प्रायोजन होने पर इसकी मांग और भी बढ़ जाती है। तो इसे बेचने के लिए या बाज़ार की उपलब्धता की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्वयं लोग आकर के तालाब से ही मछली को खरीद लेते हैं। बस ज़रूरत है कि समुचित तरीके से इसका प्रबंधन, और वो प्रबंधन तालाब की तैयारी से लेकर मछली के संचयन तक। श्रोताओं, तो श्रोताओं ये तो थी बातें मछली पालन हेतु तालाब की तैयारी, और अब आइए हम आपको सुनवाते हैं कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमोद कुमार से लगी भेंटवार्ता। विषय है मोटे अनाजों में शामिल फसलें एवं उसकी वैज्ञानिक खेती, और इनसे बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
1: खेतों से घर वापस आए गांव घर के कार्य में लगे चौपाल में उपस्थित सभी किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसानवाणी में। जी हाँ किसान भाइयों, हम बहुत सारी फसलों की बातें आपसे करते हैं, ढेर सारी योजनाओं की बात करते हैं, तरह तरह की बातें किसानवाणी कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपसे साझा करते रहते हैं। आज हम बातें करेंगे मोटे अनाजों की खेती की। जी हाँ, जिसकी आज आवश्यकता है और सरकार इस पर बहुत बल दे रही है ताकि हमारे किसान भाई मोटे अनाजों की खेती करके वो देश को स्वस्थ रख सकें और अधिक से अधिक मुनाफा भी प्राप्त कर सकें। और मोटे अनाजों में कौन सी फसलें मुख्यतः शामिल हैं और इसकी वैज्ञानिक खेती हम कैसे करें, इसके अतिरिक्त और भी ढेर सारी बातें हैं मोटे अनाजों से संबंधित। इस विषय पे संबंधित आज हम विस्तृत जानकारी साझा करेंगे पलामू जिला के क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी से। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो हमारे श्रोताओं को, हमारे किसान भाइयों को ये बताया जाए कि हमारे किसान भाई मोटे अनाजों में किसको शामिल कर सकते हैं।
2: किसान भाई, मोटे अनाज का मतलब आप लोग जान जाएं कि इसमें ज्वार, बाजरा, रागी और फॉक्सटेल बाजरा की चार चीजें आती है मुख्य रूप से। ऐसे तो बहुत सारे कोदो, सावा, आप लोग पलामू, लातेहार, गढ़वा के आसपास के किसान हैं तो ये जानते होंगे कि पहले लोग जो अनाज करते थे तो सावा, कोदो, ये सब चीजों की भी खेती करते थे। और ज्वार जिसको हम लोग बात कर रहे हैं उसको आप लोग जिनोर भी बोलते हैं। तो जिनोर, बाजरा, रागी और फॉक्सटेल मिलेट, इसके जो हम अब इसकी चर्चा करते हैं कि जो ये फसलें जो होती हैं, इस फसल में सभी जगह इसकी खेती की जा सकती है, और खास करके इस फसल में जलवायु परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जलवायु परिवर्तन हम लोग बार बार सुनते हैं कि जलवायु परिवर्तन, मौसम हमारी पलामू की कम वर्षा हो रही है, ज़्यादा तापमान हो रही है, समय पर वर्षा नहीं हो रही है, कभी ज़्यादा वर्षा हो रही है, कभी कम वर्षा, इसी को जलवायु परिवर्तन करते हैं। और ये जलवायु परिवर्तन में आप ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, ये सब की खेती बहुत अच्छे तरह से कर सकते हैं, और इसकी जो है पानी की भी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, कम पानी में ये फसलें होती है, और इसके लिए मिट्टी भी बहुत अच्छी मिट्टी नहीं चाहिए। आप जब देखते हैं टाण वाली मिट्टी जिसमें बहुत अच्छा उपजाऊ नहीं है, उस सब चीजों के लिए आप जो है ज्वार बाजरा की खेती करेंगे तो उसके लिए उपयुक्त है, और इसमें जो है कार्बन का उत्सर्जन कम भी होता है। इस फसल में और फसलों की तुलना में उर्वरक की मात्रा कम लगती है, तो हम उर्वरक से भी बच जाएंगे। और पूरे भारत वर्ष में मिलेट का जो ज्वार बाजरा का उत्पादन है, इसमें हमारा जो देश है जो है ये जो है बहुत अन्य देशों की तुलना में बहुत अच्छे पहले नंबर पे आता है। और रागी, कुटकी और इस सब के क्षेत्रों में झारखंड का जो है छठा स्थान पूरे अपने राष्ट्र में है। तो हम लोग देखें भाई किसान भाई कि बाजरा के इसके फायदे क्या है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने 2023 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय जो है बाजरा दिवस के रूप में मनाने का घोषणा की है। ये हमारा प्रस्ताव, भारत ऐसा देश है जो इसने विश्व पटल पर प्रस्ताव को रखा और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस प्रस्ताव की स्वीकृति की गई, और 75 से 90 देशों ने इसकी जो है मनाने का इसमें हाँ में हाँ मिलाई भारत का, और ये अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया यूएनओ के द्वारा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। ये हमारे लिए बहुत, भारत वर्ष के सभी लोगों के लिए खुशी का विषय है कि इसको जो है 2023 को हम लोग बाजरा दिवस के, बाजरा ईयर के रूप में मनाने का निर्णय लिया। हालांकि किसान भाई आप देखते हैं कि हम लोग जो पहले तीन तरह के ग्रेन होते हैं, एक होता है कि निगेटिव ग्रेन, किसान भाई निगेटिव ग्रेन धान और चावल को बोलते हैं क्योंकि इससे खाने से आदमी बीमार पड़ते हैं।
1: जी जी।
2: और कुछ ग्रेन होते हैं जो कि न्यूट्रल ग्रेन होते हैं जिसको खाने से जो है हम ना स्वस्थ भी ज्यादा रहते हैं

और अगर अस्वस्थ है तो स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसके खाने से अस्वस्थ नहीं होते, जैसे हमारा जो है ज्वार वगैरह हो गया, और रागी मिलेट्स ये सब जो है उसको पॉजिटिव ग्रेन बोलते हैं, यानी कि अगर पहले से हमें कोई रोग है तो उस रोग को ये सभी के आटा खाएंगे या इन सभी के प्रोडक्ट खाएंगे, दलिया खाएंगे, तो आपको ये स्वस्थ भी रहेंगे और जो कोई पहले से भी बीमारी है उसको भी ठीक करने की क्षमता इन मोटे अनाजों में है। और हम लोग देखते हैं किसान भाई कि मोटे अनाजों को हम लोग गेहूं के आटा को पहले मानते थे कि ये अच्छा चीज है चावल की तुलना में, लेकिन गेहूं के आटा में ग्लूटीन नामक तत्व होने के चलते वो तुरंत हमारे शरीर में जैसे ही जाता है घुल जाता है और शुगर की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। अमूमन आप लोग चीनिया रोग जिसको बोलते हैं, शुगर की मात्रा बढ़ गई तो इसके खाने से बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर शुगर की शिकायतें आ रही हैं। तो हम लोग अगर मोटे अनाज की बात जिसको कहते हैं ज्वार बाजरा रागी जो हमारे 70 के दशक से पहले लोग अपने खेतों में करते थे और बीच में गेहूं को हम लोग खाना शुरू कर दिए क्योंकि गेहूं के अनाज में जो है ग्लूटीन होने के चलते थोड़ा सा हमारा मुलायम हो गया, रोटी खाने में मुलायम हो गया, तो हमारा जीभ का टेस्ट हमने देखा लेकिन इससे बीमारियां हमारी बढ़ती गई। तो मैं यही कहूंगा कि ज्वार बाजरा का जो है इसमें जो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है 52 है और गेहूं के आटे में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है, यानी कि हमारा जो है ज्वार बाजरा खाने से बहुत ज्यादा अच्छा, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना कम रहेगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारा है। तो किसान भाई इसमें देखिए एंटीऑक्सीडेंट है, प्रचुर मात्रा में विटामिन है, आयरन है, मिनरल्स है, हम जो खाना खाते हैं हमारा पोषक तत्व जो है ये पोषण के लिए भारत सरकार ने इसको जो कहा है कि हम इसकी एमएसपी को बढ़ा दिए, एमएसपी भी भारत सरकार आपको जो खरीदेगी तो ये ज्यादा रेट पे खरीदेगी और साथ साथ हमारे जो जितने भी राशन के दुकानों में या मिड डे मील स्कूलों में है, अपने माननीय प्रधानमंत्री और झारखंड सरकार भी इस दिशा में हमारे कदम उठा रही है कि इसको वहां तक भी पहुंचाना उपलब्ध।

0: ये 12 केजी प्रति हेक्टेयर यानी 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपने खेतों में लगाएंगे, अपलैंड में, टाण भूमि में, जिस तरह आप मक्का को लगाते हैं। तो इस मक्के को लगा के आप करेंगे तो हमको जो है ज्वार की खेती, जिसको जिनोर भी आप बोलते हैं, तो इसे घबराना नहीं है कि हमको जिनोर है, और इसमें उर्वरक की भी जो कम मात्रा लगती है 60-40-20 की रहती है, तो 110 से 115 दिन की है। और इसे सबसे खास बात यह था कि किसान भाई इससे जो चारा जो है 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये अनाज के साथ चारा भी हमको मिलता है।
1: इसकी किस्में क्या होंगी?
0: इसके 20 से, हाँ, इसके किस्में हैं, CSB 17 है, CSB 20 है, SG 998 है, और CO 29 जो है ये चारे के लिए बहुत ही अच्छा उपयुक्त है। ये क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र चियाकी में भी हम लोग इसका बीज का उत्पादन करते हैं, और कितना भी कम वर्षा हो तो ये फसलें होना निश्चित है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कभी कभी कि इसके खेती जो है अरहर के साथ भी आप करते हैं, अरहर और ज्वार के साथ में, एक लाइन अरहर एक लाइन ज्वार, या दो लाइन अरहर दो लाइन ज्वार, तो आपको क्या होगा किसी विषम परिस्थितियों में अगर खूब पानी नहीं पानी यहाँ पड़ा तो आपकी ज्वार की फसल होना निश्चित है और अरहर की फसल होना निश्चित है। अगर हम लोग जो है ज्वार अगर फसल हो गए तो कम से कम हम भूखे नहीं मरेंगे, ज्वार की आटा खाएंगे, तो आप इसमें रोग और व्याधियां भी कम लगती है। तो हम लोग किसान भाई इसकी खेती को हम लोग जो है चारे के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देंगे किसान भाई इसकी ज्वार की जब भी कटाई करेंगे तो 45 दिन के अंदर किसानों को चारा के रूप में नहीं खिलाना है, यानी जानवरों को 45 दिनों के बाद खिलाएं, या फिर अगर आप पटवन सुविधा हो रही है, बारिश हो रही है अच्छी, तो फिर आप खिला सकते हैं, नहीं तो इसमें एक जहरीला तत्व भी रहता है जो कि पानी की कमी के चलते ACN का फॉर्मेशन होता है। तो हम आपको सावधान करते हैं कि 45 दिनों के बाद ही चारे के रूप में इसको काट के आप जानवरों को खिलाएं, और अगर हम लोग अनाज के रूप में लेते हैं तो अनाज के रूप में ये जो फसलें हैं 25 से 30 क्विंटल हमको जो है ज्वार की पैदावार प्रति हेक्टेयर होगी। तो आप ज्वार की खेती, और सरकार जब इस पर आपको MSP ज़्यादा दे रही है, खरीदने का वादा दे रही है, राशन के दुकानदारों में सप्लाई करने की बात कर रही है, तो हम लोग ज्वार की खेती करके भी अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं।
1: एक बात हम ये जानना चाहेंगे, अभी हमारे किसान भाई खेत की तैयारी कैसे करते
0: हैं? हाँ, किसान भाई अभी मई का महीना हमारा जो चल रहा है, अब कोई किसान अगर गर्मा जुताई नहीं किए हैं तो आप अपने खेतों में गर्मा जुताई कर दें। सबसे उपयुक्त समय ये होता है कि अगर गर्मी के दिनों में अप्रैल महीना में देखे होंगे कि बारिश कुछ हुई थी, तो जस्ट बारिश खत्म होने के बाद अपने खेतों में जुताई कर दें। अगर गर्मा जुताई कर देते हैं तो कीट वगैरह का प्रकोप सब खत्म हो जाएंगे, घास खत्म हो जाएंगे, और इसके बाद अगर खेतों में थोड़ा जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जैसे ही जून जुलाई के महीना आएंगे, 15 जून से 15 जुलाई के बीच में इसका उपयुक्त समय लगाने का होता है, तो आप इसके जो है लगा सकते हैं। और घास निकालने के लिए हम लोग एट्राजीन का भी प्रयोग कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हमारे पास में घास की समस्या आती है तो। ये सारी फसलों को अगर करते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो हम लोग करते हैं। तो हम यही सलाह देते हैं कि पलामू में पहले ज्वार बाजरा मोटे अनाज, इसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है तो हमको जो है गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अन्य लाभों के साथ में तो आप लोग जरूर ज्वार बाजरा की खेती कीजिए। सरकार इसके लिए मोटे अनाजों के लिए जिला कृषि कार्यालय में बीज की भी व्यवस्था कर रही है झारखंड सरकार के द्वारा, और इसको प्रोत्साहित करने के लिए जिला कृषि कार्यालय अंतर्राष्ट्रीय ज्वार बाजरा दिवस मना रहा है, और क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र में प्रशिक्षण पाकर इसकी खेती हम लोग बीज उत्पादन का करते हैं। जो किसान भाइयों को जो हमने प्रभेद बताया, पुनः बता दें CSB 17 और CSB 20, ये जो प्रभेद जो है क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र से अगले वर्ष, इस साल तो नहीं, अगले वर्ष उपलब्ध होगा। आप बड़े पैमाने पर यहाँ से अच्छे बीजों को लेकर आप अपनी खेती कर सकते हैं
1: जी। और इस प्रकार से हमें जो उम्मीद है कि हमारे किसान भाई अगर इसकी खेती करेंगे तो जिस तरह से इसकी मांग बढ़ रही है निश्चित रूप से वो भरपूर लाभ कमाएंगे।
0: हाँ,
1: आप थे पलामू जिला क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियाकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और मोटे अनाजों की खेती से संबंधित जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत

0: मांग बढ़ रही है, निश्चित रूप से वो भरपूर लाभ कमाए।
1: हाँ।
0: आप थे पलामू जिला क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और मोटे अनाजों की खेती से संबंधित जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

प्रायः जरूरत कम पड़ती है श्रोताओं। खेती में मिट्टी का कटाव भी रुक जाता है, नमी बनी रहती है और अंतर्वर्ती जो खेती है श्रोताओं ये पर्यावरण संरक्षण में भी काफी कारगर साबित होती है। और इसमें श्रोताओं अगर हम अंतर्वर्ती खेती करना चाहते हैं तो मक्का के साथ अरहर की खेती कर सकते हैं, गन्ना के साथ चना की खेती, कपास के साथ मूंग की खेती और बाजरा के साथ लोबिया की खेती। इस प्रकार से अंतर्वर्ती खेती हम इन फसलों का उपयोग कर सकते हैं। सही फसल का संयोजन करना है, उचित दूरी के साथ साथ समय पर सिंचाई और उर्वरक का अच्छे तरीके से प्रबंधन करना है। तो जब हम इन चीज़ों को करते हैं श्रोताओं तो निश्चित रूप से इससे हमें बेहतर लाभ प्राप्त होता है। अंतर्वर्ती खेती एक काफ़ी लाभकारी, किफायती और टिकाऊ कृषि प्रणाली है श्रोताओं, और ये हमारे किसान भाई के आय को बढ़ाने में, उत्पादन में वृद्धि करने में और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में भी ये काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रोताओं ये तो थी बातें अंतर्वर्ती खेती से लाभ, और आइए आज की नसीहत का हमारा विषय है गेहूं में कीट प्रबंधन। जी हाँ श्रोताओं, गेहूं हमारे देश की काफ़ी प्रसिद्ध और प्रमुख खाद्य फसल के रूप में जानी जाती है और अच्छी उपज के लिए कीटों का समय पर नियंत्रण भी जरूरी है। गेहूं में मुख्य रूप से देखा जाए तो माहू, दीमक, सेनाइली और कटुआ कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है और ये कीट पौधों का रस चूसते हैं और जड़ों और तनों को नुकसान पहुंचाकर कहीं ना कहीं गेहूं के उत्पादन को कम कर देते हैं। कीट प्रबंधन के लिए श्रोताओं सबसे पहले स्वस्थ और प्रमाणित बीज का उपयोग करें, समय पर बुआई, संतुलित उर्वरक और उचित सिंचाई करें। इससे कहीं ना कहीं कीटों का प्रकोप कम होता है और खेत को हमेशा खरपतवार से मुक्त रखें। श्रोताओं दीमक की रोकथाम के लिए बीज को उपचार करना ज़्यादा जरूरी होता है। खेत का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें और प्रारंभिक अवस्था में ही कीटों की पहचान कर उसे नियंत्रित करें। माहू जैसा कि वो रस चूसने वाला कीट होता है, इसकी ज़्यादा प्रकोप होने पर श्रोताओं किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर उचित कीटनाशकों का सुरक्षित और संतुलित मात्रा में इसका उपयोग करें। श्रोताओं समेकित कीट प्रबंधन अपनाकर हम जैविक, यांत्रिक और रासायनिक उपायों का संतुलित उपयोग कर गेहूं की फसल को हम सुरक्षित रख सकते हैं और ज़्यादा इससे हम लाभ ले सकते हैं श्रोताओं। तो श्रोताओं ये तो थी बातें गेहूं में कीट प्रबंधन की, और अब चलते चलते हम आपको बता दें डाल्टनगंज का तापमान। जी हाँ श्रोताओं, डाल्टनगंज का आज का अधिकतम तापमान रहा 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान रहा 26 डिग्री सेल्सियस। आर्द्रता का जो प्रतिशत है वह 82 दर्ज किया गया। तो श्रोताओं ये तो थी बातें आज के ग्रामीण सभा की, और इसी के साथ आज के इस ग्रामीण सभा से हमें दीजिए इजाज़त।

0: जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आप सुन रहे थे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में सुनेंगे आप हमारे रांची केंद्र का प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही आरपीएलआई, इससे बेहतर कुछ नहीं।
4: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस आरपीएलआई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
5: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सहकारिता से समृद्धि मिशन का देशव्यापी जश्न, नई दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए झारखंड के लैंपस प्रतिनिधि। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जारी किया नया रैंकिंग ढांचा। मुख्यमंत्री ने की खेल और पर्यटन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। रांची खेलगांव शूटिंग रेंज का किया औचक निरीक्षण। खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के निर्देश। भाजपा ने 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में विसंगतियों का आरोप लगाकर की सीबीआई जांच की मांग। मेंस की तैयारी के लिए मात्र 16 दिनों का समय देने पर जताई आपत्ति। हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू में आज भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी। रांची और गुमला सहित मध्य भागों में तेज बारिश जारी। और राजधानी रांची में आज से 39वीं राष्ट्रीय अंडर-9 शतरंज चैंपियनशिप शुरू। देश भर से जुड़े 400 से अधिक बाल खिलाड़ी। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय स्तर के भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर सहकारी संस्थाओं को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के लिए एक नए रैंकिंग ढांचे की शुरुआत की। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
6: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
5: इस मुख्य समारोह में झारखंड के सरायकेला खरसावां सहित कई जिलों से लैंप्स प्रतिनिधियों और सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बच्चों के समग्र विकास और पोषण संबंधी देखभाल के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समर्पण और सेवा भाव की सराहना की है। उन्होंने कहा कि विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव इन्हीं बच्चों पर टिकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान उन्होंने पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विभागीय योजनाओं को गति देने और खेल तथा सांस्कृतिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज खेलगांव स्थित शूटिंग रेंज का औचक निरीक्षण किया। परिसर के रखरखाव की बदहाल स्थिति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को समयबद्ध कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने स्वयं राइफल से निशाना साधा और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं देने की बात कही। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज रामगढ़ के पतरातू में विस्थापितों की समस्याओं को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक की। ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत लंबित मुआवजे और पुनर्वास की मांग उठाई। वित्त मंत्री ने विस्थापन को राज्य की सबसे बड़ी समस्या बताया।
7: सबसे बड़ी समस्या विस्थापन की समस्या है। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में अधिक वर्षों तक शासन की, पूंजीपतियों से उनका लगाव रहा, विस्थापितों के साथ उनका कोई लेना देना नहीं। लेकिन सरकार ने काफी गंभीरता से इस विषय को ली है कि विस्थापित जो हुए हैं उनके सामाजिक आर्थिक सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी हेमंत सोरेन की सरकार लेने वाली।
5: 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा के परिणाम में कथित विसंगतियों को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने परिणाम को रद्द करते हुए पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
8: झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन झारखंड का भविष्य बर्बाद करने वाला आज के दिन में आयोग बन गया है। बड़ा खतरा है। जेपीएससी एग्जामिनेशन क्रिमिनल ऑफेंस छात्रों के साथ जो संबंधित लोग हैं सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ये सरकार छात्रों के सपनों को तोड़ने का काम कर रही है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है।
5: नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ जिले में सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण में अनियमितता और लंबित मुआवजे का मामला उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जांच रिपोर्ट में अधिक भूमि पर कब्जे की पुष्टि के बावजूद रैयतों को वर्षों बाद भी मुआवजा नहीं मिला। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले में हस्तक्षेप कर निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर आज राजधानी रांची समेत राज्यभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कड़ी में कोडरमा के डोमचांच में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और विधायक डॉ. नीरा यादव शामिल हुईं। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पौधरोपण किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राज्य की वर्तमान कानून व्यवस्था और राजनीतिक विरोधाभास पर गहरी चिंता व्यक्त की।
9: प्रकार से इस राज्य में सरकार चल रही है, इतना तो झारखंड

0: झारखंड के लिए भला है ना झारखंड के लोगों के लिए भला है। जन विरोधी सरकार है और हम तो बार बार करते आए हैं कि सरकार जनता के भला के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है। जहाँ स्वार्थ का गठबंधन होता है वहां पर राज्य और जनता का भला नहीं होता।
1: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने रांची सर्किट हाउस में अनुसूचित जाति समुदाय से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई की। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने बताया कि रिम्स 2 परियोजना की भूमि और बोकारो के बैधकारों में नियम उल्लंघन के मामलों पर अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने निर्देश दिया है कि जांच पूरी होने तक इन विवादित स्थलों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न किया जाए।
2: रिम्स 2 की बात ये सरकार का निर्णय है, उनको जो करना है करना चाहिए, लेकिन आयोग के सामने जो विषय सामने आया है इस विषय पर जब तक संज्ञान में है तब तक को यथावत रखे और आगे जब पूरा निर्णय आ जाए सुनवाई का तब वो आगे का कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन विशेष रूप से हम रिम्स का रिव्यू करेंगे और उसमें जो एक्शन टेकन रिपोर्टो बना के देंगे, छानबीन करेंगे।
1: बोकारो प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने आज धनबाद में वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने जिले में संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाने और अपराधियों के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने के कड़े निर्देश दिए। हाल ही में फरार अपराधी प्रिंस खान द्वारा जनप्रतिनिधियों को मिली कथित धमकी के सवाल पर आईजी ने कहा कि उसके खिलाफ लगातार कानूनी कार्रवाई जारी है।
3: इंक्वायरी मुझे करनी थी पुलिस मुख्यालय के आदेश के आलोक में और जो मैटर रिलेटेड था उसके संदर्भ में हमने एसएसपी साहब को बताया था और उसमें क्या प्रोग्रेस हुआ तो उसी की जानकारी लेनी थी, इसीलिए सारे पुलिस अधीक्षकों के साथ बड़े पुलिस अधीक्षक सहित हमारी बात हुई। हमारी पूरी टीम उसके पीछे लगी हुई है और काम कर रही है, चाहे उनकी सुरक्षा लेकर हो चाहे और भी कोई कार्रवाई हो।
1: मौसम। राज्य में अगले 5 दिनों तक तेज आंधी बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी है। आज विशेष रूप से हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि रांची और गुमला सहित कई मध्य जिलों में भी तेज बारिश जारी है। मौसम विभाग ने कल धनबाद सहित उत्तर पूर्वी भागों में भारी वर्षा की चेतावनी देते हुए लोगों को सतर्क रहने को कहा है। राजधानी रांची एक बार फिर राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रही है। सरला बिरला विश्वविद्यालय परिसर में आज से 39वीं राष्ट्रीय अंडर 9 ओपन एवं गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। 12 जुलाई तक चलने वाली इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों से 438 बाल खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। सहकारिता से समृद्धि मिशन का देशव्यापी जश्न। नई दिल्ली के मुख्य कार्यक्रम में शामिल हुए झारखंड के लैंप्स प्रतिनिधि। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जारी किया नया रैंकिंग ढांचा। मुख्यमंत्री ने की खेल और पर्यटन विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा। रांची खेलगांव शूटिंग रेंज का किया औचक निरीक्षण। खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के निर्देश। भाजपा ने 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा परिणाम में विसंगतियों का आरोप लगाकर की सीबीआई जांच की मांग। मेंस की तैयारी के लिए मात्र 16 दिनों का समय देने पर जताई आपत्ति। हजारीबाग, चतरा, लातेहार और पलामू में आज भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी। रांची और गुमला सहित मध्य भागों में तेज बारिश जारी। और राजधानी रांची में आज से 39वीं राष्ट्रीय अंडर 9 शतरंज चैंपियनशिप शुरू। देश भर से जुटे 400 से अधिक बाल खिलाड़ी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: बोल बोल के थक गया।
5: क्या हुआ?
4: नया किड बैग चाहिए।
5: तो पहले कैप्टन से बोलो। नहीं सुना तो मैनेजर से।
4: करेक्ट।
5: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले ले आ गया नया किड बैग।
6: आरबीआई कहता है
7: पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन।
8: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे पश्चिम सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे चाईबासा संवाददाता।
1: पश्चिमी सिंहभूम जिले में आजादी के बाद स्थापित हुई पहली औद्योगिक इकाई के बंद होने की घोषणा के बाद स्थानीय लोग आंदोलित हैं। यहाँ झीकपानी स्थित एसीसी की सीमेंट फैक्ट्री, जिसे अडानी ग्रुप ने हाल ही में अधिग्रहित किया है, उसे बंद करने की घोषणा कर दी गई है। इस बात को लेकर स्थानीय मजदूर और पोषक क्षेत्र के ग्रामीण रोजी रोजगार को लेकर चिंतित हैं। जिला प्रशासन एवं राज्य व केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग को लेकर प्रदर्शन और पदयात्राएं भी स्थानीय लोगों ने निकाली और लोगों को अभी भी यह उम्मीद है कि एसीसी अडानी की यह देश की सबसे पुरानी फैक्ट्री फिर से खुल जाएगी।
2: सबका यही विचार है, दोबारा से प्लांट सुचारू रूप से चले और खदान भी बढ़िया से चले। सारे लोग का यही विचार है, वहाँ फिर से लोगों का जीवन यापन का जो साधन है सुचारू रूप से हो, और सारे लोग जमीन देने के लिए तैयार है और सब कोई एक मंच में आज इस पदयात्रा के माध्यम से लोगों को यही मैसेज देने के लिए आए हैं। कंपनी को सहयोग करना होगा तो उस कंपनी को सहयोग करेंगे।
1: जिले में बरसात के आरंभ होते ही मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है। जिले के विभिन्न अस्पतालों में मलेरिया से पीड़ित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मलेरिया जांच से लेकर उसके उपचार की सारी व्यवस्थाएं सदर अस्पताल से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तक की गई हैं, जल जमाव वाले इलाकों में कीटनाशक के छिड़काव के लिए नगर परिषद इलाकों और ग्रामीण इलाकों में कर्मियों को लगाया गया है। जिले के सिविल सर्जन डॉक्टर जुझार मांझी ने बताया कि साफ सफाई रखने से मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी से बचा जा सकता है। उन्होंने एक संदेश जारी करते हुए लोगों से मलेरिया से बचाव के लिए कई सुझाव दिए हैं।
3: मलेरिया का प्रसार का अभी सीजन है। गांव में सभी अस्पताल में प्रायः देखा जा रहा है कि मलेरिया से लोग पीड़ित हो रहे हैं। सभी से मैं अनुरोध और आग्रह करता हूं कि जब भी आप सोएं रात में मच्छरदानी लगा के सोएं, अपने घर के अगल बगल जितने भी पानी जमाव है उसको समाप्त करें। मलेरिया रोधी जो छिड़काव IRS होता है अपने घर के अंदर में जरूर कराएं। किसी को बुखार, सरदर्द या किसी तरह का मलेरिया का लक्षण अगर नजर आए या महसूस हो, आप निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र में जाके जांच और उपचार सुनिश्चित करें। आपके सहयोग से ही पश्चिमी सिंहभूम जिला को मलेरिया मुक्त बनाया जा सकता है। मुझे पुनः आपसे अनुरोध और आग्रह होगा, किसी को भी अगर बुखार हो, बदन हाथ में दर्द हो, सिर दर्द हो, तो निकटस्थ स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपनी जांच और उपचार सुनिश्चित कराएंगे, तभी हम लोग जिले को मलेरिया मुक्त बना पाएंगे। धन्यवाद।
1: जैसा कि आपको मालूम है, पश्चिमी सिंहभूम जिला मलेरिया के मामले में रेड जोन माना जाता है, इसलिए इस मौसम में इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग विशेष सतर्कता बरत रहा है। दिलीप बैनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा।
0: अभी आप सुन रहे थे पश्चिमी सिंहभूम जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप हमारे रांची केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।

0: नमस्कार, मैं हूं राजेश और एक बार फिर से बुनियाद कार्यक्रम लेकर हंसते खेलते आपके घर आंगन में आ गया। हंसना खेलना इसलिए जरूरी है कि उससे आप खुश रहेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे और इसी सोच के साथ बुनियाद कार्यक्रम को सुनेंगे, जिसमें हम नए नए कोर्सेज की आज चर्चा कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से पिछले एपिसोड में हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, जी हाँ, इसके बारे में बताया था। बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बताया था। इसके अलावा एक कोर्स और है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, और हमारे साथ एक्सपर्ट भी होंगे। लेकिन उससे पहले दो बातें हम कर लें। बहुत सारे फोन कॉल्स आए जब हमने बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी के विषय में बातचीत की थी। हाँ, डॉक्टर नीरज से हमने बातचीत की थी और जानकारियां दिलवाई थी। पूरे बिहार से फोन आया वैसे युवा साथियों का जिन्होंने इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ किया था। अच्छा लगा, सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सोमवार के दिन बने रहना होगा इसी समय इसी मीटर पर। एकदम आपके लिए खोज खोज कर ऐसे कोर्सेज को हम लाएंगे, और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जिनकी तरफ से ये कार्यक्रम हम लेकर आ रहे हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में ये कोर्सेज इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं आप युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, बेहतर फ्यूचर के लिए। जी हाँ, और तीन कोर्सेज हम बार बार कह रहे हैं, हमने बातचीत कर ली है बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी पर, ढेर सारे फोन आए हैं, सारे सवाल हमने रखे हैं। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी एक नया कोर्स है, और आज जिस पर चर्चा करेंगे वो है फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, इस पर आज चर्चा करेंगे, विशेषज्ञ को बुलाएंगे। लेकिन फिर भी हम बार बार कहते हैं, राजेश बार बार कहता है कि भैया, छोटे छोटे भाई, बड़े बड़े भाई, बड़े बड़े चाचा, बड़े बड़े दादा, अब आप समझ लीजिए कि टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है। हाँ, टेक्निकल पढ़ाई कर लीजिए, हाँ, बेरोजगारी की समस्या दूर हो जाएगी, ऐसा हम समझते हैं। अगर अच्छे से पढ़ाई की गई ना, तो विशेषज्ञता हासिल होगी, और वो विशेषज्ञता आपको जीवन में खड़े होने का आधार, मजबूत बुनियाद देगी। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। टोल फ्री नंबर पहले बता रहा हूँ, 1800-121-0051, 1800-121-0051, और एक जो मोबाइल नंबर है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, वो है 9431899002, 9431899002, और एक वेबसाइट भी है www.gnsu.ac.in। ढेर सारे फोन कॉल्स आते हैं कि बहुत सुलभ कर दिया, अब सुनते सुनते जानकारियां मिल जाती हैं, किसी दूसरे माध्यम में तो पढ़ना पड़ता है, काम छोड़ना पड़ता है, और ये तो काम करते करते बाजा बज रहा होता है और जानकारियां मिल जाती हैं। धन्यवाद आपका कि आप इतना कंसर्न हैं इस कार्यक्रम से, क्योंकि हम आपके फायदे की बात करते हैं। बहरहाल, चलिए आज बातचीत करते हैं फिजिशियन, हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, इस विषय में क्या पढ़ाई है, कितने दिन की पढ़ाई है, रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अगर इसे इंट्रोड्यूस किया गया है तो क्या सिस्टम है, सारी चीजों पर बात करेंगे। चलिए आज के अतिथि से सबसे पहले जानते हैं उनका परिचय।
1: नमस्कार, मैं प्रोफेसर डॉक्टर नीरज कुमार, डायरेक्टर नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर साइंसेज, गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी जमुआ।
0: उम्मीद है आप ठीक से होंगे। एक व्यक्तिगत सवाल हम आपसे करना चाहते हैं। उस जमाने में, हाँ, ये कोर्स जो है ना, न कोविड था न कुछ और चीजें थी, तो इस तरीके के कोर्सेज को चुनने के लिए आपको किसने प्रेरित किया, क्या सोच थी उस समय?
1: नहीं, वो तो जब मैं बचपन में जब क्रिकेट देख रहा होता था या कोई भी स्पोर्ट्स देख रहा होता था, तो जैसे किसी खिलाड़ी को चोट लगी, तो मैं देखा कि कोई जना आया, उसने कुछ लगाया, करा एक्सरसाइज, कुछ कराई, नौ खिलाड़ी वो फिर से खेल रहा है, तो उस वक्त मुझे लगा कि ये क्या है, तो पता चला कि ये फिजियो है। तो फिर मेरा उस वक्त से थोड़ा सा इंक्लिनेशन आया कि इस कोर्स के प्रति, कि मुझे ये कोर्स

0: चाहिए, और फिर जाके फिर मैंने ये कोर्स।
1: नीरज जी, जमाना बदल गया, बहुत पानी बह गया। हाँ, आज टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, और टेक्निकल पढ़ाई के विषय में क्या कहना चाहिएगा आप?
0: क्योंकि अब हर कोई चाह रहा है कि हमें इमीडिएटली पढ़ाई के बाद कुछ ना कुछ तो हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिले, और इसके लिए टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन। उसी के बाद ही हमारे पास ये ऑप्शन आएंगे।
1: टेक्निकल पढ़ाई इज द अल्टीमेट ऑप्शन फॉर जॉब, फॉर ए बेटर फ्यूचर, है ना? इसीलिए कहते हैं भैया, टेक्निकल पढ़ाई का जमाना है, इधर उधर मत तको। इंटरमीडिएट बायोलॉजी के साथ अगर आपने किया है तो हेल्थ सेक्टर में टेक्निकल पढ़ाई की भरमार है। जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवास्कुलर टेक्नोलॉजी, और आज चर्चा करने जा रहे हैं बैचलर ऑफ फिजिशियन

0: जहां वो छोटी मोटी बीमारियों के लिए पेशेंट को देख के और कंसल्ट करके, जिनके अंडर वो काम कर रहे हैं, जिस फिजिशियन के अंडर वो काम कर रहे हैं, उनसे कंसल्ट करके उनको वो इलाज भी दे सकते हैं।
1: कितने सीटों के साथ आपने इसकी शुरुआत की है इस यूनिवर्सिटी के अंदर?
0: ये हमने अभी 30 सीटों के साथ स्टार्ट किया है।
1: क्या एलिजिबिलिटी है?
0: हाँ, इसकी एलिजिबिलिटी है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 45% मार्क्स एग्रीगेट।
1: कैसे बच्चे आ सकते हैं?
0: नहीं, जो बिल्कुल जो जो अपने सोसाइटी के लिए, अपने समाज के कल्याण के लिए और पेशेंट वेलफेयर के लिए, जिनका मोटो है कि वो चाहते हैं कि हम समाज का कल्याण करें, हम पेशेंट का कल्याण करें, वो बच्चे इसमें एडमिशन लें, क्योंकि इसका मेन उनका रोल है पेशेंट वेलफेयर, पेशेंट ट्रीटमेंट, पेशेंट केयर।
1: अपॉर्चुनिटीज पढ़ने के बाद?
0: इनकी अपॉर्चुनिटीज इतनी हाई डिमांड बढ़ी हुई है कि भारत में, जैसे आप सबको पता है, आप लोग न्यूज़पेपर में भी, हम लोग न्यूज़ में भी देखते हैं कि डॉक्टरों की कमी है और अस्पतालों में, इसीलिए ट्रेंड फिजिशियन एसोसिएट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। एक रिसेंट डेटा कहता है कि अभी तक 28% इनकी डिमांड बढ़ी है फिजिशियन एसोसिएट की हमारे अस्पतालों में। साथ ही मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों, इमरजेंसी सेवाओं और डायग्नोस्टिक सेंटरों में भी 90% तक संभावना है प्लेसमेंट की। और साथ ही साथ इनकी विदेशों में भी ऑप्शन है, जैसे इनकी यूके, यूएसए जैसे देशों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करियर बनाने की बहुत ही अच्छी संभावना है।
1: कार्यक्रम चल रहा है बुनियाद, मैं हूं राजेश और हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर नीरज। जानकारियां दी जा रही है, एक नया कोर्स आया है, सिर्फ 30 सीट है, ओनली 30 सीट्स है, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज। जी हाँ, बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज का, इसके बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। टेक्निकल पढ़ाई बार बार कहते हैं, जैसे पिछले एपिसोड में हमने बताया था आपको, बैचलर ऑफ साइंस इन कार्डियोवैस्कुलर टेक्नोलॉजी, ढेर सारे सवाल आए हैं, आने वाले सोमवार के दिन हम उसका उत्तर देंगे। इसके अलावा परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के विषय में आने वाले सोमवार को एकदम बताएंगे ही बताएंगे। फिलहाल आइए जानते हैं डॉक्टर नीरज से, जहां 30 सीट ही आया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में। सबसे पहले नंबर बता दें एक बार, 9431899002 और 1800120051। हाँ डॉक्टर नीरज, नया कोर्स आया है, हाँ सारा कुछ नया नया है, बच्चे नए होंगे, सब कुछ नया होगा, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या तैयारी है आपके यहाँ ओवरऑल?
0: फिजिशियन एसोसिएट के लिए हमारे पास ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर सारे अवेलेबल, जो हमारे पास क्लासरूम चाहिए वो हमारे पास है, जो लैब चाहिए वो हमारे पास है। इसके अलावा क्लिनिकल पेशेंट प्रैक्टिकल के लिए हमारे पास अपना हॉस्पिटल NMCH हॉस्पिटल है, नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो 1200 बेडेड हॉस्पिटल है लगभग, वहाँ हमारे बच्चों का हैंड्स ऑन एक्सपोजर होने हम कराएंगे हमारे बच्चों का। क्लासेस कराने के लिए, टीचर्स के लिए हमारे पास अपने फिजिशियन एसोसिएट टीचर प्रोफेशनल्स हैं, साथ ही साथ जो मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास मेडिकल फैकल्टी है, मेडिकल टीचर्स हमारे पास। चूंकि आपको पता है कि हमारा गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत ही बड़ा कैंपस है, इस कैंपस के अंदर हमारे पास सारी बेसिक सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है, साथ ही साथ स्टाफ टीचर और उनके लिए भी एकोमोडेशन है, फ्लैट्स हैं, क्वार्टर्स हैं, और जो भी बेसिक नीड की जरूरत होती है सब हमारे कैंपस के अंदर मौजूद।
1: डॉक्टर नीरज, बहुत बहुत पहले तो

0: पढ़ाई की सारी तैयारियां हो चुकी हैं और हमें पता है कि गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार में जब तक पूरी तैयारी नहीं होती कोई कोर्स शुरू नहीं किया जाता। लेकिन एक सवाल हम बच्चों की तरफ से पूछना चाहते हैं कि बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्निकल पढ़ाई, अंग्रेजी में बातचीत, उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट या पर्सनालिटी जो लेकर आते हैं और यहाँ आकर, क्या उन बच्चों के झिझक को आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में तोड़ने के लिए कोई व्यवस्था, उनकी अंग्रेजी या कोर्सेज के बारे में जानकारी या उनके ओवरऑल पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए कोई सिस्टम?
1: नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया है सर आपने। नहीं, हमारे यहाँ हम लोग जैसे बच्चे हमारे एडमिशन होता है तो शुरू के एक महीने हम उनका सिर्फ इंडक्शन प्रोग्राम चलाते हैं ताकि उनको हम इस कोर्स के बारे में अवगत कराएं। हम सिलेबस स्टार्ट नहीं करते हैं शुरुआत में, पहले हम कोर्स को अवगत कराते हैं। ब्रिज कोर्स काइंड यू आप कह सकते हैं कि अभी चूंकि जस्ट वो इंटर पास करके इस प्रोफेशन में, मेडिकल प्रोफेशन के कोर्स में आए हैं, तो उसका जो गैप है उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। रहा बात इंग्लिश का, तो हमारे यहाँ के जितने भी टीचर हैं वो ड्यूअल मोड में पढ़ाते हैं, दोनों मोड में, इंग्लिश और हिंदी दोनों मोड में पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हम लोग इंग्लिश कम्युनिकेशन इंग्लिश की क्लासेस भी लगाते हैं बच्चों के। और हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं सर, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जितने भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं जब वो फर्स्ट ईयर में यहाँ आते हैं तब उनसे आप पूछेंगे जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो उनका क्या स्टैंडर्ड या क्या लेवल रहता है, और अभी उनका आप देखेंगे लेवल और स्टैंडर्ड, तो पीरियोडिकली दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्व्स। और इस पे हमारे टीचर हम लोग बिल्कुल मिलजुल कर काम करते हैं और हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हमें बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है।
0: थैंक यू प्रोफेसर नीरज, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें विश्वास है कि आप सबों के गाइडलाइन में जो बच्चे आएंगे, 30 बच्चे आएंगे, उनका सही मार्गदर्शन होगा, सही पढ़ाई होगी और करियर की नई अपॉर्चुनिटी खुलेगी। अभी हमारी बातचीत चल रही थी बैचलर ऑफ फिजिशियन एसोसिएट स्टडीज, ये एक नया कोर्स आया है, इस पर सिर्फ 30 सीट है इंटरमीडिएट बायोलॉजी के लिए। अगर जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो नंबर डायल करें, टोल फ्री नंबर 1-800-121-0051 और दूसरा नंबर है 9431899002, ये नंबर है। और अगले एपिसोड में हम बताएंगे एक नया कोर्स आया है परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, इसके विषय में तो ढेर सारी संभावनाएं हैं टेक्निकल पढ़ाई में। युवा साथियों, सोचिए, विचारिए और निर्णय लीजिए, फोन से बात कीजिए। फिलहाल थैंक यू गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम बिहार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं हम आपके हैं कौन इस फिल्म के गीत से। आवाजें लता मंगेशकर, एस पी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की है।

0: आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी। इस कार्यक्रम में श्रोताओं आज आइए सुनते हैं रांची के डॉक्टर अविनाश कुमार झा से ली गई पूर्व प्रसारित भेंटवार्ता। विषय है खट्टी डकार भी बीमारी का लक्षण। इस विषय पर इनसे बातचीत कर रहे हैं संजीव कुमार लाल।
1: मित्रों नमस्कार। मित्रों जब हम भोजन करते हैं तो डकार भी लेते हैं और जब खट्टी डकार आती है तो इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए। हो सकता है कुछ बीमारियों का संकेत दे रहा हो। जब हम खाना खाते हैं तो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि खाना हमें पेट तक पहुंच नहीं पा रहा है। तो क्या कारण है और जब डकारें आ रही हैं जो आपका भोजन है ऐसा लगता है कि वो मुँह तक आ रहा है तो इसका कारण क्या है, उपचार कैसे करें, सावधानियाँ अपने जीवन में किन किन बातों का रखें और इसका लक्षण क्या है कि कौन सी बीमारियों को ये बताने जा रहा है, इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज हमारे इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं लैप्रोस्कोपी एवं गैस्ट्रोसर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार झा। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। खाना खाने के बाद खट्टी ढकारें आना किस बात का संकेत देता है?
2: आज के दिन में अक्सर हम मरीज हमारे पास आते हैं और ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम खाना खाते हैं उसके बाद हमें अनपथ सा लगता है, खाना जैसे लगता है कि वापस मुंह में आ रहा है, खट्टी डकार आती है, सीने में जलन होता है, सीने में दर्द होता है। इसे साइंटिफिक टर्म में GERD GERD GERD या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं। नॉर्मल जो हम लोग खाना खाते हैं ये हमारे मुंह के बाद एक नली के रास्ते हमारे स्टमक में जाती है। इस नली को हम इसोफेगस कहते हैं और स्टमक में पहुंचने के बाद वो खाने छोटे छोटे टुकड़े में टूटते हैं। उसके बाद वो खाना छोटी नली में जाता है, तत्पश्चात वो हमारी बनी आंत में जाता है और आंत के रास्ते बाद वो मल के रास्ते बाहर आता है। जब खाना हमारे स्टमक में पहुंचने के बाद आगे ना जाकर वापस हमारे खाने के नली यानी कि ऊपर वाले नली में आए जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, ऐसे कंडीशन को GERD कहा जाता है। इसके कई सारे कारण होते हैं। जब ये खाना जो हमारे इसोफेगस से स्टमक में पहुंचता है तो दोनों जहां मिलते हैं वहां पर एक वाल्व होता है जिसे हम लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर कहते हैं। कई मर्तबा ऐसा होता है कि वहां का प्रेशर इतना कम हो जाता है कि स्टमक का प्रेशर बढ़ा रहता है और खाना ऊपर आ जाता है। जैसे कि आज की ज़िंदगी में लोगों को स्मोकिंग की आदत, शराब पीने की आदत, कॉफ़ी चाय पीने की आदत है, ये सब चीज़ें हमारे स्फिंक्टर वाल्व को कमज़ोर करती हैं जिसके कारण होता है कि कभी भी हमारा प्रेशर अगर पेट के अंदर बढ़ता है तो वो खाना आगे न जाकर वापस इसोफेगस में आ जाता है, तब GERD की समस्या उत्पन्न होती है। दूसरा कारण होता है कि स्टमक जो है वो वहाँ एसिड बनता है, मेनली वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये हमारे फूड के जो भी हम खाना भोजन खाते हैं उसको पचाने में काफ़ी सहायक होता है। कई मरतबा ऐसा होता है कि ये एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जैसा मैंने पहले भी

0: कहा कि शराब पीने से, सिगरेट का सेवन करने से, कई बार लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, कहीं शरीर में दर्द हुआ, बुखार हुआ, तुरंत वो दवा खाते हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें एसिड का ज़्यादा बनना होता है, जैसे कि एक रेयर बीमारी है जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम या गैस्ट्रिनोमा, ऐसी बीमारियां हैं जिनमें एसिड का प्रोडक्शन या बनना ज़्यादा होता है। तीसरी चीज़ होती है कि जो पेट का प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, जैसे कि ओबेसिटी मोटापे के कारण, प्रेगनेंसी के कारण, या हम कहें कि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, कहीं भी हम पार्टी में गए या कहीं भी किसी फंक्शन में गए तो खाना बहुत ज़्यादा खा लिया, वैसे कंडीशन में पेट का प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है और वो खाना वापस इसोफेगस में आने लगता है। कई मर्तबा ऐसा होता है कि खाना आगे नहीं जाता है, पेट में वो मूवमेंट नहीं हो पाता है। जैसे कि आम जिंदगी में कहें हम डायबिटीज़, डायबिटीज़ पेशेंट में अगर शुगर कंट्रोल ना हो तो स्टमक का मूवमेंट नहीं होता है, उसे हम गैस्ट्रोपैरेसिस कहते हैं, जिसमें कि खाना आगे ना जाता है, खाना स्टमक में ही जमा रहता है। ऐसे करने से स्टमक का प्रेशर बढ़ता है और वो खाना वापस हमारे इसोफेगस में आ जाता है। एक कंडीशन होता है हर्निया, हाइटस हर्निया कहते हैं, जो खाने की नली होती है वो हमारे सीने के बीच से होते हुए एक परत होती है जिसे कहते हैं डायफ्राम, जो हमारे सीने को और पेट को अलग करती है। तो इसोफेगस उस वहाँ से एक छोटी से छिद्र से स्टमक में आता है। कई कंडीशंस ऐसे होते हैं जिसमें वो छिद्र काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और ऐसे में हमारा स्टमक का हिस्सा खींच के ऊपर चला जाता है और उसे हम हाइटस हर्निया कहते हैं। तो स्टमक का जो भी कंटेंट होता है, पेट का जो भी कंटेंट होता है, फूड पार्टिकल्स, वो इसोफेगस में आ जाता है और हार्ट बर्न की शिकायत होती है, खाना
1: जी,
0: बार बार मुंह में आता है।
1: तो ये जब बीमारियां आपके शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं तो फिर क्या क्या लक्षण दिखने लग जाते
0: हाँ,
1: हैं कि हम सावधान हो जाएं और उपचार शुरू कर दें?
0: सही कहा आपने। मोस्ट कॉमन जो लक्षण होता है वो मरीज ये शिकायत लेके आते हैं कि सर हमारे सीने में काफ़ी जलन, हमेशा जलन जैसा रहता है, कहेंगे कि खाना खा लिया, जैसे लेटने जाते हैं लगता है खाना वापस मुंह में आ गया। ये स्पेशली खाना खाने के बाद या लेटते वक्त उत्पन्न होता है। दूसरा होता है कि सीने में दर्द होना, कहेंगे वो बताएंगे कि सीने के बीच में दर्द होता है। कई बार ये लक्षण हार्ट की जो बीमारी होती है, हृदयाघात का भी होता है, कई बार होता है कि वो बोलेंगे कि हम जो खाना खाते हैं, खाना निगलने में उन्हें काफ़ी दर्द होता है या तकलीफ़ होती है। कई बार उन्हें बिना दर्द के ही खाना जाता है लेकिन तकलीफ़ होती है और कई बार उसके साथ साथ दर्द भी होता है। इसे हम डिसफेजिया या ऑर्डिनोफेजिया कहते हैं। अगर लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं तो पेट का, जैसा मैंने कहा कि वो एसिड बनता है स्टमक में, वो बार बार अगर इसोफेगस में आए तो वो अल्सर बना देता है। अल्सर के कारण खून का प्रसाव होता है और मरीज कई दिनों बाद ये कह के आते हैं कि सर हमें बहुत हमेशा कमजोरी लगती है, हमारे शरीर में जान नहीं लगता, हम ज़्यादा चल भी नहीं सकते, हमेशा तकलीफ़ रहती है। और आगे चल के 10 साल 15 साल बाद अगर लोग अब इसका प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, एहतियात नहीं बरतते हैं और इसको नज़रअंदाज करते हैं तो ये कैंसर का भी रूप ले सकता है।
1: जी, कैसे इसका उपचार किया जाता है, कौन कौन से जांचें की जाती है और मरीज कितना प्रतिशत ठीक हो जाता है? क्या मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है या उसे बहुत सारी सावधानियां अपने जीवन में रखनी
0: नहीं,
1: पड़ती
0: आपने बिल्कुल सही जवाब कहा। जांच मुख्यतः जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होता है एंडोस्कोपी, ये रूटीन प्रोसेस है, इसमें हम एक दूरबीन का रास्ते पाचन क्रिया को हम देखते हैं, पाचन के लिए ये जो इसोफेगस होता है उसे देखा जाता है। ये डे केयर प्रोसेस है, आप जाके 2 घंटे में सारा जाँच करा के आ सकते हैं। बार बार अगर मरीज ये कहते हैं कि हमारे सीने में जलन हो रहा है तो ये देखा जाता है कि ये स्टमक का जो एसिड है वो कितनी मर्तबा आता है आपके इसोफेगस में। इसके लिए हम 24 आवर्स पीएच मॉनिटरिंग करते हैं, कोई एसिड कितना स्ट्रांग है या कितनी देर तक वो एक्सपोज होता है, इसको हम साइंटिफिकली मेजर करते हैं पीएच से। हमारे स्टमक के अंदर जो पीएच है वो होता है 3 to 5, 3 से 5 के बीच में होता है, और हमारे इसोफेगस का जो पीएच होता है वो इनसे ज़्यादा होता है। जब बार बार गैस्ट्रिक जूस हमारे इसोफेगस में आता है तो इसको हम पीएच मॉनिटरिंग से देखते हैं कि इसमें पीएच कितना चेंज हो रहा है, और ये पीएच आमतौर 2 से 4 के बीच में पाया जाता है इस बीमारी में। तो इससे हम 100% श्योर हो जाते हैं कि मरीज़ को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज है, तब हम उन्हें बताते हैं कि आपका इलाज कैसे कैसे हो सकता है और आपके लिए बेहतर इलाज क्या है। अगर मरीज़ को लक्षण बहुत कम है, प्रायः ये जो रिफ्लक्स डिजीज़ है मरीज़ की डाइट लाइफ स्टाइल से पर निर्भर करता है। आज के समय में लोग अक्सर लोग स्मोकिंग, शराब का सेवन करना, कहीं पर भी खाने पे कंट्रोल नहीं होना, मसा

0: ज़्यादा यूज करना ये सब करते हैं, तो हम मरीज़ को पहले समझाते हैं कि आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने की आवश्यकता है, आपको इन चीज़ों को, बुरी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद जो सिंपल एंटासिड्स या दवा होती है गैस की, वो देते हैं और उनको 15 दिन पे हम बुलाते हैं देखने के लिए कि ये सब चेंज करने के बाद उनमें कितना बदलाव आया है। जो मरीज़ शुरुआती लक्षण में ही डॉक्टर से संपर्क करते हैं वो प्रायः ठीक हो जाते हैं। फिर इस बात का देखना पड़ता है कि मरीज़ जैसे कि मोटापे से ग्रसित है या और कोई बीमारी उनको है, जो डायबिटीज़ है, कब्जियत की शिकायत है, तो हम उनको इनके साथ साथ जो एसोसिएटेड बीमारी है उसको भी ठीक करने की का परामर्श देते हैं कि सिर्फ दवा खाने से यही नहीं होगा, जिस जो रूट कॉज है इसका, जो बीमारी का कारण है, उसे भी ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद ये होती है। सर्जरी की ज़रूरत बहुत कम मरीज़ों में होती है, जैसा कि मैंने कहा कि हायटल हर्निया किसी को अगर होता है, ऐसे मरीज़ों को ही हम सर्जरी का सुझाव देते हैं, नहीं तो मरीज़ जो है सो दवा से और अपने लाइफस्टाइल चेंज करने से ही ठीक हो सकते
1: जी।
0: हैं।
1: डॉक्टर साहब क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को, जो बदलती जीवन शैली है, जो बिगड़ता खान पान है और खाते जा रहे हैं खाते जा रहे हैं, तो क्या कहेंगे खान पान में किन किन चीज़ों का समावेश करें और संतुलित भोजन का सेवन करें ताकि आप स्वस्थ रहें और इस तरह की बीमारियां हैं आप तक नहीं पहुंचे।
0: बीमारी को समझने के लिए या तो आपका जागरूक होना ज़रूरी है या बीमारी को ठीक होने के लिए भी आपको जागरूक होना ज़रूरी है। किसी भी बीमारी का इलाज उसके रूट कॉज में ही है, अगर हम उस कारण को दूर करते हैं तो हम बीमारी को भी अपने से दूर कर रहे हैं। आज के समय में आपका लाइफस्टाइल, खान पान का शैली, इसे अगर आप सुधारते हैं, सिगरेट पीना, शराब का सेवन करना, ज़्यादा पेन किलर खाना, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, इन चीज़ों पर आप कंट्रोल करते हैं, तेल मसाला का सेवन कम करना और एक बार में खूब नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा खाएं, 2-3 घंटे के अंतराल पर खाएं, जिस हिसाब से आप खाते हैं उस हिसाब से आपका फिजिकल एक्टिविटी भी हो, आप व्यायाम करें, इन चीज़ों पर अगर ध्यान दें तो आप बेहतर हो सकते हैं।
1: तो मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, संतुलित आहार जब आप खाएंगे तो आप खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे, और आप जब खुश रहेंगे तो पूरा परिवार आपका खुशहाल रहेगा और एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अविनाश कुमार झा, लेप्रोस्कोपी एवं गैस्ट्रो सर्जन, आज आप इस कार्यक्रम में आए। और मित्रों अपना ख्याल रखिएगा, कल एक फिर नई जानकारी के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार और आज का दिन आपका शुभ एवं मंगलमय हो।
2: खट्टी डकार भी बीमारी का लक्षण, इस विषय पर अभी आपने सुना रांची के डॉक्टर अविनाश कुमार झा से ली गई भेंटवार्ता, इनसे बातचीत कर रहे थे संजीव कुमार लाल। इसी भेंटवार्ता के साथ अब स्वास्थ्य कार्यक्रम कल्याणी यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है, हमारा अगला प्रोग्राम बस थोड़ी ही देर में।

आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं दिल है के मानता नहीं इस फिल्म के गीत से। आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की है। फैज़ अनवर के बोल हैं, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जाएं।
3: दस लाख की लॉटरी मुझे,
4: फर्जी ऑफर से सावधान।
5: RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार की आवाज़ों में। गीत के बोल हसरत जयपुरी के हैं, संगीत दिया है अन्नू मलिक ने। फिल्म का नाम है राधा का संगम।

राधा का संगम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर और शबीर कुमार की आवाज़ों में। हसरत जयपुरी के बोल थे, संगीत दिया था अनु मलिक ने। अब आइए सुनते हैं प्यार भरा दिल। इस फिल्म से आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की है। गीत के बोल योगेश के हैं, संगीत दिया है निखिल बिनय ने।

अब आइए सुनते हैं थानेदार। इस फिल्म से आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और बप्पी लहरी की और साथियों की है। गीत के बोल इंदिवर के हैं, संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

अनुराधा पौडवाल व पिलहरी और साथियों के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल

0: की धरती अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्य माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
5: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
1: ये

0: समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
1: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
2: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्लाह अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी

0: Meanwhile, the IMD has issued a red alert for heavy to very heavy rainfall with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Saurashtra, Kutch, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka for tomorrow. The Met Department has forecast heavy to very heavy rainfall over North Indian states, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Bihar, interior Karnataka, Madhya Pradesh, Vidarbh, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim for the next 2 days. The Central Bureau of Investigation, CBI, has conducted searches at 26 locations across 11 states and union territories in connection with 4 criminal cases pertaining to misappropriation of funds in Border Road Organization. Several incriminating documents and digital evidence have been recovered during the searches, and investigation is continuing. A total of 10 officers of the rank of Lieutenant Colonel, Major and engineers, along with certain private persons, have been named in the FIRs. The agency said that these cases are related to irregularities in deployment of casual labourers and payments released in the name of fake casual labourers in the project Vijayak and Yojak in Ladakh. 4 FIRs were registered in this connection based on criminal complaints lodged by the Ministry of Defence. Railways Minister Ashwini Vaishnav has said that more than 300 special trains will be operated for the Rath Yatra of Lord Jagannath this year. These are in addition to the regular more than 800 trains. Talking to reporters in New Delhi today, Mr. Vaishnav said he will review the railway preparations for the upcoming Rath Yatra to ensure smooth operations. Mr. Vaishnav today virtually inaugurated a new train service between Tanakpur in Uttarakhand and Hazur Sahib at Nanded in Maharashtra, along with extension of Tanakpur Pilibhit rail service up to Shahjahanpur.
1: We will be operating 300 plus special trains during the Rath Yatra of Mahaprabhu Jagannath Ji, and during Onam festival we will be running about more than 100 special trains. This is a big effort from railways, effort from the central government, effort from Prime Minister Narendra Modi Ji to make sure that our citizens get affordable and safe services. We will continue to work in that direction.
0: Mourners dressed in black flooded Iran's capital Tehran for a funeral procession today honoring the late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei's flag-draped coffin along with those of several family members was carried on a truck decorated to resemble the ornate latticework surrounding the shrine of an imam. They were killed in an airstrike on the 28th of February at the outset of the war launched by Israel and the United States. The massive turnout was encouraged by Iran's theocratic leadership to as a show of national unity and strength. Revolutionary Guard General Hassan Jadeh, who is overseeing the funeral procession, said the coffins would be carried through the streets of Tehran during a 12-hour journey to Mehrabad International Airport. The mourning will continue through Thursday, when Khamenei will be buried at the Imam Reza Shrine in Mashhad, his birthplace. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has arrived in Bahrain on the second leg of West Asia tour after concluding visit to Qatar. Dr. Jaishankar met his Bahraini counterpart, Dr. Abdul Latif bin Rashid Al Zayani, in Manama. In a social media post, Dr. Jaishankar said, during the meeting, expressed deep appreciation to his Bahraini counterpart for ensuring the well-being of the Indian community. In FIFA World Cup, Portugal will take on Spain in a round of 16 match at Arlington in US tonight. In another match of 16 match, co-host US will face Belgium in Seattle tomorrow morning. England, Norway, Morocco and France have already entered the quarterfinals. England stormed into the quarterfinals with a dramatic 3-2 victory over co-host Mexico in the round of 16 match this morning. In the Wimbledon tennis, 9 seed Flavio Cobolli of Italy has entered the men's singles quarterfinal. He defeated 5th seed Alex de Minaur of Australia in straight sets 7-5, 7-6, 6-3 this evening. World number 1 and defending champion Yannick Sinner will face Jan-Lennard Struff of Germany in the quarterfinal match tomorrow. In another quarterfinal fixture, Serbia's Novak Djokovic will take on Canadian player Felix Auger-Aliassime. In the women's singles quarterfinals, American Jessica Pegula will clash with compatriot Coco Gauff, while Czech player Karolina Muchova will take on Japan's Naomi Osaka tomorrow. In a bilingual live phone-in program, Public Speak tonight, we will bring discussion on Digital India, Empowering Citizens Through Technology. President and CEO, National E-Governance Department, Nand Kumar. Kumaram and former National Cybersecurity Coordinator Dr. Gulshan Rai will be present in his studios to answer the queries of listeners. And you can ask questions on the subject on telephone number 011-2331-0481, 2371-7117, 2371-7106 and 2331-4444 from 9:30 p.m. onwards. And now, before we end the bulletin, here are the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust Member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in the round of 16 match at Arlington in US tonight. And that is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज-ए-अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तसव्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उपरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ईरान के आजानी आला रहनुमा आयतुल्ला अली खामनई को अलविदा कहने के लिए तेहरान में लोग बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अमरीका में पुर्तगाल और स्पेन का मुकाबला राउंड ऑफ 16 के मैच में होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम जकार्ता पहुंचे। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नेज इंडोनेशिया के सीनियर वज़रा, इंडोनेशिया में भारतीय सफीर और भारतीय बिरादरी के अरकान ने जनाब मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने ताल्लुकात को बुलंदी अता करके उसे जामे कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया था, जिससे अवाम को बहुत फायदा पहुंचा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तकबाल में इंडोनेशिया और भारत के रिवायती रक्स पेश किए गए, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी और सकाफती रिश्ते की अक्कासी होती है। इस मौके पर भारतीय बिरादरी ने जनाब मोदी का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। तवक्को है कि बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, बहरी सलामती, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सकाफती तबादले को मरकजी हैसियत हासिल रहेगी, जिससे भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय बिरादरी के अराकीन ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से मुतालिक अपने जोश व जज्बे का इजहार किया और एतमाद जाहिर किया कि यह दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा और तिजारत और सरमायाकारी के लिए नए इम्कानात पैदा करेगा। भारतीय बिरादरी ने इंडोनेशिया में कारोबार करने में आसानी से मुतालिक भी मुस्बत ख्यालात का इजहार किया और कहा कि भारतीय बिरादरी इंडोनेशिया के साजगार माहौल में अपनी सकाफती पहचान बरकरार रखते हुए इंडोनेशिया में रच बस गई है। इंडोनेशिया के जकार्ता से संदीप पौन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
2: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम मुहिब-ए-वतन और भारत की सालमियत के लिए वक्फ एक दूरंदेश शख्सियत थे। डॉक्टर मुखर्जी की 125वें यौम पैदाइश के मौके पर अपने एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के ख्यालात नए भारत के लिए रहनुमाई फराहम करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं।
4: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत एक महान देशभक्त भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
2: उन्होंने कहा कि हुकूमत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं सालगिरह को 2 साल कौमी जश्न के तौर पर मना रही है। वजीर आजम ने कहा कि इन तकरीबात का आगाज पिछले बरस 6 जुलाई को हुआ था और ये अगले बरस 6 जुलाई तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की जिंदगी एक तरगीब है जो बताती है कि किस तरह एक तसव्वुर एक अवामी तहरीक के तौर पर अपनी तकमील को पहुंचता है। जनाब मोदी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी हुकूमत की तश्कील के साथ रियासत इस कौमी एजाज के तई जोश व खरोश में मजीद इजाफा कर रही है और तहरीक देने वाली इस शख्सियत को याद कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती तकरीबात में शिरकत की। वजीर दाखिला ने आज कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आबाई घर का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इससे पहले उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 फीट ऊंचे मुजस्मे का संगे बुनियाद रखे जाने की तकरीब में शिरकत की। इन तकरीबात में मगरी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत राज्यसभा के रुकन शमक भट्टाचार्य और दीगर मौजिज शख्सियात ने शिरकत की। इससे पहले सुबह में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता की रेड रोड पर हुई तकरीब में शिरकत की जहां वजीर आला और दीगर मौजिज शख्सियात ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्मे पर गुलहाय अकीदत पेश किए। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का संगे बुनियाद रखा। 200 से ज्यादा सरकर्दा सनअतकारों सरमायाकारों ने इस तकरीब में शिरकत की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों लोगों ने राम मंदिर को दिए गए दान में खुर्द बुर्द के मुबैना मामले में अपने नाम आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए थे। कृष्ण मोहन को उस वक्त तक के लिए उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है जब तक कोई नया जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर नहीं हो जाता। उनकी शिकायत उस FIR की बुनियाद बनी थी जिसके तहत दान में दी गई चीजों के सिलसिले में मुबैना बेजाबतगियों का मामला दर्ज किया गया और जिसके बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। ट्रस्ट ने एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की तकरूरी का भी फैसला किया है। 3 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है ताकि वो तकरूरी के लिए मुनासिब नाम तजवीज करे। मीटिंग के दौरान गोपाल नागरकोटे का नाम भी ट्रस्ट के खसूसी मदुईन की फहरिस्त से निकाल दिया गया। मीडिया से बात करते हुए ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने बताया कि पूरे मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने दान में दिए गए जेवरात और दीगर कीमती अशिया को दिखाया और वजाहत की कि दान में दी गई तमाम अशिया महफूज हैं और उनका बाकायदा हिसाब किताब रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी शख्स दान में दी गई अशिया की तफसीलात ट्रस्ट से हासिल कर सकता है। कृष्ण मोहन ने एतराफ किया कि इस तनाजे की वजह से ट्रस्ट की छवि को नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता अपनी बाकायदा प्रेस रिलीज में ट्रस्ट ने कहा है कि राम के करोड़ों अकीदतमंद अब भी राम मंदिर में ऐसा यकीन रखते हैं जिसमें कोई तजलजल नहीं है और ये भी दान की अशिया में मुबैना खुर्दबुर्द का मामला सामने आने के बाद से राम मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। ये आकाशवाणी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कतर का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मगरबी एशिया के अपने दौरे के दूसरे मरहले में आज बहरीन पहुंचे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के अपने हमनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज़ियानी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने भारतीय बिरादरी की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए बहरीन के अपने हमनसब की इंतहाई सताइश की। दोनों वुज़रा ने बाहमी तआवुन को मजीद बढ़ाने और खित्ते में जारी अहम वाकयात के तनाजुर में तबादला ख्याल भी किया। डॉक्टर जयशंकर मगरबी एशिया के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। रेलवे के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि इस साल भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए 300 से ज्यादा खसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। ये मामूल की 800 से ज्यादा रेलगाड़ियों के अलावा होंगी। आज नई दिल्ली में सहाफियों से बात करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि अकीदतमंदों के लिए बिला रुकावट सफर को यकीनी बनाने के गरज से आने वाली रथ यात्रा के लिए रेलवे की वजारत ने आज तैयारियों का जायजा लिया।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
2: जनाब वैष्णव ने मजीद बताया कि इस साल ओनम त्योहार के दौरान 100 से ज्यादा खसूसी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। दो जबानों में नशर होने वाले हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए भारत को बाख्तियार बनाने के मौजू पर तबादला ख्याल होगा। कौमी ई गवर्नेंस महकमे के सदर और सीईओ नंद कुमारम और कौमी साइबर सिक्योरिटी के साबिक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गुलशन राय हमारे सामईन के सवालों का जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। आप इस मौजू पर रात 9:30 बजे से इन टेलीफोन नंबरों पर फोन करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 01123184823717173717106। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके के अवाम की भारतीय हुकूमत से मदद की अपील खित्ते में जारी बहरान की गहराई को उजागर करती है। पीओजेके में एक महीने से ज्यादा वक्त से एहतजाज जारी है। एक सरकारी अहलकार ने बताया कि अपील की नौयत बिलखसूस इसलिए तशवीशनाक है कि पीओजेके के लोग भारत से दवाइयां और जरूरी गजाई अशिया तलब कर रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हिदायत पर पाकिस्तानी इदारों ने पिछले 20 दिन से खित्ते के लिए राशन और दवाइयों की सप्लाई रोक दी है। लोगों को गजाई साजो सामान की इंतहाई कमी का सामना है। इस नाकाबंदी का आगाज गजाई अशिया की सप्लाई की मौतली से हुआ और बाद में इसमें दवाइयां भी शामिल हो गईं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने भारतीय हुकूमत से लाइन ऑफ कंट्रोल खोलने की अपील की है। यह दरख्वास्त पाकिस्तानी फौज के उस हालिया फैसले के तनाजुर में सामने आई है जिसमें उसने कहा है कि अगर एहतजाज में कमी न आए तो गोलियां चलानी शुरू कर दी जाएं। इधर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी हुकूमत को उसकी मांगें पूरी करने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। इंसानी हकूक के कौमी कमिश्नर ने कर्नाटक के शहर बेंगलुरु में पत्थर की एक कान में ग्रेनाइट की एक बड़ी चट्टान गिरने के सबब 7 महाजिर मजदूरों की मुबैना हलाकत के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी किया है। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी दो जबानों पर मुश्तमिल मैनेजमेंट की तालीम देही शहरी फर्क को खत्म करने और हर एक बासलाहियत व जरूरतमंद तलबा को उनके हालात से कदा नजर मयारी तालीम तक रसाई को यकीनी बनाएगी। जनाब गोयल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर में एक नए कोर्स को नई दिल्ली से वर्चुअल इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे।
5: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
2: भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र, साहिली कर्नाटक के दूरदराज मकामात पर कल शदीद से शदीद तर बारिश के इम्कान के तनाजुर में रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, आंध्र प्रदेश, गंगाई मगरबी बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में अगले 3 से 4 दिन के दौरान गरज चमक व तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई की है। मुंबई और साहिली महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मामूल की जिंदगी में रखना पड़ा है।
6: महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के साथ सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 8 जुलाई की रात तक इसी तरह के मौसमी हालात रहने का इम्कान है। मावल तालुके के पटन गांव में आज एक घर पर मिट्टी के तोदे खिसकने से कम 2 लोगों की मौत हो गई। मुंबई से देवप्रिया भट्टाचार्य की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
2: आला रहनुमा मरहूम आयतुल्लाह खां अली खामनई के जज्बे खाकी के जुलूस के लिए आज ईरान की राजधानी तेहरान में सौगवार सियाह लिबास में मलबूस थे। ईरानी परचम में लिपटे खामनई के जनाजे के साथ उनके मुतअद्दिद अहले खाना के जनाजे भी शामिल हैं जो इसराइल और अमरीका की जानिब से जंग के आगाज में 28 फरवरी को फजाई हमलों में मारे गए थे। उनके जज्बे खाकी को इमाम के रोजे से मुशाबहत करते हुए एक ट्रक पर रखा गया है। حکام نے سوگ کے دوران سڑکوں و ملکی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے اور روزمرہ کی زندگی کے معاملات کو معطل کر دیا ہے. یہ سوگ سنیچر سے شروع ہوا اور جمعرات تک جاری رہے گا. جناب خامنئی کو مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں دفنایا جائے گا. اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے ایرلنگٹن میں آج راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں پرتگال کا مقابلہ اسپین سے ہوگا, جبکہ اسی راؤنڈ کے ایک اور میچ میں ساتھی میزبان امریکہ بیلجیم سے کل صبح سیٹل میں مقابلہ کرے گا. انگلینڈ, ناروے, مراکش اور فرانس کوارٹر فائنلز میں پہنچ چکے ہیں اور آج صبح راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں انگلینڈ ساتھی میزبان میکسیکو کو 2-3 سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچا. راؤنڈ آف 16 کے ایک اور مقابلے میں ناروے نے برازیل کو 1-2 سے شکست دی اور کوارٹر فائنل میں اپنا مقام بنایا. اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی انڈونیشیا, آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے تین ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچ گئے ہیں. وزیراعظم مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی 125ویں سالگرہ کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا تصور نئے بھارت کی رہنمائی کرتا رہے گا. رام جنم بھومی تیرتھ ٹرسٹ نے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ کے ممبر ڈاکٹر انیل مشرا کے استعفے منظور کر لیے ہیں اور کرشن موہن کو عبوری جنرل سیکرٹری مقرر کیا ہے. مہاراشٹر, گجرات اور جھارکھنڈ میں بہت تیز بارش کے سبب معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے. کچھ, سوراشٹر, مدھیہ پردیش اور ساحلی کرناٹک میں کل بہت تیز بارش کے سلسلے میں ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
7: के साथ ही आज का कार्यक्रम आपके लिए संपन्न होता है.
8: यह है विविध भारती. आज के फनकार प्रोग्राम सुनिए थोड़ी ही देर में.

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी की संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित या मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: बड़ा मुश्किल है, और मैं सच सच आज कह रहा हूं आपको, मैं अपने आप को बड़ा बदकिस्मत समझता हूं कि मुझे पिताजी ने यह नाम दिया। ये नाम दरअसल दिया टैगोर साहब ने। टैगोर साहब वहां पे बैठे अपना क्या नाम है शांति निकेतन में, जब मेरी माताजी के गर्भ में था मैं, जब वो गर्भवती थी, जब मैं उनकी कोख में था, तो वो इम्तिहान दे रही थी बीए का, वही शांति निकेतन में। मेरे पिताजी और माताजी वहां काम किया करते थे एज प्रोफेसर, तो वो बीए का इम्तिहान दे रही थी। तो गुरुदेव टैगोर ने कहा अभी ये इसके पेट में जो बच्चा है उसने भी दे दिया बीए का इम्तिहान, इसका नाम परीक्षित रखना अगर लड़का होगा तो।
1: अभिनेता संजीव कुमार ने परीक्षित को अपना मनपसंद नाम दिया अजय साहनी। उनकी शुरुआती कई फिल्मों में उनका यही नाम था अजय साहनी।
0: और उसके बाद फिल्म हिट हो गई तो पवित्र पापी हिट हो गई, फिर उसके बाद वो हिट हो गई क्या नाम है समाज को बदल डालो, फिर बस अजय साहनी शुरू हो गया। और मुझे लगे कि ये हो क्या गया दुनिया में।

0: परीक्षित साहनी की अधिकतर पढ़ाई बोर्डिंग स्कूल्स में हुई। बाद में दिल्ली और पुणे में उन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फिल्म डायरेक्शन का कोर्स करने वो रूस जा पहुंचे। हालात कहीं अकस्मत, जब वो लौटे तो डायरेक्टर बनते बनते इंडिया में आकर एक्टर बन गए।
1: कहानी बड़ी अजीबोगरीब है कि अपना अशीत सेन साहब मॉस्को आए थे, उनके साथ दोस्त

हो गई मेरी, और जब मैं वापस लौटा तो मैं ये पवित्र पापी फिल्म डायरेक्ट करने जा रहा था। हमने सुनील दत्त साहब को साइन कर लिया था, तनुजा को साइन कर लिया था, गाने रिकॉर्ड हो चुके थे। मैं अपने आप को बड़ा इम्पोर्टेंट महसूस कर रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे कि मैं अपने डायरेक्शन करने जा रहा हूँ। तो बीच में एक थोड़ा वक्त था फिल्म शुरू होने में, तो असीत सेन साहब एक दिन मिल गए, और मुझे याद आया कि तो मॉस्को में मुझे मिले थे, और उन्होंने कहा भी मैं एक छोटी सी फिल्म बना रहा हूँ, ब्लैक एंड वाइट फिल्म है, हम 24 दिन में ख़त्म कर देंगे, और उसमें एक छोटा सा रोल है। तो मेरे एक आदत थी उसूलन, जब मैं बड़ा हो गया मैं झिझकता था पिताजी से पैसे मांगने में, इसलिए जब इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें 10,000 रुपये देंगे, तो मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी वो, तो मैंने हाँ कर दी वो अनोखी रात फिल्म के लिए। और फिल्म जब शुरू हुई तो एक हफ्ता नहीं हुआ था कि प्रोड्यूसर साहब ने डायरेक्टर साहब को कहा कि इस शख्स को निकाल दो इस फिल्म से। वो दरअसल बात ये थी कि मैं 6 साल रूस में रह के आया था, और उस ज़माने में मैं रूसी ही बोलता था, हिंदुस्तानी से वाकिफ नहीं था ज़्यादा, डायलॉग बोलने में बड़ी तकलीफ हो रही थी मुझे। मैं आज तक कभी कभी अपने आप को अजनबी सा महसूस करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के 6 साल जवानी के एक जगह में बिताना, और वो भी रूस जैसी जगह में, तो वापस लौटकर थोड़ा सा एक झटका लगता है आदमी को। और ये दादामुनि हमारे अशोक कुमार साहब भी आखिरी दम तक कहते रहे तेरी डिलीवरी बड़ी अजीब है यार, तू गलत जगह पे पॉज लेता है, ये गलत सेंटेंस को स्ट्रेस करता है। तो उस वक्त फिर असीत सेन साहब ने कहा प्रोड्यूसर को कि ये जिस तरह से बोल रहा है ऊटपटांग, लोगों को पसंद आएगी, इसको अभी मत निकालो। और यही हुआ। मैं तो सोचता था कि फिल्म आएगी और जाएगी और लोग भूल जाएंगे कौन हूं मैं, मगर पता नहीं सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश फिल्म बड़ी हिट हो गई, मनोखी रात।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने अजय साहनी के नाम से कई फिल्मों में नायक की भूमिका निभाई थी। हालांकि बचपन में भी दो तीन फिल्मों में उन्होंने बाल कलाकार की भूमिका अदा की थी, लेकिन उनके पिता महान कलाकार बलराज साहनी साहब चाहते थे कि उनका बेटा पहले तालीम हासिल करे और बाद में कुछ और बने। आपको याद होगा, राजश्री प्रोडक्शन की मशहूर फिल्म तपस्या में परीक्षित साहनी ने अभिनेत्री राखी के साथ एक बेहतरीन भूमिका अदा की थी। आइए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गाना।

मैं उस जमाने में भी ज्यादा रुचि मेरी पेंटिंग वगैरह में थी, मैं पेंटिंग बहुत करता था, फोटोग्राफी, ये ब्रॉडकास्टिंग में बड़ी दिलचस्पी थी मेरी। मैं मॉस्को रेडियो के लिए काफी साल काम करता रहा एज एन अनाउंसर। ये रेडियो मॉस्को है, अब आप देश विदेश के समाचार सुनिए। ये स्क्रीन कैमरे के सामने एक्टिंग करना किसी हद तक ज्यादा आसान है। पिताजी भी मेरे यही कहा करते थे, वो भी मुझे कहते थे कि बेटे मैंने एक्टिंग अगर सीखी है तो रेडियो पर सीखी है। जो मैं बीबीसी में माइक्रोफोन के सामने बैठ के एक्टिंग किया करता था, वो प्लेस किया करते थे उस जमाने में, और जो उससे मेरा तलफ्फुज ठीक हुआ, उससे मैंने बोलना सीखा, उससे मेरी आवाज ठीक हुई। और ये जो स्टूडियो में बैठकर श्रोता तो हमें सुन रहे हैं सिर्फ, बहुत दूर है मुझसे, उन्हें महसूस कर रहा हूं मैं, मुझे देख नहीं सकते वो, इसलिए मैं सिर्फ अपनी आवाज के जरिए उन्हें मुतासिर कर सकता हूं।

दोस्तों, परीक्षित साहनी ने तमाम फिल्मों में चरित्र भूमिकाएं निभाई हैं और उनके अभिनय को आपने टीवी के पर्दे पर भी कई सीरियल्स में जरूर देखा होगा। उन्होंने अपने हर किरदार को साकार किया है और हम भी उनको यही शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपनी अभिनय यात्रा को निरंतर जारी रखें और अपने चाहने वालों का दिल बहलाते रहें।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती का प्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है। अब लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम का आगाज हम करते हैं हम भी इंसान हैं इस फिल्म के गीत से। आवाज़ें है अरिशा चिनॉय और अमित कुमार की। गीत के बोल अनजान की, संगीत दिया है बप्पी लहरी ने।

जन्म जन्म इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए सुनते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी की रचना, आवाज़ें मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की है और फिल्म का नाम है मजबूर।

बड़े घर की बेटी इस फिल्म का गीत भी आपने सुना मोहम्मद अजीज़ और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। संतोष आनंद के बोल थे, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अब आइए सुनते हैं मोहम्मद अजीज़ और आशा भोसले को फिल्म इलाका में। समीर के बोल हैं, संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

प्यार किया है प्यार करेंगे। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शबीर कुमार और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में। अब आइए सुनते हैं मोहरा इस फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, संगीत दिया है।

कुमार सानू और साधना सरगम के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार। कृपया इंतज़ार कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है, जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द-ए-खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी हैं। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
3: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत एक महान देशभक्त भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
2: द श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट हैज एक्सेप्टेड द रेजिग्नेशंस ऑफ जनरल सेक्रेटरी चंपत राय एंड ट्रस्ट मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा। Both had stepped down after their names surfaced in the alleged Ram Temple donation embezzlement case. Krishna Mohan has been appointed interim general secretary until a new appointment is made. His complaint formed the basis of the FIR registered in the alleged donation irregularities case in which 8 people have been arrested. Addressing the media, Trust Treasurer Govind Dev Giri said the possibility of a conspiracy behind the episode could not be ruled out. 1993 batch IPS officer Alok Kumar Mittal has been appointed as Director General of Bureau of Police Research and Development. Another IPS officer of 1993 batch Amit Garg has been appointed as Director of National Crime Records Bureau. 1994 batch IPS Sujit Pandey has been appointed as Director of Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. The appointment committee of the cabinet cleared these appointments today. The Nation today paid homage to veteran freedom fighter and former Union Minister Babu Jagjeevan Ram on his 40th death anniversary. The Babu Jagjeevan Ram National Foundation, under the Ministry of Social Justice and Empowerment, organized a homage ceremony at Samta Sthal in New Delhi. Lok Sabha Speaker Om Birla, Union Minister for Social Justice and Empowerment Virendra Kumar, former Lok Sabha Speaker Meera Kumar, Minister of State B.L. Verma, Members of Parliament, senior officials and other dignitaries paid floral tributes. In Jharkhand, continuous rainfall has disrupted normal life across several districts. Met Department has issued a yellow alert for heavy rain, strong winds and lightning over the next 2 days. Widespread heavy rainfall has lashed Gujarat over the past 24 hours, disrupting normal life in the Saurashtra and South Gujarat regions. In FIFA World Cup, Portugal will take on Spain in a round of 16 match at Arlington in US tonight. In another round of 16 match, co-host US will face Belgium in Seattle tomorrow morning. England, Norway, Morocco and France have already entered the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
4: अभी आप हमारे दिल्ली केंद्र का प्रसारण सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। इसमें हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हुए हैं। इसी के साथ संपन्न होती है हमारी आज की सायंकालीन सभा। कल सुबह 5:53 पर पहली सभा के साथ हम